0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: ये है रेडियो मॉरिशस।

0: सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आप से आदित्य, नमस्कार आपको।
1: नमस्कार नितुषा, श्रोताओं को भी नमस्कार। क्रियोले में शुक्रवार को हुई सरस्वती मुचिया की हत्या के मामले में एक नई बात सामने आई है। संदिग्ध राधा कृष्णा मुनिस्वामी ने कल रात अपना जुर्म स्वीकार किया है। उसे नॉर्दर्न डिवीजन की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के एक ऑपरेशन के दौरान पिछगाफे में उसके घर से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के अनुसार इस व्यक्ति ने पैसे के लेन देन को लेकर हुए झगड़े के बाद 60 वर्षीय महिला का गला घोंटकर हत्या करने की बात मानी है। संदिग्ध जो उस महिला के साथ ब्रोकर का काम करता था, उसने कथित तौर पर इस वारदात को पहले से ही सोच समझ कर अंजाम दिया था। सरस्वती मुचिया अपने सब्जियों के खेत में मृत पाई गई थी। एमसीआईटी ने अब इस मामले की जांच अपने हाथ में ली है। संदिग्ध को इस सोमवार को अदालत में पेश किया जाएगा। विदेश मंत्री रितेश रामफल शनिवार को न्यूयॉर्क पहुंचे हैं, जहां वे कल शुरू हो रहे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में शामिल होंगे। वहां पहुंचते ही उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के समक्ष मॉरिशस के स्थायी प्रतिनिधि मिलन मिताबान समेत कई अधिकारियों के साथ एक कार्य सत्र में भाग लिया। महासभा के आधिकारिक उद्घाटन से पहले रितेश रामफल ने कल रविवार को कई बैठकों में हिस्सा लिया। इनमें कॉमनवेल्थ मिनिस्टीरियल एक्शन ग्रुप और अलायंस ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट्स की बैठकें शामिल थीं। मुख्य रूप से आपसी हित के कई मुद्दों पर चर्चा हुई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका ने चेतावनी दी है कि ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों और सऊदी अरब के बीच संघर्ष तेजी से बढ़ सकता है, क्योंकि यमन संघर्ष के दोबारा शुरू होने के बाद पहली बार रियाद को निशाना बनाकर मिसाइल हमला किया गया। इस बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मैरीलैंड में अपनी सप्ताहांत की छुट्टी बीच में ही छोड़कर व्हाइट हाउस लौटना पड़ा है। आखिर में स्थानीय मौसम का हाल। आम हालत, हमारे इलाके पर सामान्य ठंडी हवाएं चल रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान, आज सुबह रह रहकर बारिश हो सकती है। दिन के दौरान आमतौर पर मौसम सुहाना रहेगा। रात के दौरान पूर्व, दक्षिण और सेंट्रल प्लेटो वाले इलाकों पर बादल घिरा सकते हैं और रह रहकर बारिश होगी। हवा दक्षिण पूर्व की तरफ से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके कुछ जगहों पर 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। प्रवाल रेखा के परे समंदर चंचल रहेगा। दक्षिण पश्चिमी समंदर में 2 मीटर तक की लहरें उठेंगी। तापमान सामान्य से थोड़ा ज्यादा रहेगा। सेंट्रल प्लेटो पर न्यूनतम 15 से 17, अधिकतम 21 से 24 डिग्री सेल्सियस। साहिली इलाकों पर न्यूनतम 19 से 21, अधिकतम 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह 6 बजे सूर्योदय, शाम को 6:05 पर सूर्यास्त होगा। तो ये थी अब तक की खबरें। हम आपसे मिलेंगे ठीक 6:30।

0: मुख्य समाचार बुलेटिन के साथ तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: KHz ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: सुबह का नजराना लाए खुशियां हजार, रेडियो मॉरिशस पर।

0: सुबह के 6:04 हुए हैं। नमस्कार श्रोताओं, एमबीसी रेडियो पर आप सबका स्वागत है। आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मॉरिशस के साथ। आज सोमवार 21 सितंबर 2026 और आप सुन रहे हैं सुबह का नजराना प्रोग्राम और मैं उषा कौर यहाँ पर साथ निभाने के लिए। हर सोमवार की तरह नया दिन नई शुरुआत आप लोगों के साथ हम करने जा रहे हैं और अभी के लिए हम सुनने जा रहे हैं जागृति आचार्य मोहन जी के साथ।
1: आइए सुनिए मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जागृति।
2: जागृति प्रोग्राम के सभी श्रोताओं को सादर नमस्ते। मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा की ओर से मैं आचार्य मोहन आर्य श्रुत बंधु आज आप सभी के मध्य एक विशेष चर्चा को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। बंधुओं, हमें ये जीवन परमात्मा की कृपा से प्राप्त हुआ और उस ईश्वर की महती कृपा हम सब के ऊपर है। हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम परमात्मा की उपासना किया करें और संध्या उपासना के द्वारा उस परमात्मा को ध्याने का प्रयास करें। बंधुओं, आज की चर्चा विशेषतः मैं वैदिक संध्या को लेकर करने जा रहा हूँ। जितने श्रोता मुझे सुन रहे हैं, आपसे एक निवेदन है, यदि चाहें तो आप इस चर्चा को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये आपके आध्यात्मिकता एवं वैदिक संध्या के काल में अवश्य आपके काम आएगी। आइए चर्चा हम प्रारंभ करें। हमें प्रातः व सायं मन वचन और कर्म से पवित्र होकर संध्या उपासना करनी चाहिए। प्रातःकाल पूर्व की ओर मुख करके और सायंकाल पश्चिम की ओर मुख करके संध्या करनी चाहिए। आइए हम संध्या के मंत्र एवं उनके संक्षिप्त अर्थों को जानने का प्रयास करें। सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का पाठ सब लोग मिलकर किया करें। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र के द्वारा हम संध्या को प्रारंभ करें। संध्या का प्रथम मंत्र अथ आचमन मंत्र। ओम शन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। हे सर्व प्रकाशक और सर्वव्यापक ईश्वर, इच्छित फल और आनंद प्राप्ति के लिए हमारे लिए कल्याणकारी हो और हम पर सुख की वृष्टि करें। अथ इंद्रिय स्पर्श मंत्र। ओम वाक वाक ओम प्राण प्राण ओम चक्षुश्चक्षु ओम श्रोत्रम श्रोत्रम ओम नाभिः ओम हृदयम् ओम कंठः ओम शिरः ओम बाहुभ्याम यशोबलम ओम करतल करपृष्ठे। हे ईश्वर, आपकी वाणी, आपके द्वारा मेरी वाणी, प्राण, आँख, कान, नाभि, हृदय, कंठ, शिर, बाहु और हाथ के ऊपर और नीचे के भाग, अर्थात सभी इंद्रियां बलवान और यश वाले हों। मार्जन मंत्रा ओम भुः पुनातु शिरसि ओम भुवः पुनातु

पुनातु नेत्रयो ओम स्वः पुनातु कंठे ओम मह पुनातु हृदये ओम जनः पुनातु नाभ्याम ओम तपः पुनातु पादयोः ओम सत्यं पुनातु पुनः शिरसि ओम खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। हे ईश्वर, आप मेरे सिर, नेत्र, कंठ, हृदय, नाभि, पैर अर्थात समस्त शरीर को पवित्र करें। अथ प्राणायाम मंत्रा ओम भु ओम भुवः ओम स्वः ओम मह ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम्। प्रभु, आप हमारे प्राणप्रिय हो, हम आपका ध्यान, आपकी उपासना सदैव किया करें। अथ अग्मर्षण मंत्राः ओम ऋतंच सत्यंचाभिद्धा तपसो द्यजायत ततो रात्रजायत ततः समुद्रो अर्णवः ओम समुद्रादर्णव दधि संवत्सरो अजायत अहो रात्राणिर्विदद्विश्वस्य मिषतो वसि ओम सूर्या चंद्रमसो धाता यथा पूर्वम कल्पयत दिवं च पृथ्वीं च अंतरिक्षमथो स्वः। हे ईश्वर, इस संसार में जितनी भी ऋतु व सत्य पदार्थ हैं सब आपके बनाए हुए हैं। आप ही सूर्य चंद्र आदि नक्षत्रों को अनादि काल से बनाकर धारण कर रहे हैं। अथ आचमन मंत्र ओम शन्नो देवी रभिश्रय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। अथ मनसा परिक्रमा मंत्रा ओम प्राचीदिग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्या ईशवः तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः शुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं द्विस्मस्तं वोजं भेदद्मः ओम दक्षिणादिगिन्द्रोधिपतिश्चिरश्चिराजि रक्षिता पितर ईशवः तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं द्विस्मस्तं वोजं भेदद्मः ओम प्रतीची दिग्वरुणोधिपति प्रदाकु रक्षितान्नमीशवः तेभ्यो नमोधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं द्विस्मस्तं वोजं भेदद्मः ओम उदीची दिक्सोमोधिपतिस्वजो रक्षिता सनिरिशवः तेभ्यो नमोधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं द्विस्मस्तं वोजं भेदद्मः ओम ध्रुवादिग्विष्णुरधिपतिः कल्मासग्रीवो रक्षिता वीरुध ईशवः तेभ्यो नमोधिपतिभ्यो नमो रक्षितेभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं द्विस्मस्तं वोजं भेदद्मः ओम ऊर्ध्वादिग्बृहस्पतिरधिपतिस्विस्त्रो रक्षिता वर्षमीशवः तेभ्यो नमोधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं द्विस्मस्तं वोजं भेदद्मः। हे पावन परमेश्वर, आप प्रतीची, उदीची, ध्रुवा, ऊर्ध्वा, प्राची, दक्षिणा आदि समस्त दिशाओं में विद्यमान हो और विद्यमान होकर हम सबकी रक्षा करते हैं। हम आपके रक्षक स्वरूप को बार बार प्रणाम करते हैं तथा द्वेष भाव को आपकी न्याय व्यवस्था में समर्पित करते हैं। अथ उपस्थान मंत्रा ओम उद्वयम तमसस्परिस्वः पश्यन्त उत्तरम देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम ओम उदुत्यम जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम ओम चित्रम देवानां मुद्गादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्या वा पृथिवी अंतरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तु सस्य स्वाहा ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतं दीनास्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। हे पिता, आपकी दया से हम अज्ञान अंधकार से ज्ञान व प्रकाश की ओर बढ़ें तथा समस्त इंद्रियों से भद्र आचरण करते हुए तथा आपका स्मरण करते हुए 100 वर्ष तक सुखपूर्वक जीवन यापन करें। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राणस्वरूप, दुख विनाशक, स्वयं सुख स्वरूप
और सुखों को दें।

देने वाले प्रभु, हम आपके वर्णीय तेज स्वरूप का ध्यान करते हैं। आप कृपा करके हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग में प्रेरित कीजिए। अथ समर्पणम्। हे ईश्वर दयानिधे, भवत् कृपयानेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्यः सिद्धिर् भवेन्नः। हे दयानिधान, हम आपकी उपासना करते हैं, आप कृपया करके हमें शीघ्र धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति कराइए। अथ नमस्कार मंत्रः। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। हे सुख स्वरूप व सुख प्रदाता, कल्याणकारक मंगल स्वरूप, मोक्ष को देने वाले प्रभु, पूज्य प्रभु, हम पुनः पुनः आपके शिव रूप को प्रणाम करते हैं। आपको बारंबार नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः

0: शान्तिः शान्तिः शान्तिः इति संध्योपासनम विधि। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जागृति।

Ah, ये सुनिए सीबी की ओर से एक विज्ञप्ति वालेंटिना और पेटी कॉन्फिनिक्स के आसपास के इलाके CWA वालेंटिना वाल डे वी इवेट गार्डन मोसेलमोर ले नोर पेटी कॉक के कुछ इलाके मोसेलमोर रिवियर एज सोफिया ब्रांच रोड मोसेलमोर डामरी के रहने वालों को ये सूचित किया जाता है कि बुधवार 23 सितंबर 2026 सुबह के 9 बजे से शाम के 4 बजे तक बिजली सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्य पूरा होते ही बिना पूर्व सूचना दिए बिजली सप्लाई फिर से चालू कर दी जाएगी। सीबी अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। सुबह के 6:20 हुए हैं दोस्तों और आप सुन रहे हैं रेडियो मॉरिशस सुबह का नजराना प्रोग्राम। चलिए इस सफर में आप लोग उत्साह दे रहे हैं और इस कार्यक्रम को हमने शुरू कर दिया है लता जी की आवाज़ में। ये गाना सुनिए और 6:30 तक चंद खूबसूरत गाने आप लोगों के नाम और 6:30 भूलेगा नहीं समाचार। हमारी मुलाकात होगी समाचारों के बाद।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घर मिलाइए, सुबह के ठीक 6:30 बज रहे हैं। नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरुआत आज की सुर्खियों के साथ। खियोले में शुक्रवार को हुई सरस्वती मुचिया की हत्या के मामले में एक नई बात सामने आई। संदिग्ध राधाकृष्णा मुनि स्वामी ने कल रात अपना अपराध स्वीकार किया, उसे आज अदालत में पेश किया जाएगा। विदेश मंत्री रितेश रामफल शनिवार को न्यूयॉर्क पहुंचे, जहां वे कल शुरू हो रहे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में शामिल होंगे। महासभा के उद्घाटन से पहले उन्होंने कल रविवार को कई बैठकों में हिस्सा लिया। मुख्य रूप से आपसी हित के कई मुद्दों पर चर्चा हुई। जूनियर मिनिस्टर फैब्रिस दावीद ने आश्वासन दिया है कि मछली निर्यात को लेकर स्थिति नियंत्रण में है। उनके अनुसार मौजूदा मछली पालन समझौतों के अंतर्गत मॉरिशस यूरोपीय संघ और यूके के लिए ट्यूना मछली का एक बड़ा निर्यातक बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिका ने चेतावनी दी है कि ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों और सऊदी अरब के बीच संघर्ष तेजी से बढ़ सकता है। नमस्कार, इस बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। थियोले में शुक्रवार को हुई सरस्वती मुचिया की हत्या के मामले में एक नई बात सामने आई है। संदिग्ध राधाकृष्णा मुनि स्वामी ने कल रात अपना अपराध स्वीकार किया। उसे नॉर्थर्न डिवीजन की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के एक ऑपरेशन के दौरान पिछड़ाफे में उसके घर से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के अनुसार 52 साल के इस व्यक्ति ने पैसों के लेन देन को लेकर हुए झगड़े के बाद 60 वर्षीय इस महिला का गला घोंटकर उसकी हत्या करने की बात स्वीकारी है। इस महिला के साथ ब्रोकर का काम करने वाले संदिग्ध के अनुसार उसने सोच समझ कर पहले से ही इस हत्या की योजना बनाई थी। सरस्वती मुचिया का शव उसकी सब्जियों के खेत में पाया गया था। इस मामले की जांच एमसीआरटी को सौंपा गया है। संदिग्ध को आज अदालत में पेश किया जाएगा। विदेश मंत्री रितेश रामफल शनिवार को न्यूयॉर्क पहुंचे हैं, जहां वे कल शुरू हो रहे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में शामिल होंगे। वहां पहुंचते ही उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के समक्ष मॉरिशस के स्थायी प्रतिनिधि मिलान मितौबान समेत कई अधिकारियों के साथ एक कार्य सत्र में भाग लिया। महासभा के आधिकारिक उद्घाटन से पहले रितेश रामफल ने कल रविवार को कई बैठकों में हिस्सा लिया। इनमें कॉमनवेल्थ मिनिस्टेरियल एक्शन ग्रुप और अलायंस ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट्स की बैठकें थी। मुख्य रूप से आपसी हित के कई मुद्दों पर चर्चा हुई। विस्तार राजमिला सीतामणि और पूजा सुकालू के साथ।
2: Man bilatéral qui m'ont présenté avec man plusieurs man collègues ministres affaires étrangères man différents pays.
3: विभिन्न देशों के अपने समकक्ष विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें होंगी, जिनमें हम आपसी हित के मुद्दों पर बात करेंगे। संभवतः शुक्रवार को मैं एक महत्वपूर्ण भाषण दूंगा, जिसमें मॉरिशस और पूरी दुनिया से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी बात रखूंगा।

विदेश मंत्री ने देशों के बीच संबंधों और राष्ट्रसंघ की भूमिका पर खास बल दिया है। उनका मानना है कि इस संगठन की तौर तरीकों पर फिर से गौर किए जाने, संयुक्त राष्ट्र सिक्योरिटी काउंसिल में अफ्रीका की भागीदारी और मजबूत किए जाने की भी आवश्यकता है। न्यूयॉर्क की इस यात्रा के दौरान शागस दस्तावेज पर भी चर्चा होगी। रितेश रामफल ने इस संबंध में बरतानी विदेश मंत्री से भेंट करने की भी इच्छा जताई है। राजमिला

0: महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि अब समय आ गया है कि अफ्रीकी महाद्वीप को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। अफ्रीकी महाद्वीप जो लगभग 1.4 बिलियन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, ये संभव नहीं है कि संयुक्त राष्ट्र के स्तर पर वो उचित रूप से प्रतिनिधित्व न पाए। इसलिए इन मुद्दों पर बात करना महत्वपूर्ण है और मैं अपने भाषण के दौरान इस विषय पर जरूर बात करूंगा।
1: Pas représenté au niveau des Nations Unies. Alors c'est un sujet qui nous est capable de considérer et qui ne peut pas aborder aussi dans mon discours.
2: संयुक्त राष्ट्र के लिए ये साल बहुत महत्वपूर्ण है। न्यूयॉर्क में 81वीं महासभा एक बेहद मुश्किल माहौल में लग रही है। कई जगहों पर संघर्ष, दुनिया के कई बड़े देशों के बीच मतभेद, आर्थिक संकट और टिकाऊ विकास से जुड़ी नियमित चुनौतियां। इस बार चर्चा के केंद्र में अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों और महासचिव अंतोनियो गुतेरेस के उत्तराधिकारी का चुनाव भी शामिल है, जिनका कार्यकाल 2026 के आखिर में समाप्त हो रहा है। राजमिला सीतामणि, पूजा सुकालू।
0: 22 से 28 सितंबर तक दुनिया के नेता न्यूयॉर्क में एकत्रित हो रहे हैं, जहां वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख चुनौतियां शांति, सतत विकास, जलवायु, स्वास्थ्य और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बात करेंगे। 18 सितंबर 2026 को सतत विकास लक्ष्यों को समर्पित SDG मोमेंट के दौरान संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने अब तक हुई प्रगति पर प्रकाश डाला। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अभी कितना बड़ा काम बाकी है। महासभा को कई महत्वपूर्ण फैसले भी लेने हैं, जिनमें संयुक्त राष्ट्र के बजट और अगले महासचिव की नियुक्ति शामिल है। एंटोनियो गुतेरेस का दूसरा 5 वर्षीय कार्यकाल 31 दिसंबर 2026 को समाप्त होगा। 77 वर्षीय पुर्तगाली नेता संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष पद पर 10 वर्ष बिता चुके होंगे। वर्तमान में 8 उम्मीदवार उनके उत्तराधिकारी बनने की दौड़ में हैं। सबसे पहले सुरक्षा परिषद को किसी एक नाम पर सहमति बनानी होगी, जिसके बाद महासभा उस चयन को मंजूरी देगी।
2: प्रधानमंत्री दफ्तर के पूर्व सीनियर एडवाइजर जॉन कॉल एलिजे और मलागासी व्यापारी मामी गवातुमांगा के भरोसेमंद सहयोगी बताए जाने वाले दाविद तोमा से जुड़ी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग की जांच में एक नई बात सामने आई है। इसमें खासतौर पर गवातुमांगा मामले से जुड़ी 350 मिलियन रुपए की कथित डील के बारे में बातचीत है। हालांकि अभी तक इस मामले की असलियत, बातचीत करने वालों की पहचान और इसमें शामिल रकम की सही जानकारी का पता नहीं चल पाया है। प्राप्त हालिया जानकारियों के मुताबिक आगे की जांच पड़ताल के लिए फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन के एक वरिष्ठ अधिकारी और साइबर लैब के एक प्रतिनिधि यूरोप जा रहे हैं। मकसद है उस व्यक्ति के फोन की जाँच करना जिसने कथित तौर पर विदेश से ये रिकॉर्डिंग मॉरिशस भेजी थी, ताकि उसके डिजिटल ट्रैक का पता लगाया जा सके और उसकी असलियत की पुष्टि की जा सके। अधियावालिया प्रणव बिहारी की रिपोर्ट पर विवरण पूजा सुकालू।
0: अब जांचकर्ता उस रिकॉर्डिंग के प्रसारण की पूरी कड़ी का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑडियो रिकॉर्डिंग में विशेष रूप से गवातुमांग मामले के संदर्भ में कथित तौर पर 350 मिलियन रुपए की मांग का उल्लेख है। जांचकर्ताओं को अभी ये स्पष्ट करना बाकी है कि इस रकम की वास्तविकता क्या है और बातचीत की प्रामाणिकता की पुष्टि करनी है। अपने बयान में नासेर बिकी ने दावा किया था कि उनके पास ये ऑडियो रिकॉर्डिंग है। 11 सितंबर को उन्होंने FCC को एक अफिडेविट के साथ एक USB ड्राइव भी सौंपी, जिसमें उनके आरोपों के समर्थन में जानकारी मौजूद थी। हमें जानकारी मिली है कि FCC के एक वरिष्ठ अधिकारी डिजिटल विश्लेषण में विशेषज्ञता रखने वाली इकाई के एक अधिकारी के साथ यूरोप जा रहे हैं। वहां वे उस व्यक्ति से मुलाकात करेंगे जिसके पास विदेश में सुरक्षित रखी गई मूल रिकॉर्डिंग होने की बात कही जा रही है और उस उपकरण की भी जांच करेंगे जिसमें ये रिकॉर्डिंग मौजूद है। इसका उद्देश्य फाइल के स्रोत का पता लगाना, सच का पता लगाना है कि इसे कब प्राप्त किया गया था, ये किस किस चरण से होकर गुजरी और ये निर्धारित करना है कि इसमें किस तरह का बदलाव किया गया है या नहीं। अब जांचकर्ता इस संस्करण की भी पुष्टि करना चाहते हैं। FCC पहले से ही 3 ऑडियो

0: रिकॉर्डिंग पर काम कर रही है और उनके स्रोत तथा उनके डिजिटल सफर का पता लगाने की कोशिश कर रही है। इस समय तक ऑडियो रिकॉर्डिंग की प्रामाणिकता और उसमें मौजूद आवाजों की पहचान आधिकारिक रूप से नहीं हुई है। वहीं जॉन कार्ल एलिजे ने इस बातचीत में शामिल होने से इनकार किया है।
1: मॉरिशस की मछलियों के लिए यूरोपीय मंडी में जगह बनाना मुश्किल होता जा रहा है। ट्यूना, स्टॉकफिश, दोगाद जैसे कई मछलियों को यूके सहित कई यूरोपीय देशों में स्वीकार नहीं किया जा रहा। इस स्थिति से इस सेक्टर में चिंताएं बढ़ रही हैं और मॉरिशस को निर्यात के लिए खास कर एशिया में नई मंडियां तलाशनी पड़ रही हैं। इसके पीछे मुख्य रूप से एक्वाकल्चर, खासकर मेडिटेरेनियन ट्यूना फार्मिंग से हो रहे कंपटीशन का कारण बताया जाता है। मछुआरों के श्रमिक संघ के प्रतिनिधि जिडेक सामफल का मानना है कि यूरोपीय मंडियों में मॉरिशन मछलियों के प्रवेश के लिए सरकार को जरूरी कदम उठाने की आवश्यकता है, खासकर मौजूदा समझौतों के अंतर्गत। हालांकि अगर बाजार की ये संभावनाएं कम होती हैं तो मॉरिशस को अपने कारोबार में विविधता लाने की रफ्तार बढ़ानी होगी और एशियाई मंडियों पर ज्यादा ध्यान देना होगा। दूसरी तरफ जूनियर मिनिस्टर फाबुज दाविद अपनी तरफ से आश्वासन देते हैं कि स्थिति नियंत्रण में है। उनके अनुसार मौजूदा मछली पालन समझौतों के अंतर्गत मॉरिशस यूरोपीय संघ और यूके के लिए ट्यूना मछली का एक बड़ा निर्यातक बना हुआ है। मॉरिशन समंदर में पकड़ी जाने वाली ताज़ी मछलियों का एक बड़ा भाग सीधे निर्यात किया जाता है, जबकि एक हिस्सा प्रोसेसिंग के लिए मॉरिशस लाया जाता है। सरकार दूसरे बाजारों पर भी ध्यान दे रही है। मॉरिशस की ट्यूना मछली पहले से ही ताइवान और अमेरिका की तरफ निर्यात की जा रही है, इसलिए इन बाजारों को और विकसित करने के साथ साथ मछली पालन क्षेत्र को आधुनिक बनाने का भी लक्ष्य तय किया गया है। ऑडियो विजुअल विरासत को बेहतर ढंग से सुरक्षित रखने और कंटेंट तक पहुंच बनाने के मकसद से फ्रांस के नेशनल ऑडियो विजुअल इंस्टीट्यूट की एक टीम ने पिछले हफ्ते एमबीसी का दौरा किया ताकि मौजूदा आर्काइव्स प्रक्रिया का जायजा लिया जा सके। इस मिशन के नतीजे में मूर्त और अमूर्त दोनों तरह की असली विरासत को बेहतर ढंग से सुरक्षित रखने और प्रदर्शित करने के लिए सिफारिशें पेश की जाएंगी। पूरे टापू में वर्षा की वापसी के लिए मगुवाक्वा जलाशय में कल वृष्टि महायज्ञ का आयोजन किया गया, जहां का जल स्तर गंभीर रूप से प्रभावित है। आर्यसभा मॉरिशस की पहल पर आयोजित इस यज्ञ में मॉरिशस वासी की बड़ी संख्या में भागीदारी रही। आस्था गोविंद।
2: मौवाक्वा का जल स्तर घट रहा है। इसी जलाशय के समीप आर्यसभा मॉरिशस ने वृष्टि महायज्ञ का आयोजन किया। ऋग्वेद के पर्जन्य सूक्त में वर्षा को धरती और वनस्पतियों के जीवन से जोड़ा गया है। यहाँ वैदिक मंत्रों के बीच अग्नि में आहुतियाँ अर्पित की गईं। यज्ञ में सामग्री भी डाली गई, जड़ी बूटियों, घी, सूखे मेवों और अन्य पदार्थों का मिश्रण। यज्ञ और वर्षा के बीच माने जाने वाले संबंध की वैदिक तथा वैज्ञानिक व्याख्या भी की गई।
3: इस यज्ञ में हम विशेष मंत्रों का पाठ करते हैं जिससे एक वर्षा हो सकती है, और खासतौर जब पर सूखा पड़ता है तो इस यज्ञ का आयोजन किया जाता है जलाशय या नदी के पास। और इससे क्या होता है कि जो विशेष हम औषधि इसमें इस्तेमाल करते हैं वो औषधि मतलब वर्षा को मतलब ज़्यादा आकर्षित करते हैं और इससे वर्षा होती है। इसमें विशेष जो है घी इस पर डालते हैं, और इसमें जो सामग्री होते हैं उसमें विशेष औषधि, शहद और कुछ ड्राई फ्रूट्स भी लगाया जाता है। जो मॉलिक्यूल ये औषधियों में मतलब रहें उसको हम धीरे धीरे पूरे ये जो वातावरण है हमारा, हवा है मतलब पर्यावरण में, उसको धीरे धीरे जाता है। जब जाता है तो एक तरह से क्लाउड सीडिंग होता है, और उस क्लाउड सीडिंग से हमारा जो जो जगह है वो ठंडा पड़ जाता है, थोड़ा ठंडा हो जाता है, तो ठंडे होने के कारण वो वर्षा होने लगती है।
2: दिन भर श्रद्धालु सामूहिक प्रार्थना में भाग लेने आती रही। मंत्रों के महत्व और पर्यावरण संरक्षण पर भी चर्चा हुई। वर्षा के लिए प्रार्थना के साथ प्रकृति की रक्षा का संदेश भी दिया गया।
4: तो ये वेद के आधार पर मंत्र पाठ करते हैं, और वो मंत्र में भी जैसे मेंढक शोर करते हैं ना, इसी प्रकार से कुछ मंत्र इस प्रकार से है जो शोर करे और बादलों को इकट्ठा करे ताकि बरसात होवे। वेदों में कहा गया है यज्ञ सर्वश्रेष्ठ कर्म।

0: है और सर्वश्रेष्ठ कर्म कैसे। अभी देखिए हम तो यज्ञ कर रहे हैं यहाँ पर एक प्रकार से, और देखिए कि हमारे जो पहाड़ों में जो नाले हैं, जो जहाँ पर पेड़ जम गए हैं, जो नाले जलाशय में पानी लाते हैं उसको साफ करना भी एक यज्ञ है, उसको भी साफ करना एक यज्ञ है। और जितने भी नाले होते हैं जो पानी लाकर हमारे जलाशय में छोड़ते हैं, लोगों से तो यही हम मांग करते हैं कि प्लास्टिक वेस्ट इत्यादि इन नाले में ना फेंके, ये भी एक यज्ञ है।
1: सायं 6 बजे अंतिम आहुति के साथ महायज्ञ पूर्ण हुआ। मौवाक्वा के समीप की गई ये प्रार्थना समूचे देश के लिए थी, अच्छी वर्षा हो और जलाशयों के साथ अन्य जल भंडार भी फिर से भर उठे।
2: मॉरिशस में रामायण गान हिंदू संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। ये परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी आवाज, संगीत और रामचरितमानस की चौपाइयों के साथ की पाठ के माध्यम से आगे बढ़ती जा रही है। इसके लिए मॉरिशस सनातन धर्म टेंपल फेडरेशन की तरफ से महत्वपूर्ण प्रयास किए जाते हैं। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए फेडरेशन की ओर से रामायण गान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इसका फाइनल पोर्ट लुइस में लगा। चौताल और मॉडर्न क्लासिकल कैटेगरी में जीत नोत्रदाम काली माता मंदिर की टोली की हुई पारंपरिक गायन में रामायण सेवा संगठन में जिन कौंदमास की टोली की जीत हुई। यशना मिश्रा।
3: रामायण का पाठ करना, रामायण गायन एक वास्तविक कला है। रामचरितमानस की चौपाइयों और दोहों को पारंपरिक धुनों के अनुसार गाया जाता है। इसमें लय और स्वर के साथ रामायण के कई प्रसंगों को जीवंत किया जाता है।
4: जो उनको मजा हिंदी में जाए उतना बोले लन जा तो उन लोग में थोड़ा कठिनाई हुएला। जब हिंदी बोले जान जेबा तो हमने के हो शब्द उच्चारण करके ज़्यादा अच्छा रहेला और राग डाले के भी अच्छा रहेला। और जो उनकी से चौपाई के राग दूसर है, दुहा के राग दूसर है, और कमी सुरता के राग दूसर है।
5: रामचरित मानस सब सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना गया है, इसलिए इसको नित्य प्रतिरोज इसका पाठ करना चाहिए और स्वरबद्ध करना चाहिए, प्रेम से करना चाहिए, भाव श्रद्धा विश्वास के साथ करना चाहिए।
3: मंच पर अलग अलग समूह रामायण गायन की अपनी अपनी प्रस्तुति देते हैं। कुछ समूह पारंपरिक शैली में, कुछ आधुनिकता के साथ अपनी प्रस्तुति पेश करते हैं। इसके लिए तैयारी, रामचरितमानस के पाठ की अच्छी जानकारी और इस परंपरा की विशिष्ट धुनों और लय को बनाए रखने की आवश्यकता होती है।
6: हम छोटा से खेलते ढोलक चौताल, ढोलक सीखे के आगे हम कबीला के जो नामक रह आगे मिल के जीबिया और ले गाँव जी करके उसे बजावट ली सा। तब आले आले बैठका में जब चौताल 40 दिन हुए तो हमने छोटा रही सा देखा रही सा, तो जब वो लोग पोजे हो गए पो तब हम लेके ढोलक पास सही कर टली। तो एक वो दादा बोले एक दिन निमन से बजाए और कैसे बोले और बोली और कैसी सच हो अभी ले बजाई थे हैं। अब जन बा अब मजे जो जन लोग दूसर का आते खेले तो सो नुवो वे सो ने स्ट्रीमो सब का आते ना स्ट्रीमो से भी करने सो अब तो लागी तो सब दादा तो उनसे
7: प्रेमी बिजे फे मन जन कोंटन रामायण अवो गॉड ला ट्रेडिशन सो वे ला फासों दे वे शों की टी पे सोंते ट्रेडिशनल ला वे सो लोटा सो डोलोक सो जाल मे मेंटेनो से मो प्लस वी के कम सेरे ला वी पे एवोलुए इन बन जन ला जे पियल देन लो डायरेक्शन अलोस मो कम गुरुजी की मन फे सों सों जन चिपे बन रा की पियले ला दो।
3: युवाओं की भागीदारी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
8: Le même grand jeune, nous peux faire lire avec la joie quand je peux finir tout à faire, je peux assister, je peux faire lire comment un pasteur pour cette nous peux faire lire pour garder une culture.
9: Dans l'enfance, moi je parle chez la 6 Free Salvagogni dans notre mandir. Là depuis là-bas, nous commence à prendre tabla. Moi j'ai de l'eau que mon accompagne maintenant.
10: Moi maman a participé à petit amène moi Shivala et depuis Shivala même mon apprend la Mayenne et la Mayenne fait moi apprendre beaucoup d'affaires.
11: Et depuis petit moi de la musique, me ressonner, me se tablasser et mon courage. Tout le monde by behind c'est qui fait ça. Je fais de la musique, fais la prière, tout ça.
3: 3 श्रेणियों पारंपरिक, आधुनिक और चौताल में आयोजित यह प्रतियोगिता

0: विविधता मात्र एक प्रस्तुति ही नहीं, हर समूह अपनी अलग शैली के साथ प्रस्तुति देता है, लेकिन साथ ही उस परंपरा से भी जुड़ा रहता है जो मॉरिशस के हिंदू समुदाय की सांस्कृतिक विरासत में महत्वपूर्ण स्थान रखती है।
1: बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर, अमेरिका ने चेतावनी दी है कि ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों और सऊदी अरब के बीच संघर्ष तेजी से बढ़ सकता है, क्योंकि यमन संघर्ष के दोबारा शुरू होने के बाद पहली बार रियाद को निशाना बनाकर मिसाइल हमला किया गया है। इस बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मैरीलैंड में अपनी सप्ताहांत की छुट्टी बीच में ही छोड़कर व्हाइट हाउस लौटना पड़ा है। उधर रूस में युद्ध के दौरान हो रहे प्रथम संसदीय चुनाव के तीसरे और आखिरी दिन मॉस्को पर यूक्रेन की तरफ से किए गए ड्रोन हमलों की एक बड़ी लहर के जवाब में रूस ने कीव पर अपने हमले तेज करने का दावा किया है। रूसी राजधानी पर हुए इन ड्रोन हमलों को अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। 3 लोगों के मारे जाने की खबर है और एक तेल रिफाइनरी का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। आखिर में चले जानते हैं स्थानीय मौसम का हाल। आम हालत हमारे इलाके पर हल्की ठंडी हवाएं चल रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान, आज सुबह रह रहकर हल्की बारिश हो सकती है। दिन के दौरान आमतौर पर मौसम सुहाना रहेगा। रात के दौरान पूर्व दक्षिण और सेंट्रल प्लाटू वाले इलाकों पर बादल घिराएंगे और रह रहकर बारिश होगी। हवा दक्षिण पूर्व की तरफ से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके कुछ जगहों पर 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के परे समंदर चंचल रहेगा। दक्षिण पश्चिमी समंदर में 2 मीटर तक की लहरें उठेंगी। तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम 15 से 17, अधिकतम 21 से 24 डिग्री सेल्सियस, साहिल इलाकों पर न्यूनतम 19 से 21, अधिकतम 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह 6 बजे सूर्योदय हुआ, शाम को 6:05 पर सूर्यास्त होगा।

समाचारों के आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। त्रियोले में शुक्रवार को हुई सरस्वती मुच्चा की हत्या के मामले में एक नई बात सामने आई। संदिग्ध राधा कृष्णा मुनि स्वामी ने कल रात अपना अपराध स्वीकार किया। विदेश मंत्री रितेश रामफल शनिवार को न्यूयॉर्क पहुंचे हैं, जहां वे कल शुरू हो रहे संयुक्त राष्ट्र महासभा की 81वें सत्र में शामिल होंगे। जूनियर मिनिस्टर फैब्रिस दावीद ने आश्वासन दिया है कि मछली निर्यात को लेकर स्थिति नियंत्रण में है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिकी राष्ट्रपति ने चेतावनी दी कि ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों और सऊदी अरब के बीच संघर्ष तेजी से बढ़ सकता है। देश विदेश की इन खबरों के साथ ही मुख्य समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। इसको आप तक पहुंचाने में कादिर हमारे साथ रहे। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। रॉयल रोड मॉड ऑस्ट्रेलिया में 80 साल के 80 इयर्स ओल्ड श्री अंगद किस्तो जो भीम नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के एक बजे इनके मकान रॉयल रोड मॉड ऑस्ट्रेलिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए अमोरी की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 1 PM। पावे रोड रिविया जो ओम्पा में 84 साल के 84 ईयर्स ओल्ड श्री सीउदत विश्राम जो रामदेव नाम से ज़रा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के तीन बजे इनकी पत्नी श्रीमती शांता विश्राम के मकान पावे रोड रिविया जो ओम्पा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो गुडलैंड की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 3 PM। रोबे एडवर्ड स्ट्रीट स्टैनली रोजिल में 70 साल के 70 ईयर्स ओल्ड श्री सदानंद अंगोचिया इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज सुबह 10 बजे इनकी पत्नी श्रीमती बीना अंगोचिया के मकान रोबे एडवर्ड स्ट्रीट स्टैनली रोजिल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए भी

0: आकी शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टूडिया 10 AM। अवेनी कोकोचिये लियो शेतिया रुजमे, अवेनी कोकोचिये लियो शेतिया रुजमे 20 साल के 20 years old श्री सोरमासुंदरम पुनुसामी, श्री सोरमासुंदरम पुनुसामी जो सोजिए नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 3 बजे इनकी अर्थी आज दिन के 3 बजे इनके पिता श्री नादेन पोनुस्वामी के मकान अवनी कोकोचे लियो शेत्यागोर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बामा शौकी श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टुडे 3 PM। टेम्पल रोड अमोरी में, टेम्पल रोड अमोरी में 50 साल के 50 years old श्री वेदानंद सिंह सिबलाल, श्री वेदानंद सिंह सिबलाल जो किरण नाम से ज़रा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 1 बजे इनकी अर्थी आज दिन के 1 बजे इनकी माँ श्रीमती परमावती सिबलाल के मकान टेम्पल रोड अमोरी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावोंचिया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टुडे 1 PM। आले रुसाई ग्रो कायू में, आले रुसाई ग्रो कायू में 68 साल के 68 years old श्री प्रकाश सिंह लक्ष्मण, श्री प्रकाश सिंह लक्ष्मण जो प्रकाश नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे इनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे इनके मकान अले गुसाई घोकायू से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बॉम्बो की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टू डेट 11 AM। सैतान रोड प्लेंडेजा सिनी फ्लैक में, सैतान रोड प्लेंडेजा सिनी फ्लैक में 48 साल के 48 years old श्री हेमंत कुमार सोमरा, श्री हेमंत कुमार सोमरा जो नितिन नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे इनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे इनकी पत्नी श्रीमती वर्षा सोमरा के मकान सैतान रोड प्लेंडेजा सिनी फ्लैक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावोंचिया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टू डेट 11 AM। रॉयल रोड लामिचे में, रॉयल रोड लामिचे में 97 साल की 97 years old श्रीमती डर्मासिला डमुरो बेरा, श्रीमती डर्मासिला डमुरो बेरा पैदाशी नाम लोसर जो दादी बाबू नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 1 बजे इनकी अर्थी आज दिन के 1 बजे के बेटे श्री अविनाश डमुरो बेरा के मकान रॉयल रोड अमीची से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टुडे 1 PM। एवेन्यू डोडोल एस्पेरेंस पीतों में, एवेन्यू डोडोल एस्पेरेंस पीतों में 78 साल की 78 years old श्री सोनालाल सोमारू, श्री सोनालाल सोमारू जो ज्ञान सादो नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे इनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे इनके बेटे श्री राजेश सत्यम रितेश सोमारू के मकान अवेन्यू डोडोल एस्पेरेंस पीतों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कारो मौत है लेस्पेरेंस पीतों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टू डेट 11 AM। पायोंके रोड प्रोविडेंस क्वार्टर मिलिटेरी में, पायोंके रोड प्रोविडेंस क्वार्टर मिलिटेरी में 61 साल की 61 years old श्रीमती बिमला गुप्ता, श्रीमती बिमला गुप्ता पैदाशी नाम राम बोजू जो कविता नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज सुबह 9 बजे इनकी अर्थी आज सुबह 9 बजे इनके बेटे श्री इरेश गुप्ता के मकान पायोंके रोड प्रोविडेंस क्वार्टर मिलिटेरी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कोंदेमास की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टुडे 9 AM। शोक में डूबे परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
1: सभी सुनने वालों को अरविंद का प्यार भर नमस्कार। स्पोर्ट्स बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रीमियर लीग में इस वीकेंड, इस सप्ताहांत क्या कुछ नहीं हुआ। बस ब्रैडफोर्ड जिसने चेल्सी को डुबाया, बस ब्राइटन जिसने चैंपियन आर्सेनल को पीटा, पर बस बोर्नमुथ लिवरपूल के खिलाफ कोई बकबक नहीं। उधर मैनचेस्टर यूनाइटेड बच गया फुलहाम के यहाँ, जबकि मैनचेस्टर सिटी वाले मैच में गोलों की बरसात। मैनचेस्टर सिटी 5 सन्डरलैंड 3, सेमेनियो का डबल, एंजो फर्नांडेज, चर्की और अलोन भी स्कोर कर पाए, जबकि सन्डरलैंड के लिए ब्रायन ब्रॉबी का हैट्रिक। इस जीत से मैनचेस्टर सिटी अब आर्सेनल से 3 अंक आगे निकल चुका है। लिवरपूल के मैनेजर एंटोनी इराओला

की घर वापसी अच्छी रही, 1-0 से लिवरपूल की कीमती जीत, सेकंड हाफ में ईसा का गोल, लिवरपूल का डिफेंस सॉलिड था, लगातार 3 क्लीन शीट प्रीमियर लीग में, वर्जिल वैन डाइक के साथ जेरेमी जाके लिवरपूल का चट्टान बन गया है, मैनचेस्टर यूनाइटेड को हार से बचाया मार्चुस कुन्हा ने, फुलहाम 1 मैनचेस्टर यूनाइटेड 1, पहले लिजांड्रो मार्टिनेज का एक अजीब बिजा ऑन गोल रहा, मैच के अंतिम मिनटों में कुन्हा का डिफ्लेक्टेड शॉट गोल बना, लीड्स यूनाइटेड 0 क्रिस्टल पैलेस 0, सो 5 मैचों के बाद मैनचेस्टर सिटी के लिए फुल 15 अंक, आर्सेनल 3 अंक पीछे 12 अंकों के साथ, ब्राइटन जिसने आर्सेनल की बत्तियां बुझाई थी उसके पास हैं 10 अंक, ब्रेंटफोर्ड लीड्स लिवरपूल के पास 9 अंक हैं, मैनचेस्टर यूनाइटेड 12वें स्थान पे हैं 12th पोजीशन, उसके पास हैं 5 अंक। अब इंटरनेशनल ब्रेक, अब 10 अक्टूबर मतलब 3 हफ्ते बाद प्रीमियर लीग की वापसी होगी, 11 अक्टूबर को लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर सिटी, 10 अक्टूबर को मैनचेस्टर यूनाइटेड टोटनहम हॉटस्पर आर्सेनल लीड्स, अभी के लिए प्रीमियर लीग के लिए आराम, 3 हफ्तों की छुट्टी। स्कॉटलैंड में ओल्ड फर्म डर्बी में रेंजर्स ने सेल्टिक के मैदान में 1-0 की जीत हासिल की, स्पेन के ला लीगा में एथलेटिको मैड्रिड ने मैड्रिड डर्बी जीता रियल मैड्रिड को 2-1 से हराकर, गेटाफे 1 मालागा 0, डेपोर्टिवो 1 रियल बेटिस 1, विलारियल 3 लेवेंटे 1, वेलेंसिया 2 रियल सोसिएदाद 3, बार्सिलोना अभी 21 अंकों के साथ 21 पॉइंट्स वो आगे हैं एथलेटिको मैड्रिड के पास है 16 अंक, रियल मैड्रिड के पास है 15 अंक, ला लीगा में 7 मैच खेले जा चुके हैं। जर्मनी के बुंडेसलीगा में बायर लेवरकुसेन 2 आरबी लाइपज़िग 0, शाल्के 04 0 एल्बर्ट्सबर्ग 0, पादेबोर्न 3 होफेनहाइम 1। इटली के सेरी आ में एसी मिलान ने लेचे को 3-0 से हराया, यूवेंटुस की जीत 2-0 से अटलांटा पर, पाओमा 2 जेनोआ 1, फ्रोजिनेनो 2 कोमो 0 कोमो की हार, फ्लोरेंटिना 1 नापोली 1, रोमा इंटर मिलान और लाजियो तीनों के पास 13-13 अंक हैं। फ्रांस के लीग अर में पारिस सैन जर्मेन ने एवे जाकर मार्सेई को 2-1 से हराया, ओसिया 2 ब्रेस्ट 1 नीस 2 लिल 1। लीग अर में मोनाको अभी आगे हैं 13 अंकों के साथ, फिर 11 अंकों के साथ आते हैं लियों और पारी एफ सी, पारिस सैन जर्मेन अभी 6 स्थान पर हैं 8 अंक लिए। इंग्लैंड के लीग चैंपियनशिप में वुल्व्स 1 वेस्ट ब्रोमविच आल्बियन 0, नॉर्विच 3 बोल्टन 4। एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतना बच्चों का खेल नहीं है, पर चाइना की स्कूल जाती हुई लड़की स्कूल गर्ल केवल 13 साल की यू जीडी ने 200 मीटर बटरफ्लाई में रिकॉर्ड बनाया गोल्ड मेडल जीतकर। एशियन गेम्स में ही वुमेन्स क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल भारत और श्रीलंका के बीच होगा, सेमीफाइनल में भारतीय महिला टीम ने बांग्लादेश को 114 रनों से हराया, जबकि श्रीलंका ने पाकिस्तान को 8 विकेट से परास्त किया, फाइनल कल सुबह 9 बजे। सो खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही, आपके ध्यान के लिए शुक्रिया। चलते चलते प्रमुख खबर आपको फिर से बता दें, लिवरपूल जीत गया बोर्नमुथ के खिलाफ 1-0 से, जबकि मैनचेस्टर सिटी के लिए टोटल फुल मार्क 5-3 से संडरलैंड को हराकर मैनचेस्टर सिटी अभी आर्सेनल से 3 अंक आगे निकल चुका है। अब प्रीमियर लीग की वापसी होगी 3 हफ्ते बाद, फिर मिलेंगे, नमस्कार, आप सभी लोगों को अरविंद की ओर से शुभ दिन।

this. आइए सुनिए सीबी की ओर से एक विज्ञप्ति. काथोबोन के आसपास के इलाके पाल्मा रोड, वेस्टर्न बाउंड्री, मानिक एवेन्यू, लोचुस एवेन्यू, जैक्सन एवेन्यू, गोपाल सिंह एवेन्यू, एवेन्यू रामदानी, बासें रोड और काउलिसो लेन, लासोस एवेन्यू के कुछ इलाके. उन रहने वालों को ये सूचित किया जाता है कि आज सोमवार 21 सितंबर 2026 सुबह के 8:30 बजे से शाम के 3:30 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी.

0: मरम्मत कार्य पूरा होते ही बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई फिर से चालू कर दी जाएगी। सी बी अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है।
1: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
2: सुबह का नजराना, रेडियो मॉरिशस।

0: सुबह के 7:04 हुए हैं। नमस्कार श्रोताओं, एमबीसी रेडियो पर आप सबका स्वागत है। आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मॉरिशस के साथ। सुबह का नजराना प्रोग्राम आप लोगों के लिए प्रस्तुत है। जी हाँ दोस्तों, हर सुबह जिंदगी हमें नया मौका देती है, कल जो नहीं कर पाए उसे आज करने का, जो गलती हुई उसे सीखने का, और जो सपना देखा है उसकी तरफ एक कदम और बढ़ने का। मैं उषा कौर आप लोगों के साथ 9 बजे तक का, और यहाँ पर खूबसूरत गाने भी हम चलाएंगे, कुछ विचार आप लोगों के साथ हम बांटेंगे। अभी के लिए आप हमारे साथ जुड़िए और सुनते हैं चिंतन डॉक्टर जुमन जी के साथ।
1: सदाचार और आत्मिक संतुलन का संगम चिंतन, जहां विचारों में मिठास और मन में शांति। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
2: केवल अपने लिए मांगने वाला भिखारी कहा जा सकता है, परंतु सबके लिए मांगने वाला देने वाले का स्वामी ही रहेगा।

सोमवार की इस खूबसूरत सुबह में आप सभी का दिल से स्वागत है एक बार फिर से। जी हाँ, हाल कैसा है आप सबका? आज का दिन बहुत खास है, खासकर उन लोगों के लिए जो आज अपने काम के पहले दिन की शुरुआत कर रहे हैं और दिल में थोड़ी घबराहट होती है, कुछ नया सीखने की उत्सुकता जो है और एक नई जगह पर अपनी पहचान बनाने का जज्बा भी होगा। और यहाँ पर हमने देखा है कि कुछ जगहों पर अभी मौसम ख़राब है, बारिश हो रही है, ठंड का मौसम है। और आप अपना ख्याल रखें और हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए, खूबसूरत गाने का मज़ा लीजिए।

0: हंस के किसी ने देखा एक बार, हंस के किसी ने देखा एक बार है, दिल की मुरादें कोई पा गया।
1: सांसों में मिल

सात बजकर 24 मिनट हुए हैं दोस्तों और आप सुन रहे हैं रेडियो मॉरिशस और यहाँ पर आपके फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस के लिए बहुत धन्यवाद। बस ये दिन आपके लिए खास हो, शुभ हो, हम ये

7:30 बज चुके हैं और आप सुन रहे हैं रेडियो मॉरिशस। चलिए इस कार्यक्रम को हम आगे ले जाते हैं और यहाँ पर सुबह का नजराना प्रोग्राम आपके नाम। चलिए यहाँ पर आप सुन रहे हैं सुबह का नजराना प्रोग्राम। 8 बजे भोजपुरी समाचार, समाचारों के बाद आपकी राशि। और 8:50 पर हमारे धरोहर कार्यक्रम किरण जानकी के साथ। 9 बजे संक्षिप्त समाचार, समाचारों के बाद आज की चर्चा कार्यक्रम नीतू शाह के साथ आप सुन पाएंगे। 10 बजे की संक्षिप्त समाचारों के बाद रोशनी प्रस्तुत करेगी प्रगति धारा प्रोग्राम। और 11 बजे उर्दू प्रोग्राम शाम में फरोजन साइदा सुबाई की प्रस्तुति में। 12 बजे मराठी प्रोग्राम इसे दरमिया के साथ। और 1 बजे, जी हाँ 1 बजे आप सुन पाएंगे तमिल प्रोग्राम।

जी हाँ, 1 बजे तमिल प्रोग्राम और 1:45 गुजराती प्रोग्राम आप सुनेंगे रत्ना के साथ। 2 से 2:30 बजे हक्का प्रोग्राम, चाइनीज़ प्रोग्राम दाविद की प्रस्तुति में। आपके पसंद प्रोग्राम 2:30 से 4 बजे, 4 बजे आप सुन पाएंगे क्षितिज कार्यक्रम और तेलुगु प्रोग्राम वंदना प्रस्तुत करेगी 4:15। 5:30 बजे बच्चों का कार्यक्रम आप सुन पाएंगे रत्ना के साथ। और 6 बजे, जी हाँ, शाम के 6 बजे समाचार, समाचारों के बाद चाइनीज़ प्रोग्राम जिनकी प्रस्तुति में युवारासन प्रस्तुत करेगा तमिल प्रोग्राम रात के 7 से 7:30 बजे तक। स्वरला वेदिका 7:30 बजे वंदना की प्रस्तुति में। और नितिन बापू प्रस्तुत करेगा गीत गंगा प्रोग्राम, मराठी प्रोग्राम 7:50 पर। भजले प्रभु का नाम कार्यक्रम डेविना के साथ रात के 8:10। उर्दू प्रोग्राम रात के 8:40 पर सायदा सुबाई द्वारा आप सुनेंगे। भोजपुरी तर का प्रोग्राम रात के 9 बजे सुरेखा के साथ आप सुन पाएंगे 11 बजे तक। रात के 11 बजे से 12 बजे तक गिनिशा प्रस्तुत करेगी सुनहरे पल प्रोग्राम। और रात के 12 बजे से कल सुबह के 6 बजे तक आप सुन पाएंगे हमारा ओवरनाइट प्लेलिस्ट। तो ये थी आप लोगों के लिए रेडियो सुर्खियाँ।

जान पहचान हो, जीना आसान हो। जी हाँ, ये खूबसूरत गाना आप सुन रहे थे रफ़ी साहब की आवाज़ में, और ये गाना बूस्ट करने के लिए थोड़ा हिम्मत आपको होनी चाहिए ताकि ये दिन आप हमारे साथ शुरू कीजिए और पूरा दिन अच्छा हो, हम यही कामना करते हैं। चलिए, आपके लिए हमने एक छोटी सी कहानी तैयार किया है और कहानी कुछ ऐसा है। एक छोटे से गांव में रवि नाम का लड़का, उसका सपना था कि वो एक बड़ा आदमी होकर, लेकिन हर बार जब वो कोशिश करता था लोग उसे कहते थे तुमसे नहीं होगा। एक दिन रवि उदास होकर पेड़ के नीचे बैठा था, तब उसकी नज़र एक छोटी सी चींटी पर पड़ी। चींटी बार बार दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार नीचे गिर जाती थी। रवि सोचने लगा, ये इतनी छोटी है फिर भी हार नहीं मान रही है। उसने फिर से अपनी मेहनत शुरू कर दी। दिन गुजरते गए, मुश्किलें आती रही, लेकिन रवि रुका नहीं। कुछ साल बाद वही लोग, जी हाँ क्षमा कीजिए, कुछ साल बाद वही लोग जो कहते थे तुमसे नहीं होगा, उसकी मिसाल देने लगे। याद रखिए, हर हार तभी नहीं होती है जब गिरते हैं, हार तब होती है जब हम उठना छोड़ देता है। तो अगर आज जिंदगी आपको गिरा रही है, एक बार फिर उठ कर देखिए।

रखिए। हो सकता है आपकी मंजिल बस एक और कोशिश दूर हो। और ये थी एक छोटी सी कहानी आपके लिए। रफी साहब और लता जी की आवाजों में अगला गाना सुनते हैं, आन फिल्म से लिया गया, 1952 में रिलीज हुई।

7:54 हुए हैं दोस्तों। बस ऐसे ऐसी बातें आप लोगों ने की है जो दिल को छू लिया। जी हाँ, हम बहुत कोशिश करते हैं कि ताकि हम आप लोगों को खुश कर सकें। हमें पता है कि आपको सुंदर गाने सुनना पसंद करते हैं, इसीलिए हम मेहनत करते हैं कि जो भी गाने हम चलाएं सीधे दिल तक छू जाए। और यहाँ पर बस इतना याद रखिए कि सुबह का नजराना खास कर आप लोगों के नाम, और कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती लेकिन हर दिन की छोटी छोटी कोशिशें हमें कामयाबी के करीब ज़रूर ले जाती है। चलिए एक और खूबसूरत गाना हम लोग आप लोगों के लिए हम पेश करने जा रहे हैं। फिल्म मधुमती से लिया गया, मन्ना डे साहब और साथ में है लता जी। तो चलिए ये गाना उन तमाम सुनने वालों के लिए जिन्होंने ये प्रोग्राम को एन्जॉय किया है, 8 बजे भोजपुरी

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: अपन घड़ी मिला ले जा फजीर के 8 बजे तक। नमस्ते, पेशवा भोजपुरी के समाचार। त्रियोले में सुख के होल सरस्वती मुचा की हत्या के मामला में एगो नवा बात सामने आल बाटे। संदिग्ध राधाकृष्ण मुनिस्वामी काल रात के अपन अपराध स्वीकार करलक। ओकरा नॉर्दर्न डिवीजन के क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के एगो ऑपरेशन के दौरान पेचिराफे में ओकर घर से गिरफ्तार करल गल रहल। पुलिस के अनुसार 52 बरिस के व्यक्ति पैसा के लेन देन के लेके होल झगड़ा के बाद 60 बरिस के ई महिला के गला घोंट के ओकर हत्या करे की बात स्वीकार कर ले बाटे। ई महिला के संगे कूचे के काम करे होला। संदिग्ध के अनुसार उ सोच समझ के पहले से ही ई हत्या की योजना बने ले रहल। सरस्वती मुचा के शव ओकर सब्जी के खेत में मिलल रहल। ई मामला के जांच MCIT के सौंपल गल है। संदिग्ध के आज अदालत में पेश करल जाए। विदेश मंत्री रितेश रामफल शनिवार के न्यूयॉर्क पहुंचल हवन, जहां परी उ काल शुरू होए होला संयुक्त राष्ट्र महासभा की 81वां सत्र में शामिल होयन। वहां पहुंचला परी उ संयुक्त राष्ट्र के समक्ष मॉरिशस के स्थायी प्रतिनिधि मिलन मितौबान समेत कई अधिकारी लोग के संगे को कार्य सत्र में भाग लेलन। महासभा के आधिकारिक उद्घाटन से अगते रितेश रामफल काल रविवार की कई गो बैठक में हिस्सा लेलन। एकर में कॉमनवेल्थ मिनिस्टेरियल एक्शन ग्रुप आर अलायंस ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट्स की बैठक भी शामिल रहल। मुख्य रूप से आपसी हित के कई गो मुद्दा पर परिचर्चा होल। विदेश मंत्री दुनिया के देश लोग के बीच संबंध आ राष्ट्रसंघ की भूमिका पर खास बल देलन। उनका एक मानना है कि इस संगठन के तौर तरीका पर फिरों से गौर करे के आर संयुक्त राष्ट्र सिक्योरिटी काउंसिल में अफ्रीका के भागीदारी आर मजबूत करे की आवश्यकता बाटे। न्यूयॉर्क के यात्रा के दौरान सगस्त दस्तावेज परिचर्चा हुई। रितेश रामफल इस संबंध में बरतानी विदेश मंत्री के संगे भेंट के भी इच्छा जतैले हवन। संयुक्त राष्ट्र खातिर ई बरिस बहुत महत्वपूर्ण है। न्यूयॉर्क में 81वां महासभा के बेहद मुश्किल माहौल में लगता। कई गो जगह पर संघर्ष, दुनिया की गई को बड़का देश लोग के बीच मतभेद, आर्थिक संकट आर टिकाऊ विकास से जुड़ल नियमित चुनौती। इला चर्चा के केंद्र में अंतर्राष्ट्रीय चुनौती आर महासचिव अंतोनियो ग्वेटेरेस के उत्तराधिकारी के चुनाव शामिल रही, जिनकर कार्यकाल 2026 के आखिर में समाप्त हुआ था। प्रधानमंत्री दफ्तर के पूर्व सीनियर एडवाइजर जॉन कॉल एलिजे आर मलागासी व्यवसायी मामी हवा तुमांगा की भरोसेमंद सहयोगी बतावल जाए होला। दावित तुमा से जुड़ल एगो ऑडियो रिकॉर्डिंग के जांच के एगो नवा बात सामने आल बाटे। एकर में खास तौर पर ही हवा तुमांगा मामला से जुड़ल 350 मिलियन रुपया के कथित डील के बारे में बातचीत है। हालांकि हवी ई मामला की असलियत बातचीत करे होला लोग के पहचान आर एकर में शामिल रकम की सही जानकारी के पता नहीं चलल बा। प्राप्त हालिया जानकारी के मुताबिक आगे के जांच पड़ताल खातिर फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन के एगो वरिष्ठ अधिकारी आर साइबर लैब के एगो प्रतिनिधि यूरोप जाथवन। मकसद है वो आदमी के फोन के जाँच करे के जे कथित तौर पर ही विदेश से ई रिकॉर्डिंग मॉरिशस भेज ले रहल, जेमे ओकर डिजिटल ट्रैक के पता लगावल जा सकी और ओकर असलियत के पुष्टि भी होई। दूसरा देश के खबर में अमेरिका चेतावनी देले बाटे कि ईरान समर्थित हुती विद्रोही और सऊदी अरब के बीच संघर्ष तेजी से बढ़े सकी, काहे कि येमेन संघर्ष के दोबारा शुरू होए के बाद से पहला हल्ला खातिर रियाद के निशाना बना के मिसाइल हमला करल गल है। ई बढ़ल तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मैरीलैंड के अपन सप्ताहांत की छुट्टी बीच में ही छोड़ के व्हाइट हाउस लौटे के पड़ल। तय रहल भोजपुरी के समाचार, तो ध्यान खातिर धन्यवाद। मनी की खबर सुना जा। कारोलिन बिलेरी बीएसएच में

मातेनेल रोड कारोलिन बेलेरी बीएसएच में 71 बरिस की 71 ओं के बीबी मुनीरा करिम्बकस बीबी मुनीरा करिम्बकस जिमुन नाम से जैसी जान जा थ्रलन उनका इंतकाल हो गल बा उनकर जनाजाज दिन के 12 बज के आधा उनकर जनाजाज दिन की 12 बज के आधा उनकर घरे मातेनेल रोड कारोलिन बेलेरी बीएसएच से उठा के पहली नमाजी जनाजा खातिर कारोलिन के त्वाहा मस्जिद ले जाल जाए फिर दफनाए खातिर त्वाजिलो ओलिविया के कब्रस्तान रॉयल रोड कोंगारो फ्लैक में रॉयल रोड कोंगारो फ्लैक में 79 बरिस की 79 ओं के श्री राम नारायण डोमन श्री राम नारायण डोमन जे दयान नाम से जस्ती जान जा थ्रलन गुजर गल हवन उनकर माटी आज दिन के 3 बजे उनकर माटी आज दिन के 3 बजे उनकर घरे रॉयल रोड कोंगारो फ्लैक से उठा के अंतिम संस्कार खातिर क्वीन विक्टोरिया के श्मशान भूमि ले जाल जाए रॉयल रोड मधुस्थालिया में 80 बरिस की 4 बजों के श्री अंगद किस्तो जे भीम नाम से जस्ती जान जा थ्रलन गुजर गल हवन उनकर माटी आज दिन के 1 बजे उनकर माटी आज दिन के 1 बजे उनकर घरे रॉयल रोड मधुस्थालिया से उठा के अंतिम संस्कार खातिर अमोरी के श्मशान भूमि ले जाल जाए पावे रोड रिविया जो पाओ में 84 बरिस के 84 ओं के श्री सिद्ध विश्राम जे रामदेव नाम से जस्ती जान जा थ्रलन गुजर गल हवन उनकर माटी आज दिन के 3 बजे उनकर माटी आज दिन के 3 बजे उनकर पत्नी श्रीमती शांता विश्राम के घरे पावे रोड रिविया जो पाओ से उठा के अंतिम संस्कार खातिर बेलमो गुडलैंड की श्मशान भूमि ले जाल जाए रोबे एडवर्ड स्ट्रीट स्टैनले रोजिल में 70 बरिस की 70 ओं के श्री सदानंद अंगोचिया गुजर गल हवन उनकर माटी आज दिन के 10 बजे उनकर माटी आज दिन के 10 बजे उनकर पत्नी श्रीमती बीना अंगोचिया के मकान रोबेर्ट एडवर्ड स्ट्रीट स्टैनले रोजिल से उठा के अंतिम संस्कार खातिर बिकाहा के श्मशान भूमि ले जाल जाए अविनी कोकोचिये लियोशे तेरूज में 20 बरिस के 20 ओं के श्री सोमा सुंदरम पोनुसामी जे सोडिये नाम से जस्ती जान जा थ्रलन गुजर गल हवन उनकर माटी आज दिन के 3 बजे उनकर माटी आज दिन के 3 बजे उनकर पिता श्री नादेन पोनुसामी के घरे अविनी कोकोचिये लियोशे तेरूज से उठा के अंतिम संस्कार खातिर बम और शौकी श्मशान भूमि ले जाल जाए टेम्पल रोड अमोरी में 50 बरिस के 50 ओं के श्री वेदानंद सिंह सिबलाल जे किरण नाम से जस्ती जान जा थ्रलन गुजर गल हवन उनकर माटी आज दिन के 1 बजे उनकर माटी आज दिन के 1 बजे उनकर माँ श्रीमती परमावती सिबलाल के घरे टेम्पल रोड अमोरी से उठा के अंतिम संस्कार खातिर लावों चौके श्मशान भूमि ले जाल जाए अलेरुसाय घोकायू में 68 बरिस की 68 ओं के श्री प्रकाश सिंह लक्ष्मण जे प्रकाश नाम से जस्ती जान जा थ्रलन गुजर गल हवन उनकर माटी आज दिन के 11 बजे उनकर माटी आज दिन के 11 बजे उनकर घर याली उसाय घोकायू से उठा के अंतिम संस्कार खातिर बम्बू के श्मशान भूमि ले जाल जाए सैतान रोड प्लेंदी जैसिनी फ्लैक में 48 बरिस के 54 ओं के श्री हेमंत कुमार सोमरा जे नितिन नाम से जस्ती जान जा थ्रलन गुजर गल हवन उनकर माटी आज दिन के 11 बजे उनकर माटी आज दिन के 11 बजे उनकर पत्नी श्रीमती वर्षा सोमरा के घरे सैतान रोड प्लेंदी जैसिनी फ्लैक से उठा के अंतिम संस्कार खातिर लवन चौकी श्मशान भूमि ले जाल जाए रॉयल रोड अमिचे में 97 बरिस के 97 ओं के श्रीमती दुर्मासिला दमुरू बेरा श्रीमती दुर्मासिला दमुरू बेरा पैदाशी नाम लो सौ जे दादी बाबू नाम से जस्ती जान जा थ्रलन गुजर गल हवन उनकर माटी आज दिन के 1 बजे उनकर माटी आज दिन के 1 बजे उनकर बेटा श्री अविनाश दमुरोस बेहरा के मकान रॉयल रोड अमोरी से उठा के अंतिम संस्कार खातिर अमिचे के श्मशान भूमि ले जाल जाए अविनी दोदोल एस्पेरेंस पीतों में 78 बरिस की 78 ओं के श्री सोनालाल सुमारू जे ज्ञान साधो नाम से जस्ती जान जा थ्रलन गुजर गल हवन उनकर माटी आज दिन के 11 बजे उनकर माटी आज दिन के 11 बजे उनकर बेटा श्री राजेश सत्यम रितेश सुमारू के घरे अविनी दोदोल एस्पेरेंस पीतों से उठा के अंतिम संस्कार खातिर गाँव मौत एस्पेरेंस पीतों के श्मशान भूमि ले जाल जाए पायोंके रोड प्रोविडेंस कोचे मिलिटेर में 61 बरिस के 61 ओं के श्रीमती बिमला गुप्ता

0: श्रीमती बीमला गुप्ता पिताशी नाम रामबोजू जे कविता नाम से जस्ती जान जात रहलन गुजर गए हमन उनकर माटी आज दिन के 9 बजे उनकर माटी आज फजर के 9 बजे उनकर बेटा श्री इरेश गुप्ता के घरे पायों के रोड पोविदांस कौचे मिली थे उठा के अंतिम संस्कार खातिर में जिनका उन्हें मास्क शमशान भूमि ले जा जाए शोक में डुबल इस परिवार लोग के संगे हमने की संवेदना है।
1: एट हंड्रेड एंड 19 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस।

0: 8:24 हुए हैं दोस्तों और आप सुन रहे हैं रेडियो मॉरिशस। जी हाँ, आप जुड़े हुए हैं रेडियो मॉरिशस के साथ सुबह का नजराना प्रोग्राम। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। मैं उषा कौर यहाँ पर साथ निभा रही हूँ। और इस समय आप सुनने जा रहे हैं इस हफ्ते का साप्ताहिक राशिफल। आइए जानते हैं 12 राशियों के लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। हर राशि के साथ जानेंगे शुभ अंक और शुभ रंग भी।
1: आपकी राशि

0: Radio mašīnas. Aries, मेष राशि।
1: मेष राशि वाले जातकों के लिए यह हफ्ता उत्साह और नए हौसले से भरा रहेगा। आपके अंदर किसी नए काम को शुरू करने की इच्छा बढ़ सकती है। परिवार में किसी बात को लेकर थोड़ी बहस हो सकती है, इसीलिए बात करते समय संयम रखें। जीवन साथी या किसी करीबी व्यक्ति के साथ अपने मन की बात साफ शब्दों में रहना फायदेमंद रहेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो थकान और नींद की कमी परेशान कर सकती है। लकी नंबर है 9, लकी कलर है लाल रंग।
0: टॉरस, वृषभ राशि।
1: जी हाँ, आपके लिए ये हफ्ता धीरे धीरे आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है। आपके द्वारा पहले की गई मेहनत का फल मिलना शुरू हो सकता है। काम के स्थान पर जिम्मेदारी बढ़ सकती है। परिवार में सुख और शांति का वातावरण बना रहेगा। किसी बड़े बुजुर्ग की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। पैसों के मामले में हफ्ता सामान्य रहेगा। स्वास्थ्य के लिए भोजन और दिनचर्या पर ध्यान देना जरूरी है। लकी नंबर है 6, लकी कलर है हरा रंग।
0: जेमिनी, मिथुन राशि।
1: मिथुन राशि के लिए हफ्ता बातचीत और नए विचारों से भरा रहेगा। आप अपनी बात दूसरों तक आसानी से पहुंचा पाएंगे। काम के स्थान पर किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। विद्या और पढ़ाई से जुड़े लोगों के लिए समय अच्छा है। परिवार में किसी पुरानी बात को लेकर गलतफहमी हो सकती है, इसलिए बिना पूरी बात जाने किसी निष्कर्ष पर ना पहुँचे। आमदनी ठीक रहेगी, लेकिन छोटे छोटे खर्च मिलकर बड़ा बोझ बन सकता है। और स्वास्थ्य में गर्दन, कंधे या थकान से जुड़ी परेशानी हो सकती है। लकी नंबर है 5, लकी कलर है पीला रंग।
0: कैंसर, कर्क राशि।
1: कर्क राशि वाले जातकों के लिए ये हफ्ता भावनाओं से जुड़ा रहेगा। आप परिवार के लोगों के करीब महसूस करेंगे और घर के किसी मामले में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। कामकाज में धैर्य से चलना होगा। पैसों के मामले में अचानक कोई छोटा लाभ मिल सकता है। प्रेम संबंधों में भरोसा बनाए रखना चाहिए। लकी नंबर है 2, लकी कलर है सफ़ेद रंग।
0: लेव, सिंह राशि।
1: सिंह राशि वालों के लिए ये सप्ताह आत्मविश्वास से भरा रहेगा। आपके काम के प्रशंसा हो सकती है और किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को बोझ आपके कंधों पर आ सकता है। काम के स्थान पर किसी अधिकारी या बड़े व्यक्ति से अच्छी बातचीत हो सकती है। परिवार में किसी खुशी के समाचार से माहौल अच्छा हो सकता है। पैसों के मामले में लाभ के साथ खर्च भी रहेगा। स्वास्थ्य में पेट और शरीर की गर्मी से जुड़ी परेशानी हो सकती है। पानी अधिक पिएं। लकी नंबर है 1, लकी कलर है सुनहरा।
0: वर्गो, कन्या राशि।
1: कन्या राशि वालों के लिए ये सप्ताह मेहनत और व्यवस्था का रहेगा। आप जितनी अच्छी तरह से आपके काम को संभालेंगे उतना ही अच्छा परिणाम मिलेगा। रुका हुआ कोई काम दोबारा चल पड़ सकता है और काम के स्थान पर छोटी गलती भी ध्यान खींच सकती है, इसलिए कागज़ों और ज़रूरी कामों को ध्यान देना चाहिए। परिवार में किसी अपने के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। आमदनी सामान्य से अच्छी रहेगी और स्वास्थ्य के लिए नियमित भोजन और पर्याप्त नींद जरूरी है। लकी नंबर है 5, लकी कलर है नीला रंग।
0: लिब्रा, तुला राशि।
1: तुला राशि के लिए ये सप्ताह रिश्तों और संतुलन का रहेगा।

0: आपको कई जगहों पर दो विकल्पों में से किसी एक को चुनना पड़ सकता है। कामकाज में नए लोगों से संपर्क बढ़ेगा, किसी पुराने काम का अच्छा परिणाम मिल सकता है। परिवार में किसी छोटी बात को लेकर तनाव हो सकता है, लेकिन बात जल्दी संभल जाएगी। पैसों के मामले में हफ्ता ठीक रहेगा, अचानक घर के किसी काम पर खर्च आ सकता है। स्वास्थ्य के खुद को बहुत ज्यादा थकान से बचे और समय पर आराम करें। लकी नंबर है 6, लकी कलर है गुलाबी।
1: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि।
0: ये सप्ताह अंदर से मजबूत बने का रहेगा। आप किसी पुरानी परेशानी का हल ढूंढने में सफल हो सकते हैं। काम के क्षेत्र में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का सहयोग मिल सकता है। आपकी मेहनत का असर दिखाई देगा, लेकिन तुरंत परिणाम ना मिलने पर निराश ना हो। परिवार में आपको अपनों के साथ समय बिताना अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों में भरोसा बढ़ेगा, किसी पुराने दोस्त से दोबारा बात कर सकती है। पैसों के मामले में सावधानी जरूरी है और स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक चिंता को अपने ऊपर हावी ना होने दे। लकी नंबर है 8, लकी कलर है गहरा लाल।
1: सजिटेरियस धनु राशि।
0: धनु राशि वालों के लिए ये सप्ताह नए अनुभव और नए मौकों का संकेत दे रहा है। आपके सामने कोई ऐसा मौका आ सकता है जो आपको अपनी क्षमता दिखाने का अवसर दे। पढ़ाई और ज्ञान से जुड़े लोगों के लिए समय अच्छा है। दूर की यात्रा का विचार बन सकता है। परिवार के किसी सदस्य की मदद करनी पड़ सकती है। घर में किसी शुभ काम की चर्चा हो सकती है। पैसों की स्थिति में सुधार के संकेत है, लेकिन आमदनी बढ़ने के साथ खर्च भी बढ़ सकता है। स्वास्थ्य के लिए यात्रा के दौरान खाने पीने का ध्यान रखें। लकी नंबर है 3, लकी कलर है बैगनी।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि।
0: मकर राशि वालों के लिए ये सप्ताह मेहनत और जिम्मेदारी का रहेगा। आपको अपने काम में पहले से ज्यादा समय देना पड़ सकता है। धीरे धीरे आपको अपनी मेहनत का परिणाम मिलने लगेगा। काम के स्थान पर किसी बड़े व्यक्ति की सलाह काम आ सकती है। व्यापार करने वालों को पुराने ग्राहकों से लाभ मिल सकता है। परिवार में किसी बड़े सदस्य की सेहत या जरूरत को लेकर ध्यान देना पड़ सकता है। पैसों के मामले में बचत पर ध्यान देना बेहतर होगा और स्वास्थ्य के लिए कमर और पैरों की थकान पर ध्यान दें। लंबे समय तक एक ही जगह बैठने रहने से बचें। लकी नंबर है 4, लकी कलर है सुनहरा रंग।
1: अक्वेरियस कुंभ राशि।
0: कुंभ राशि वालों के लिए ये सप्ताह नए विचारों और नए प्रयासों का रहेगा। आपके मन में कई नए विचार आ सकते हैं और उनमें से किसी एक पर काम शुरू करने का मौका मिलेगा। काम के स्थान पर आपकी सोच की प्रशंसा हो सकती है। किसी दोस्त या सहयोगी की मदद से रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात या बातचीत हो सकती है। पैसों के मामले में स्थिति सामान्य रहेगी। किसी पुरानी राशि की वापसी हो सकती है और स्वास्थ्य के लिए मानसिक शांति जरूरी है। लकी नंबर है 7, लकी कलर है आसमानी रंग।
1: पाइसेस मीन राशि।
0: और अंत में, जी हाँ, अंत में मीन राशि वालों के लिए ये सप्ताह भावनाओं से रचनात्मक सोच से भरा रहेगा। आप अपने किसी पुराने सपने को लेकर फिर से उत्साहित हो सकते हैं। पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। काम ढूंढ रहे लोगों को किसी नए अवसर की जानकारी मिल सकती है। परिवार में अपनों का सहयोग मिलेगा। पैसों के मामले में ज़रूरत के हिसाब से खर्च करें और स्वास्थ्य के लिए नींद पूरी लेना बहुत ज़रूरी है। मन को शांत रखने की कोशिश करें। लकी नंबर है 7, लकी कलर है नीला रंग।
1: ये थी

0: आपकी राशि रेडियो मशीन, रेडियो मशीन पर।
1: आठ बजकर 35 मिनट हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मॉरिशस। बस इतना याद रखें कि मेहनत के साथ, धैर्य और अपनों के साथ अच्छी बातचीत दोनों ही जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं।

0: जीवन के इस सुंदर सफर में आप लोग हम सफर बनकर साथ दे रहे हैं ऑन रेडियो मॉरिशस। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ और मैं उषा कौर। यहाँ पर बस देखा जाए तो मौसम खराब ही है चारों ओर और आप लोग काम के लिए निकल रहे हैं तो हम आपको यही कहेंगे कि आप रास्ते पर है इस समय और ड्राइव कर रहे हैं सो प्लीज़ ड्राइव केयरफुली। और मौसम कभी धूप तो कभी छांव है, कभी बारिश है, कभी धूप है, तो बस आप सावधानी रखें और आप अपना ख्याल रखें हमेशा और ये सप्ताह आपके लिए शुभ हो, हम तो बस यही कामना करते हैं दोस्तों। और चलिए यहाँ पर हम सुनेंगे हमारी धरोहर कार्यक्रम किरण जानकी की प्रस्तुति में।
1: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।
3: नमस्ते, हमारी धरोहर में आपके स्वागत बा। आज हमने 21 सितंबर के जोन विश्व शांति दिवस मनावल जाला ओकर पर बात करब जा। शांति के मतलब की नहीं जानेला। शांति मतलब कि एक पल खातिर नफरत छोड़ के दिल के जोड़े के, कहे कि शांति के शुरुआत हमनी के मन से होवेला। 21 सितंबर के दिन ई जोन दिन मनावल जाला एकर स्थापना यूनेस्को कर ले बा और एकर पहला लक्ष्य है ई दुनिया से नफरत के हटा के शांति के स्थापित करेगी। और एकर स्थापना दूसरा विश्व युद्ध के बाद यूनेस्को कर ले रहा ई मकसद से कि शांति हमनी के धरोहर ही नहीं है बल्कि हमनी के एगो प्रवृत्ति है और हमनी के चाही एक पहचाने के। शांति हमनी सब कोई के जन्म सिद्ध अधिकार है, सब कोई के शांति चाहेला। यूनेस्को के एगो नारा है कि जब की लड़ाई इंसान के मन से शुरू होवे

तो चाहे शांति भी इंसान के मन में ही स्थापित करेगी। आज काल दिखत है जा कि एगो ऐसा दुनिया में जियत है जा जहाँ पर सब कोई बोले रंजा कि उ लोग के जीवन में तनाव बा, उन लोग के बहुत परेशानी बा, और सब कोई बोलेला कि उ लोग शांति से जिए चाहत हवन जा, एक पल के शांति खातिर सब कोई तरसता, सब कोई हर बात पर बोले रंजा, एक पल खातिर हमके, एक मिनट खातिर हमके कम से कम शांति से सांस लेवे द। संयुक्त राष्ट्र के जोन महासचिव हवन उ सब देश से मांग कर ले हवन कि उ लोग अपन जोन आपसी लड़ाई बा ओके रोक दियन जा, और ये बात पर ध्यान दियन जा कि सबसे पहला जोन दुश्मन हमने के बा उ है जोन बड़ा बड़ा समस्या उत्पन्न होता, जैसे कि मौसम परिवर्तन, जैसे कि मौसम परिवर्तन से जुड़ल जोन असर हमने पर पड़ा था, और साथ में गरीबी बा, भूखमरी बा, औरत और पुरुष के बीच जोन फर्क बा, जोन असमानता बा, कहूँ पर ढेर कोई बहुत ज़्यादा धनवान हवन जा तो कहूँ पर कोई के एक बखत के खाना भी नहीं नसीब होता, तो ये सब के सामना हमने के चाहे मिल के करेंगे, और जब सब कोई आपस में एक दूसरे की मदद करी और जोन समस्या वास्तविक समस्या हमने के सामने बा ओकर से निपटे खातिर सब कोई संगे मिलके समाधान ढूंढी, तब जाके ये देश में, ये विश्व में शांति सच में स्थापित हुई। हमने देख लीजा कि कैसे अलग अलग समस्या जब पैदा होवेला तो सबसे आगे जब मन परेशान हो जाला तो ऐसन में शांति बहुत कठिन हो जाला महसूस करेंगे। कोविड 19 आ रहा, सब कोई सोशल डिस्टेंसिंग के कठिन घड़ी से गुजर लीजा, और फिर इधर अभी हाल ही में नेपाल के जो प्राकृतिक प्रकोप गुजरल, मन कितना अशांत हो गल, ये दुनिया कितना अशांति के सामना कर लग, ये सब जब घड़ी देखिला जा, ये सब जो दुर्घटना देखिला जा, तब समझ में आवेला कि हमने के जो छोटा छोटा मतभेद बा, जो बिना भेद के नफरत के भावना, ईर्ष्या के भावना, स्वार्थ के भावना बा, ओके चाहे त्याग के एगो ऐसन भावना अपनावे के जहाँ पर सबके भलाई ओकर में शामिल रही। जब सबके भलाई के बारे में सोचबा तो एकर से आपके मन के सबसे पहला शांति मिली, मतलब कि शांति कहूँ बाहर नहीं मिली, कोनो रिजोर्ट में, कोनो विशेष देश में नहीं है, कोनो विशेष यात्रा से नहीं मिलेला, शांति अपन मानसिकता बदलला से होवेला। शांति हमने सब कोई में बा, हमने के चाहे ओकर एहसास करेंगे, और जो दुर्गुण अवगुण हमने के मन मस्तिष्क में बैठ जाला चाहे ओके सबसे आगे दूर करेंगे। आप सब कोई के शांति दिवस के बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद, नमस्ते।

चलिए ये भोजपुरी गीत सुनते हैं रंभा राम तोहर जी की आवाज़ में, और यही गीत के साथ हम भरेंगे 8-9 बजे के संक्षिप्त समाचारों के बाद की ओर, और भोजपुरी हम भरेंगे 9 बजे के संक्षिप्त समाचारों की ओर, और समाचारों के बाद भूलिएगा नहीं आप सुन पाएंगे आज की चर्चा कार्यक्रम नीतूषा के साथ। और अभी के लिए मैं उषा कौर यहाँ पर आप लोगों से विदा लेती हूँ। हंसते मुस्कुराते रहिए, मिलेंगे बहुत जल्द। अब दीजिए इजाज़त, नमस्कार, शुभ दिन।

0: सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे अदिति, नमस्कार आपको।
1: नमस्कार नीतुषा, श्रोताओं को भी नमस्कार। त्रियोले में शुक्रवार को हुई सरस्वती मुचा की हत्या के मामले में एक नई बात सामने आई है। संदिग्ध राधाकृष्णा मुनिस्वामी ने कल रात अपना अपराध स्वीकार किया। उसे नॉर्दर्न डिविजनल क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के एक ऑपरेशन के दौरान पिचराफ्रे से उसके घर से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के अनुसार 52 साल के इस व्यक्ति ने पैसों के लेन देन को लेकर हुए झगड़े के बाद 60 वर्षीय इस महिला का गला घोंटकर उसकी हत्या करने की बात स्वीकारी है। इस महिला के साथ ब्रोकर का काम करने वाले संदिग्ध के अनुसार उसने सोच समझ कर पहले से ही इस हत्या की योजना बनाई थी। सरस्वती मुच्चा का शव उसके खेत में पाया गया था। इस मामले की जांच एमसीआरटी को सौंपा गया है। संदिग्ध को आज अदालत में पेश किया जाएगा। विदेश मंत्री रितेश राम फल शनिवार को न्यूयॉर्क पहुंचे हैं, जहां वे कल शुरू हो रहे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में शामिल होंगे। वहां पहुंचते ही उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के समक्ष मॉरिशस के स्थायी प्रतिनिधि मिलान मितोबान समेत कई अधिकारियों के साथ एक कार्य सत्र में भाग लिया। महासभा के आधिकारिक उद्घाटन से पहले रितेश रामफल ने कल रविवार को कई बैठकों में हिस्सा लिया। इनमें कॉमनवेल्थ मिनिस्ट्रियल एक्शन ग्रुप और अलायंस ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट्स की बैठकें शामिल थी। मुख्य रूप से आपसी हित के कई मुद्दों पर चर्चा हुई। मॉरिशस की मछलियों के लिए यूरोपीय मंडी में जगह बनाना मुश्किल होता जा रहा है। ट्यूना, स्टॉकफिश, दोहद जैसी कई मछलियों को यूके सहित कई यूरोपीय देशों में स्वीकार नहीं किया जा रहा। स्थिति के इस सेक्टर में चिंता बढ़ रही है और मॉरिशस को निर्यात के लिए खासकर एशिया में नई मंडियां तलाशनी पड़ रही हैं। इसके पीछे मुख्य रूप से एक्वाकल्चर, खासकर मेडिटेरेनियन ट्यूना फार्मिंग से हो रहे कंपटीशन का कारण बताया जाता है। मछुआरों के श्रमिक संघ के प्रतिनिधि हृदय सांफल का मानना है कि यूरोपीय मंडियों में मॉरिशन मछलियों के प्रवेश के लिए सरकार को ज़रूरी कदम उठाने की आवश्यकता है, खासकर मौजूदा समझौतों के अंतर्गत। जबकि दूसरी तरफ जूनियर मिनिस्टर फाबिस दाविद अपनी तरफ से आश्वासन देते हैं कि स्थिति नियंत्रण में है। उनके अनुसार मौजूदा मछली पालन समझौतों के अंतर्गत मॉरिशस यूरोपीय संघ और यूके के लिए ट्यूना मछली का एक बड़ा निर्यातक बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में रूस में युद्ध के दौरान हो रहे प्रथम संसदीय चुनावों के तीसरे और आखिरी दिन मॉस्को पर यूक्रेन की तरफ से किए गए ड्रोन हमलों की एक बड़ी लहर के जवाब में रूस ने कीव पर अपने हमले तेज करने का दावा किया है। रूसी राजधानी पर हुए इन ड्रोन हमलों को अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। 3 लोगों के मारे जाने की खबर है और एक तेल रिफाइनरी का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। ये थी अब तक की खबरें। आपका साथ रहा, धन्यवाद, नमस्कार।
2: NBC रेडियो, हर पल आपके साथ।

0: बहुत बहुत धन्यवाद हमनी के आज के चर्चा कार्यक्रम संगे जुड़ल हुआ सब कोई के नमस्ते प्रणाम। आज लंदी के दिन है तो चला आज हो हमनी तनी सुन बात करब जा अपन खेती बाड़ी के बारे में, अपन फल सब्जी के बारे में। हमनी एगो ऐसन देश में रही लासा जकरा हमनी ट्रॉपिकल आइलैंड बोली लासा ना, और हाइजा परी इतना फल हमनी के मिले ला खाए के। अभी सीजनल फ्रूट्स जन बाते हमनी देखा तो ऐसा जन लीची लेक्सी जन बाते ऊ अभी फरल बाते, आम तो मिला था जौबालाक बाते और ढेर चीज बा, पर दुर्भाग्यवश हमनी के जितना फल मिलेला सकेला ओकर से जस्ती फेकल नहीं जाला बल्कि ऊ पक जाला जैसे हमनी बोलिल जाला। काहे कि जो कीड़ा बाते जो बैक्टेरी जो नैसक बाते और एगो एगो एक ऐसा शब्द मुश डिफ्री एकर बारे में सकेला सुनले हो बा जानेला जो आताके करेला हमनी के जितना फल उस सब बातें। तो आज ये जो मुश डिफ्री वा बातें जो फ्रूट फ्लाई है एकर मैनेजमेंट कैसे करल जाला एकर पर जस्ती हमनी बतियाब जा। फिरों से हमनी के मेहमान है वह फागे दने से सीनियर एक्सटेंशन ऑफिसर श्रीमान संजय शंभू जी, तो चला इनका स्वागत करी ला जा। भाई शंभू नमस्ते।
1: नमस्ते।
0: तो चला आज हमनी बात करब जा मुश डिफ्री कई जना

0: कंप्लेन करी लंजा बोली लंजा देखा भाई हमार लगे है फलबा हाउ फलबा पर हमरा खाए के कुछ नहीं मिलेला ऊ पिके हो जाला एगो मुझ डिफ्री तो है जो मुझ डिफ्री बाबा ऊ कौन ची है और कितना नाजिक बा
1: बहुत नाशक है कौन ची है देखा अनेक तेसे जो पिलवा बाते ऐसेक बाते ता ये भी जो ऐसे को नाम बोला मुश दे फ्री यानी कि को मुश मक्खी है फ्री यानी कि फल के अटैक करेला ता ये मुश दे फ्री कुंच करेला वो जब फल ओके दिखेला कैसे तू ही बोला जंबालाक बा आम बा अमरूद बा गोयाब जैसे बोला सा अनेक प्रकार के पापाय सब अनेक प्रकार के फल बा ता वो जाके जो फीमेल मुश दे फ्री बा वो जाके वो फल में अपन अंडा पारेला तो जब अंडा पारेला तो फल में तो थोड़ा कुछ नहीं लौकी क्योंकि जो अंडा पारे समय जो है छेद करेला इतना नहीं छोटा रहेला
0: जी
1: फिन रहेला तो नहीं बुझाला बाद में थोड़ा बुझाला एगो स्पॉट कहते हैं सूखा गल बाते लेकिन कुछ होला अंदर में जो अंडा बाते अब बाद में जाके इकलू होला जब अंडा फूटेला तो ओकर में से एगो लव निकलेला अब जब लव निकलेला तब ओके तब जिए के बाद ना
0: जी
1: तब जब जब अंडा में से निकलल तब फल के अंदर
0: खाईते जला जोंची
1: बाहा तब खाईते जला अब कुन चुवेला जब खाईते जला तब जोन हो बितरे में जोन खाईले बा अब बुता गन्ना ओके में ता गन्ना कुछ नहीं बाते ना खाली हो गल बाते तब जब खाली हो गल बा तब एक बगल तक खाली हो गल बा दूसर ओर जब खाईले बा तब अंदर में गन्ना एगो एगो घाव गए हो गल बा तो सरे लगेला तोहरा कब लौकेला जब मुझ दे फुई आई सकेला आई अटाके कले फुई के तू देखेला जब फल तोड़ला तो देखा तो सरल बा या अंदर में नरम होगल बा या ओकर रंग बदल ले ले बा तब तोरा बुझाला अंदर हो बाते तब आजे आजे काट के देख बा और जहाँ पर तोरा लौकता नरम होगल बा तोरा लौकता सरल था तो एगो आसान तरीका बा जाने खातिर मुझ दे फुई के प्रभाव से होल बा कि सकेला दूसरा चीज जब बीमारी चल हुई तो कुछ कर बा हो फल के लेके जहाँ पर ही तो रहा हो लोकल बा हो सैम्पटम बा तक के काट दिया जब काट के जब खोल बा ताजे तो रहा लो कि भीतरे में एगो छोटा सुन लव जैसे बोला सा कन्ना कर में गंदा चला था है तो जान जब आई तब तब मुझ देखी कि ओकर अंडा पारल से वहाँ पर एकलू हो बा तब प्रभाव करता अभी को दूसरा प्रश्न पूछता हम बनी बहुत नाशक है कितना डोज रहे जितना मुझ जितना ज़रा तक जितना फल बाते हमने जो कंसुमे कैला सा कैसे जंबालाक बा कैसे आम बाते कैसे पपाय बाते गुया बाते सब चीज़ के अटाके करेला मुझ दे फुई
0: खाली फल हुए के अटाके करेला के दूसर जो सब्जी बाते
1: है मुझ दे फुई जाके बोला सा वो फल के अटाके करेला लेकिन कैसे बोला सा टमाटर
0: हाँ हाँ वो मित्र होला
1: हाँ तो टमाटर गनला सब्जी में गना ला लेकिन उता ऊपर में को फल के निकला था ना तो उकरो अटाके कर देला कैसे बोला जा कुकुम बोला सा कोहरा कदुआ तो इसब सब्जी है लेकिन फल में गना ला क्योंकि एको फ्रूट है तो वो जाके अटाके कर देला
0: तो है जो मुझ दे फ्रूट बा वो कहाँ से आ बा ये है जे के हाँ मोरिस के लोकली है कि बाहर से आना तरने कर बाते वो आ बा कैसे
1: जितना मुझ दे फुई आज हमने जानी ला जाए यहाँ पर मॉरिशस में बा वो सब बाहर से आल बातें
0: जी
1: तो कोनो बहुत आगे से बातें कोनो एगो सकेला दस पंद्रह बरी से आल हुई तो सब जितना बा आनल बातें अब आनल कैसे बातें तो हम नहीं आने से ना
0: हाँ।
1: लेकिन कुछ होला जब आयात होला या पोताशों होला तो गनला जन जन फल और जन सब्जी पोते होता तो शायद जब आवता तो हो कैसे बोलने जब शुरू में जब अंडा पड़ली बात नहीं लौकेला नहीं बुझाला तो उस अकेला जो हो जो फल अनाल रहल तो ओकर में हो अंडा ओकर में रहल
0: जी।
1: अब जब यहाँ पर मॉरिशस में आल बा तब अंडा तो भीतरे में तो आई लव एक लो गल बा अंडा एक लो गल बा लव ओकर में खाता तो अब लव से कुछ होला लव जब खाली वेला खूब कहना मच्छू हो जला तो वो एगो मक्खी में वो डेवलप हो जला अब गन्ना उतना तो टून सब है फल सब तो आते

0: अब गन में खाली चार गो अंडा हो आज आल हो दूगो फीमेल हो दूगो माल हो परी तो गन जब लोग निकल जन सर जब ख्वाजी हो सवन गो अंडा पड़ियन सर तब देखा एगो से सौ गो सौ गो से 10,000 हो जाए
1: मतलब एक ही हला वो लगभग 100 को अंडा पारेला
0: हम ऐसे उदाहरण के उदाहरण रूप में बोली हां लेकिन वो लोग बहुत अंडा पारेलन सब बहुत अंडा पारेलन इधर बहुत मक्खी बा सब ढेर अंडा पारेलन सब उसकेला अपन अपन अपन किसी बोला अपन लाइफ साइकिल में अनेक बार जाके अंडा पारे तो अनेक बार जाके छेद करी अंडा पारी तो अनेक बार
1: तो भाई शंभू हवी जैसे बोले हवा जो नमूज डिफ्रिया बातें वो जिन बातें अंडा पारे ला में एगो लव होला तो हबी हबिया बोलत रहला खाली मुज डिफ्रुवे जिन बातें फल के जैसे हमने देखी ला सा ऊपर से पीके होला अंडा से लव बातें कि दूसर बीमारी और सकेला हो
0: दूसरा चीज भी बात अनेक अनेक प्रकार के बीमारी है कोनो बीमारी दाग की तरह लौकेला एगो एगो एगो एगो निमन एगो उदाहरण दे देला कैसे केला बातें
1: जी
0: तो दिखबा जन केला बाते जन पकता तो देखब बाहर से ओकर में वो काला रंग
1: करिया
0: पहला तो चिपुआ चिपुआ होला तब बहुत करिया जला तो वो एक बीमारी से होला ओके बोला बनाना फ्रेकल डिजीज तो ऐसे ही अनेक प्रकार के बीमारी बातें कैसे एंट्राक्नोज बातें वगैरह वगैरह लगाल बातें तो वो सब होला
1: जी।
0: और पिलुआ भी अनेक प्रकार के पिलुआ है लेकिन मुझ डेफुए की हे खासियत है वो अपन अंडा जाके पारी अंडा इकलो हो लव जुनबा ओकर अंदर में खाए तब फल सरे लगी और जैसे तोरा बोली जितना अंडा पारे लंचा जितना कुछ जाके जितना हला जाके
1: पड़ियंचा
0: हाँ तो बहुत दिगा करेला एगो एगो एगो सब्जी के खेती लेपचा एगो सब्जी के खेती में आज एगो आज एगो निमन एगो योजना नहीं रही मुजदफी के खिलाफ जैसा कि वो किसान 40% तक ओकर उत्पादन खो दे अब आज फल के लिए फल यानी कि जैसे आम वगैरह बातें तो ओकरो में तो बहुत ओकर में सकी
1: है जो मुजदफी बात जस्ती कौन फल के आता के करेला हाँ मोरिस के कॉन्टेक्स्ट में हम बात बोले थे
0: हाँ तो अब मुजदफी अनेक प्रकार के
1: अच्छा कौन कौन अनेक प्रकार माने कि
0: अनेक प्रकार के
1: जन बातें मोरिस में कितना
0: हम तोरा जन सबसे गन्ना जन जैसे नाशक हम मोरिशस में और तोरा गन्ना बुलीला एक गुबा वो जन खासकर जन फ्रूट ट्रीज बा ओकर फल के अफेक्ट करेला है ओके बोला सब बात हो सेगा 240 है जन मुजदफी बा वो देजा आगे मोरिशस में रहल
1: अच्छा
0: बहुत बहुत साल आगे रहल लेकिन उस समय कृषि मंत्रालय के जो योजना द्वारा जो जिफो कलन जा ओके मॉरिशस में से सकल सकलन सा ओके कैसे बोला सा इराडिकेट कर दे ओके निकाल ओके सब के मुआ दे
1: अच्छा
0: तो हमने लगे तब हम नहीं रहल लेकिन एगो लगभग लगभग 10 साल लगभग होल वो जो मक्खी बातें वो फिर से आल
1: अच्छा।
0: अब जब फिर से जब आल तब से तब रिकॉर्ड बढ़ गल हिये पड़े अपन घर बना ले बा तो सब चीज़ के नाश करता तो ये जो मक्खी बा जैसे बनी जरा तक जो फ्रूट ट्रीज के फल बा कहे आम के हो जैसे बनी सांभाला के हो कोई आप के हो पपाय के हो ये सब के अताके करेला
1: अच्छा हाजा परी तोहर से पूछती खाली फलवे के वो अताके करेला के गौछवे के पत्ता के
0: नहीं मुजदफी खाली फल के अटाके ला पत्ता के नहीं अच्छा। सिर्फ फल के लेकिन हाई जोन मक्खी बा 240 ये ज्यादातर गन्ना फ्रूट ट्रीज के फल के अटाके कला लेकिन आज गन्नों के खाए के नहीं मिला था खाए के नहीं सत्ता जो तक खाना नहीं माफ कीजिएगा वो गन्ना के अब फ्रूट ट्रीज के फल नहीं मिला था अंदर अंडा पारे के तब वो सकी जाके सब्जी के फल में भी सकी जाके में पारे
1: अच्छा
0: हाँ जाके नहीं मिली वहाँ पर
1: अच्छा।
0: लेकिन मॉरिशस में जैसे जाने ला जा हमने के सोच में जब सोची ला सा 240 है जो मक्खी बातें कुंज का टाकेला था आम आम के सोची ला सांबला के सोची ला अमरूद के सोची ला सा लेकिन हमने किसान नहीं बुलाए के कि हमने के जंगल में एगो ऐसा एगो फल बा जो मॉरिशस के चारों ओर में फैलल बा वह गोयाब दिशीन
1: जी
0: तो यानी कि जब एगो योजना सोचब सर

0: जैसी जगह कितना नाशक है तने के चला ई भी सोचे कि ओकर कितना घर बाटे
1: अच्छा
0: कहाँ कहाँ अंडा पा रहता वहाँ वहाँ अर्थात कुछ बाकी वहाँ वहाँ पिपले होता ना तो जितना जंगल बाते जहाँ जहाँ है कोई आबेसिन बा तो वहाँ से कि अंडा पा रही तब वही देखी ला चाह कबू कबू गया देशिन चुन चुन के लेके तब देखा सा ये पिके वाल बाकी नहीं तब खाप सा तो हो या
1: ये गो जैसे हमने बोलिया रहा था मिनिशियो है बापाओ इतना जैसे देखा तो हमने जब देखा था ऐसा तब पता चली ना
0: हाँ
1: ता जो साइंटिस्ट सब रिसर्चर्स आप लोग हवा जाता कैसे करीला कैसे और ओकरा जा माने कि
0: हाँ तब पहचान करे के ऐसे साधारण रूप से जैसे देखा सा तब अंडा से तब पहचान नहीं हुई कोनो कोनो ऐसा मुझ देखी बात जब ओकर लव देखा सा तब जान जाब सा
1: जी
0: ओकर ओकर ओकर साइज अनुसार ओकर ओकर रंग अनुसार वगैरह जान जाब सा लेकिन ठीक से ओके किसी वजह से डॉच फिर करे के चला ओकर जो एडल्ट फ्लाई बा ओके ओकर से चला को पारिजों करे के तब ओकर जैसे ओकर शरीर बा ओकर पंख जन बाते
1: एगो फ्लाई है एगो लाई जैसे हमने बोली लाचा ये कितना छोटा बात है कितना बड़ा लिखोला
0: नहीं ये छोटा ये छोटा ही बात
1: छोटा माने कि कितना एगो लाई जो नॉर्मल बात है
0: एगो मक्खी जो देखेला घर में और उसने उतनी बड़ा मक्खी की तरह हां उतनी बड़ा जैसे मक्खी घर में थोड़ा लोकेला हां लेकिन उतनी ही बड़ा रहेला और हां पूछा हां कौन कौन ऐसे आई आई मुझ दफी बात है एगो तब बोलनी है 240 बात है तब एक दूसरा मक्खी बा ou spécifiquement ou jen jen hamni ke jen phal ba jese la lalian hein cucurbits bits bu ya sa ke se ba kokomba kohora ba kadwa ba pipanga ba
1: lati jen chij ba
0: je ta lati ba te aur ek an mein judal du go sabzi ba te ou ha courgette zucchini
1: ji
0: aur patisson yani ke squash ta hai sabe go categoria cucurbite ego famille ha ki habite taisa koko bit loke ego dusar makhi ba ke bala melon fly
1: ji
0: ta melon fly khas kar is specific ha in in jai am ke sakya atake kare une jai sambala ke atake kare I ake kewal ha kewal sirf jitna ai koko bit ke family ba okar me jake okar female jake anda pari hai aur dusar chiz ke nahi समय के साथ हमने देखा था जा कि मात्रा जन जन आज कंपैरिजन कर सा बात हो सका 240 और है मेलन फ्लाई के तो एक खेत में सकेला अब ज्यादा 240 होते हुए कि मेलन फ्लाई होते हुए
1: अच्छा कौन कारण
0: तो 240 के जैसे खाई की मिलता जैसे पिपले होता ना तो गन्ना तो किसी बोला सा लोकाते अभी पोपेटे हाँ तो वो आके इतना ले गन्ना पिपले होता उसका मात्रा इतना ले बढ़ा था तो घटे कहते हो कि वो इलाक ओके घसका हुआ था ओके टेक्निकल टर्म में बोला सा डिस्प्लेसमेंट
1: जी
0: वो स्पीसीज डिस्प्लेसमेंट तो हाई भी हमने आई जैसे फील्ड में बा फील्ड में हमने हाई सब देखी ला जा हुआ अब फिर और दूसरा कल पे मुझे फ्री बातें लेकिन ये लोग गन्ना कमती मात्रा में गन्ना लोकेला लेकिन हवन सा किसी बजाय 240 सब किस अकेला जैसे डिस्प्लेस कर दे लेवा तो एक में बा एक मेडिटेरेनियन फ्रूट फ्लाई
1: अच्छा
0: तो ये भी फल के अता के कहला अमरूद आम वगैरह वगैरह तो 240 अकेले ने बाते तो और एक दूसर बातें कैसे को बोला था टोमाटो फ्रूट फ्लाई नहीं उसे होता सेराथाइटिस तो वो भी बा वो केवल किसी को नाम में बोलनी टोमाटो फ्रूट फ्लाई तो खाली जाके टमाटर के जाके ओकर में जाके अंडा पाड़ेला अब यहाँ पर ही हमने के कुछ चला समझे कि क्योंकि गल बार एगो कार्यक्रम के अनुसार टूटा सुलुता पर टूटा सुलुता एगो फ्रूट फ्लाई नहीं है
1: अच्छा
0: ठीक टूटा सुलुता एगो मफ जैसे बोला से कोई लाई टूटा सुलुता वो रात में निकलेला
1: और इतना छोटा बा
0: हाँ वो भी तो छोटा ही रहा तो रात में निकलेला रात में वो जाके और ओकर दिगा होला इसी बार खासकर टमाटर पर ओकर फल ओकर पत्ता ओकर जो स्टेम बा ओकर पर होला हियाँ हमने जो बताया ऐसा फ्रूट फ्लाई मुश दे फुई ये दिन में निकलेला ये दिन में तो रहा लौकी हो फ्रूट फ्लाई आके कैसे टमाटर के देख बता सकेला टमाटर पर आके बैठल हुई तो जाने के वो अंडा पा रहा था या थोड़ा आम पर लौकी आज घर पे हुआ तो लगे आज आम के पेड़ बा तो कभी कभार आके आम के गन्ना उपजावे का या कब खाइबा तो दिखल करिया तो चला लो कि शायद एगो मक्खी आके कब बैठल बाते थोड़ा गन्ला permettra de faire une séquelle à

0: Bila Jun Jun Hui. Bila pilaran okay. Jitra Tan Jun Hui. Ta dekhiya sakila loki
1: mari ki mausam chahe wo thanda ke rahi ghama rahi lete rahi live re kuchu rahi hai jan fruit fly wa bate wo atake hue the jab le phal bate wo karte rahi
0: ha karte rahi lekin sardi ke mausam mein okar prabhav kam rahela
1: kyunki
0: sardi ke mausam mein jan asik ba sab en general itna hali ganla ai develop ne hulansa
1: अच्छा
0: तो उकातीन का लाइफ साइकिल लंबा रहेला डेवलपी हाली नहीं उलंस तो कमटी अंदा पड़ जन तो सर्दी के मौसम में आए फ्रूट फ्लाई उतना नहीं रहेला गर्मी के मौसम में तब एक अलग बात बा
1: फजत आए हुला बाती
0: हाँ तो फिर और एक चीज चला सोचे के कि ज़्यादा तक हमने के जो जो फल की बात करते हैं जैसे आम कैसे अभी कोई आदिशीन वगैरह बोलते हैं सब तो ज़्यादा तक कब तरह मिलेगा गर्मी के मौसम में मिला था उस समय जब उस समय मक्खी के ओके ओके मिला था फल अंडा पारे के यानी कि हमने कि चला दूसरे तरह की सोचे के आज ओके अपॉर्चुनिटी मिला था अंडा पारे के यानी कि अपॉर्चुनिटी मिला था ओकर पॉपुलेशन के डुबले करे के ट्रिपले करे के ऐसे
1: अच्छा जब हाई जो फ्रूट फ्लाई की बात करे थोबा भाई शंभू तो ये कितना बखत ले मानी कि ओकर अंडा पारे के जब लेके वो तैयार एगो लव बना ओकर साइकिल
0: दो तीन समय में हो जाला
1: हो जाला है
0: बहुत बहुत हाली होला हो जाला तो पेगाचे पर दे पाना
1: जी
0: सर्दी के मौसम में है सा तो लंबा रही गर्मी के मौसम में तो छोटा रही तो सकी एक महीना वो लग जाए
1: अच्छा
0: मना कौन दिशो कितना तो पेगाचे बात है
1: अच्छा ला हमने आगे बढ़ हम जाइए आज के चर्चा कार्यक्रम बहुत बहुत धन्यवाद हमने संगे जुड़ल हुआ कुछ पूछे के बातें हमने के लाइन खुलल बात का 102-84-85-402-808-85 चला एगो छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक के बाद वापस आए राजा

0: आज की चर्चा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, आज की चर्चा कार्यक्रम संगे जुड़ल हुआ। आज हमने बताया था जा फ्रूट फ्लाई मैनेजमेंट जो मुश डे फ्री बातें हमने देखा था, ऐसा कितना टहलका मचावत है वन सा। हबी भाई शंभू बोलन लगभग 200-250 सकेला ओकर से जस्ती कुछ हो पूछे के बाद त्राका नहीं करे हमने के फोन करिए 402-84-02-8085। हम सुन ली ओकर से जस्ती भाई शंभू।
2: हाँ, तो जैसे बनी सा अनेक प्रकार के मक्खियाँ ना, जैसे बनी हमने सावन को बनी तो हम लगभग ऐसे बोली। तो आज आप डिटेल में जैसे बोला डिटाइल में जाप सा, तो कैसे जब बोली मेलन फ्लाई वो हमने के जो लत्ती बा और पाचिशों और जुकीनी के ओके अटाके करेला ओके ओके में अंडा पा देला
1: जी।
2: तो वो कहना सा कि 200-300 गो अंडा पारते ओकर मक्खी एक और अपन लाइफ ओकर लाइफ ओकर ओकर जितना ओकर लाइफ साइकिल में कि 200-300 गो अंडा पार दे। अब आज देखा सर 240 के तो वो हजारन गो देखा था।
1: बाप रे।
2: हाँ, अब हम थोड़ा नहीं बोल रहे जैसे अकेला अनेक कुत अंडा पारे।
1: हाँ, हाँ, एगो फलवा में वो एक हला कितना अंडा पारे ला?
2: ता एक कुत में सकी वो
1: डिपेंड करेला
2: फिक्स नहीं। हाँ, सकी 20 गो पारे, 15 गो पारे, 30 गो पारे, 10 गो पारे। तब जैसे बोलनी थोड़ा गन्ना गन्ना मेलन फ्लाई बा आज गन्ना के 200 अंडा पारी
1: जी।
2: तो हम गन्ना अब एक कुट में 20 गो अंडा पारी एक कुट में, तो एक अर्थात कुंच हो 10 कुट और जाके अंडा पारी। अब आज 5-5 गो 7-7 गो पारा था तो एक अर्थात हो कि अनेक और ज़्यादा कुछ ज़्यादा ज़्यादा और ज़्यादा गन्ना फल के ओकर ओकर में जाके अंडा पारी
1: जी।
2: ऐसे ही सकबा एगो कैलकुलेट करे आप कैसे एगो मक्खी सके एक दिन में अनेक बार अनेक फल के में जाके अंडा पारे ये भी।
1: अच्छा, एगो प्रश्न आल हमारे दिमाग में धरल। हाँ, हाइजा परी हमने के दीपशिका बोलत हवन एगो जना हवन उनका से हमने बताए ला जा। हेलो
3: हेलो
1: नमस्ते जी।
3: नमस्ते दीदी, vous connaissez mon plante Maya Kobi, namaste.
2: Namaste.
3: Bonne plante en fossé calbas, il y a beaucoup de fleurs là-dedans. Mais seulement mon papa trouve calbasse aussi. Vous avez mon père rose, les deux.
2: Mais tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as
3: dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit
2: que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que
1: tu as dit que tu as
2: dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as
1: dit que tu as dit que tu as dit. हाँ,
2: सके लाइक वो फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस से खाली ज़्यादा गन्ना फूल जनवा वो माल हुए तो ये चाहना पहला देखे के क्योंकि आज मुझ दे फ्री हुए तो वो जनवा वो उतर फल पर आए ना। अब फल कौन फूल में होला वो फीमेल में होला।
1: हाँ, हाँ?
2: तो अच्छा ही चाहना देखे के अब चाहना देखे के कि पंगान आए अच्छा देखे के कि सकेला जो फूल बा फीमेल होते हुए लेकिन बहुत शुरुआत में ही मुजदफी के भोंग देवता।
1: अच्छा,
2: गिर जाता
1: तो सकेला मुजदफी वो नहीं हो दूसरा प्रॉब्लम था वो।
2: हाँ,
1: कौन सी चाहला कर

0: बहन के
1: जाने के कुंज हो माना तो हम चाहे लेके हमने के जाए के दफ्तर हाँ, में हाँ, जाके हाँ, हमने के क्रॉप एक्सटेंशन के वो दफ्तर में जाके तो वहाँ पर ही आए जो ऑफिसर बाबा से बात करके एक और चीज़ यहाँ पर ही आए बहन जी जो बोल रहा एक पर एक छोटा सुन चीज़ और बोल दिला हमने जब बातचीत करते हैं जाए तो हमने बताया मुश्किल

0: फूल बाजन फीमेल बा ओकर में हाउ फुई बा फो में होता दिखा भी ठीक से फल बनल नहीं बा तब भी जाके सकी हाय जन मुझदे फुई बा जन मुझदे फुई हो जाके और फल जो अब डेवलप होता फूल में से ओके भोंक के ओके
1: हाँ ये प्रश्न तो हर से पूछती लगभग हाइए कि एगो मुश्ड फिर धरला उ जाके अंडा पार डेलक एगो फल में अब उ दूसर फल पर जाके उ अंडा नहीं पड़लक पर ओकरा छुआ दिलक तो उ आता के करी मतलब जाके ओकर पर बैठ गल बा सुतल बा ते कुछ को काजिन कुछ करलक
0: सिर्फ जब भोंक के अंडा पड़लक तब अब देखा हमने तब जैसे बात कर ला कैसे आम बात गाते हुए ला ऐसे कहते हैं ना तो अम्मा तो लौकी ला जम्बालाक लौकी ला गुया जैसे चुन के खाप सा लेकिन जो है सब्जी के फल जो बा कैसे लट्टी के बा कदुआ कैसे बुलंजा कदुआ के जब फूल में जब फरी धरा था जब फर धरे के शुरू कर ले बा तब भी आके भोंक के अंडा पार दे तो क्योंकि अब फल तो इतना लेकिन नाजुक बा अभी तो डेवलप ही नहीं होगा आके ओकर में बुने हुए कहना आई अंडा पार दे ले बा और लव डेवलप हो गला तो ऊ जन फूल फल जन देव अब बा वहाँ पर ऊ गिर जाला नतरा नहीं मिली ऊ
1: तब पोली नाशो हो जाने होला
0: या तो लव की सरगल बा
1: हाँ तब पोली नाशो होला मधुमक्खी तो जन क्वाजमा वो सब होला कैसे होला
0: आया होई भूख का दिता तो भूखा गल बना होने मुझे फुई से तो ऊ तो गिर जाए
1: अच्छा तो इतना हमने बताया था ऐजा जो मुझ डिफरी कितना अटाके करेला हजारन वो अंडा पारा था दो सौ से जस्ती वो सब तो इमें इतना पेसिसिट के हमने बात करी ला जा हमने जो जो लास्ट रेजोल्यूशन जो बातें वो पेसिसिट बोला जाला तो ये काम नहीं करेला
0: नहीं ये वो वहम और एक जो फैलावा था एक लोग के अपन रिस्पॉन्सिबिलिटी चला लेके देखा तोरा चला समझे के वो चीज की मुझ जब एगो पेस्टिसाइड स्प्रे कर तो एगो एगो एगो कैसे बता सको असम्पशन पर है कि जहाँ पर स्प्रे कर तो वहाँ पर लगल पेस्टिसाइड तो वहाँ पर हो जो समस्या बातें वहाँ पर के तो के सुलझाए
1: तो इतना
0: आज एगो विभेद बातें तो वहाँ पर पिलुआ पर लगी तो पिलुआ के मरी ठीक मुझ तो फिर जो बा माल और फीमेल बा
1: जी
0: जो माल बा वो तो हर कारों में आके नहीं घूमेला तो खेत में आके नहीं घूमेला और जो आवेला वो खाली फीमेल आवेला आवेला सिर्फ और सिर्फ एक वो कार्य खातिन आके फल पर फल में अंडा पार के जाए के खाली हई बा होकर कार्य
1: जी
0: वो नहीं हुआ पर आके टूरिज्म ने कहला टूरिस्ट कहते घूमेला नहीं आतान करी कब कोई आके स्प्रे करी तब ओके लगी वो भी दोनों माल फीमेल मुझदे हुई जो बा खेत के बाहर में रहला जा झाड़ियों में कैसे किसी बोले वाइल्ड वेजिटेशन जो बातें वगैरह वगैरह छाँव में रह लंसा तब जब फीमेल के ओके बा आके अंडा पार के तब आके खेत में प्रवेश करी फल के चुनी ओकर में अंडा पार दे अंडा पार के उछल जाए वहाँ पर नहीं बा अब जब एक किसान जब ओकर में पेस्टिसाइड स्प्रे करता था तू हमसे बोला अंडा पार के अंडवा भीतरे चल गल बा मुझदे फुआ उ तक खेत में नहीं बा उतर ढुक के निकल गए कौन प्रोबेबिलिटी बा जितना मुझ डिफ्री में सक बजा है ओके कौन थोले करे दूसर ओर से सोचा आज पेस्टिसाइड इतना ले एफिकास रहत मुझ डिफ्री के खिलाफ तो उतना बड़ी से है किसी बोला 20th century से मुझ डे कोनो कोनो मुझ डिफ्री मोगिस में बातें और तोरा बोली 240 आके चल गए फिर से चलाल 1950 से कितना प्रकार के है मुझ देखी बा मोगिस में तो आज पेस्टिसाइड इतना ले एफिकास बा तो काहे न सब पॉपुलेशन का ना
1: दिखे तो काहे इस्तेमाल करते हैं उनसे तब
0: वहम हमें कल कुछ चीज हमने नाम नहीं बोला लेकिन इतना तो रा सकब बोले कि एगो समय आ रहा सन 2006 में कृषि मंत्रालय के ओकर सहायता से
1: जी
0: बहुत मोगिस में कहला एवाल्युएशन ट्रायल्स हो रहा रिसर्च हो रहा कि कैसे से कब सब मुझ देखी के कंट्रोले करे तब जाके कृषि मंत्रालय ही आके बोले हो अंजा कि देखा पेस्टिसाइड विकास नहीं है चला बेटिंग करे के ट्रैपिंग करे के क्योंकि तब उता हाँ, खेत में नहीं माना
1: हाँ,
0: तब बेटिंग ट्रैपिंग जब कर बा तो ओके बुला के वहाँ पर ही होला थापा में सब मुआ दे
1: हाँ,
0: जस्ती विकास है तो ये 2006 के और हम चला सकब बोले उस समय में ऐसा नहीं सर आदमी लंजा बोलन सा कि हाई ने काम करी चला पेस्टिसाइड ही की प्रयोग करे के
1: जी
0: तो समय के साथ उस समय तक 2006 के बाद बहुत है समय के साथ देखा इतना स्पष्ट बा कि आजकल जन जे जाने ला जे जे जन किसान

0: लोग जानेला और लोग लातराप के प्रयोग कैलन जा
1: जी
0: ट्रैपिंग कैलन जा
1: तो हाइजा परी जब बात करत हुआ जो माल बाते फीमेल बाते तो तोहर देखे में जे जे एक जना के माने कि जो जे इधर ल मालवा के कंट्रोले करबा तो फीमेलवा के माल नहीं मिली वो अंडा नहीं पारी तो ऐसे हो सकेला
0: नहीं ऐसे नहीं चलेला देखा जैसे बने ट्रैपिंग चला करके बेटिंग और ट्रैपिंग हाँ,
1: तो जब ट्रैपिंग होला बेटिंग होला कौन के दोनों के ट्रैप करल चला के
0: दोनों के सकल जा करे लेकिन हाँ, पहला जो बात करला ओकर पर आयला चलो ओकर लॉजिक समझे जो बोलला हा अंडा एगो एगो मुश दे फुई के अंडा पारे खातिन चाहला ओके पहला हो मक्खी के माचू हो के फिर चाहला ओके माल फीमेल के ख्वाजे हो के तब फीमेल जाके अंडा पारी
1: जी
0: ठीक अब गन्ना सौ गो फीमेल मक्खी बा और सौ गो माल मक्खी बा अब हो सौ गो माल मक्खी के तू लेके पचास गो कर दिला या पच्चीस गो कर क्योंकि उतना जन जन बाकी बा सबके मुआ दिला ता जन फीमेल मक्खी बा अब उतना नहीं से कि ख्वाजे करे अब गन्ना फीमेल आए माल मक्खी की अब इतना ले होकर पॉपुलेशन के जो नीचे कर दिला गन्ना अब दो तीन गो चार गो बाटे ख्वाजमा हो भी तो कमती हो जाए ना तो यही लॉजिक से गन्ला आज जो मक्खी बा जो माल बा ओके ओके गन्ना मुआ दिल ओके बेटिंग ट्रैपिंग से मुआ दिल ओकर संख्या नीचे कर दिल तो जो ख्वाजमा बा ओकर ओकर मात्रा अपने आप नीचे हो जाए
1: कमती
0: हो जाए और जब कमती हो जाए तो अर्थात कौन छोला कि जो फीमेल बा कमती अंडा जाए पारे कमती फीमेल जाए अंडा पारे
1: जी
0: ये होला अब एक में एगो प्रश्न आवेला कि कब जाके है कार्य करब आज तू इंतजार करब कि तोहर खेत में फल है जो सब्जी बा या फल बा फुला गल बा
1: तब
0: या फल धरता तब जाके ऐसा योजना आनब सकेला देर हो गल बा
1: तो माने कि जब रुपाई
0: कम से कम, हुआ? कम से कम दो तीन हफ्ता फुलाए से आगे चला ऐसा लाथाप डाल दे के जमे माल के जो संख्या बा नीचे गिर जाए
1: तो रुपाई से आगे कुछ चाहेला करी के जो फल बा जमे ई जो मुजदफी बा आगे आता के नहीं करी
0: कैसे पहले जनवली दो तीन हफ्ता आगे चाहला इस सब लाथाप डाल दे के ताकि जो माल बा का संख्या गिर जाए लेकिन हम बोलती है वो किसान जो गंदा ऐसा ऐसा सब्जी रुपीला या फल बाते और ओकर समस्या बात है मुशदेफी के खिलाफ ओके चलाओ पैमानों से लाथाप डाले के और इस सब लाथाप गन्ला अनेक हफ्ता की तरह चला ये रोज डाले के नहीं बाकर लाथाप चला खाली रेनुवले करे के उस अकेला दो हफ्ता पर या सकेला तीन हफ्ता पर निर्भर कैला कैसा लाथाप तीन महीना दो हफ्ता या तीन महीना पर पहला ओकर रेनुवल मौ करे के इन्हें कि हर हफ्ता पर जाके स्प्रे करके नहीं बातें
1: अच्छा
0: ठीक अब बातें है तब माल के बोल
1: हाँ।
0: अब बातें सकबा जा फीमेल के भी ट्रैप करे माल के भी ट्रैप करे साथ साथ यहाँ चला समझे कि कैसे सकब सब ट्रैपिंग करे
1: जी
0: आज खाली माल के ट्रैपिंग करे के होए तो सकबा जा एगो फेरोमोन के प्रयोग करे एगो फेरोमोन एगो ऐसा एगो सब्सटेंस है जो गन्ना सकी मुशदफी खातिर गन्ना सकी खाली माल के आचरे करे तो वो फेरोमोन में आज हमने गो प्वाजों डाल देबसा या तो फिर फेरोमोन की गो स्टिकी ट्रैप में लगा देबसा तो जितना गन्ना हो माल आए तो हमें चिपक के मर जाए ठीक अब थोड़ा बोली रही कि एगो मक्खी के चाला मचू हो के तब सकी ख्वाजे करे मचू हो खातिन वो मक्खी के चाला खाए के खाए खाते नहीं रोके चाह एगो प्रोटीन चला तो एगो प्रोटीन है जो मार्केट में मिलेगा उनका नाम है प्रोटीन हाइड्रोलाइजेट अनेक प्रकार के हम ब्रांड में नहीं जाब नहीं तो मार्केटिंग वगैरह हो जाए तो अनेक प्रकार के प्रोटीन बातें जो जो मिलेगा मार्केट में तो वो प्रोटीन में हमने सकब जा एगो या तो फिर में प्वाजो मिलावल गलबा या सकब सा एगो चीज़ मिला दे में तब आज या तो फिर एगो लाथाप एगो स्टिकी थाप के करीब सकब से डाल दे तो ओके जब आश्चर्य करे तो मर जाए या तो फिर कोनो कोनो पत्ता के नीचे भी सकब सा जहाँ किसी बोली मुझ देखो तोहर खेत में नहीं रहेला
1: जी
0: वो बाहर में रहेला झाड़ियों में रहेला वहाँ पर लुकाल रहेला आई छाँव में
1: जी
0: तो हम बोलती आज सकबा जा हर कोई के खास कर जो सब्जी रोपा तो बात तोहर व्यजे बात है लेकिन तोहर जो बोझिया बात है बाउंड्री बात है तोहर खेत के वहाँ सकबा आज तनी सुन आए मान्यो के रूप दे तनी सुन

0: मकई रोप दे या फिर कोनो आए लीमो के पेड़ डाल दे
1: कोनो रिपेलेंट
0: पत्ता के तरे डाल दे बा
1: ये सब रिपेलेंट तनी सुन बाते कुछ हो
0: करना लेकिन अट्रैक्टेड सकी काम करे कैसे तुलसी के पौधा बा तुलसी के पौधा जोन मुझ दे फुई जोन फल के बा ओके आश्चर्य करेला
1: अच्छा
0: आज वहां पर रही तब मक्खी वहां पर आए पास में आज गुला थाप डाल दे बा ज्यादा एफिकास हो जाए
1: तो एक ये सब जो नाथ्राप के बात करे थे वह सब फागेदाने से मिले हम जानी लाइगो एगो लाइक एगो छोटा सा लकड़ी बाटे वो हाँ, एगो
0: दाइला मैट ब्लॉक
1: मैट ब्लॉक हां
0: मैट ब्लॉक फागे के ओर से नहीं मॉरिशस में जितना जो फेरोमोन बा या प्रोटीन हाइड्रोलाइजेट के ओकर बाटे या स्टिकी ट्रैप बाटे जो फेरोमोन बाटे मिलावल गल बाटे सब मार्केट में मिलेला लेकिन हमने के कृषि मंत्रालय द्वारा एंटोमोलॉजी डिवीजन बाटे तो वो लोग भी हो मैट ब्लॉक मुफ्त में देवे लंचा मुफ्त में देवे लंचा तो ये जो मैट ब्लॉक बा ये शुरू में जो बोलनी सा बात तो सका 240 ओकर खाते ना तो हर लगे आज आम के पेड़ बा जंबाला के पेड़ बा गुयाब देसिन गुयाब के पेड़ बा ऐसा ऐसा पेड़ बाटे जैसे बोला सा फ्रूट ट्रीज कृषि मंत्रालय से संपर्क किया एंटोमोलॉजी डिवीजन से तो वहाँ से तरह से कि हम मैट ब्लॉक मिले और भी एक सोल्यूशन भी देवे लंच वो प्रोटीन हाइड्रोलाइजेट पर आधारित है तो ओकर में डिजा ओकर पॉजो मिलावल बाटे तो ओके सक वजह पत्ता के तरे में आज लगा देब जैसे बनी झाड़ियों में लुका लेना था ना तो पत्ता के तरे डाल देब तो जन मुझ दुफी बाटे माल फीमेल दोनों आके ओकर में खाए लगी तो मर जाए
1: अच्छा
0: हम मैट ब्लॉक के अब देर हला हम देखिला कि आदमी लोग लेके ओके किसी बोला कुल्लू लेके ठोक दे गांछी पर हम नहीं बोलते ऐसे करेंगे हालांकि देखा एक दो को डाले के बाद समय तो बात है ना है? हम बोलती एगो एगो प्लास्टिक के बोतल लेके एगो खिड़की है बना के
1: काट के
0: हाँ काट के तैसे मगर लेकिन खिड़की के जब बनाई बताओ कि काट के निकाल लेने दिया कम्प्लीटली ऊपर के भाग के वो ओवा कहते ऊपर कर दिया ताकि जब पानी बरसी तब पानी अंदर नहीं आए
1: जी
0: तब भीतर में एगो रस्सी भेज के खिड़की पर निकाल के तो हम मैट ब्लॉक के बांध दिया तब मैट ब्लॉक के अंदर डाल के खिड़की के जन सुन ऊपर कर दिया खींच के तब जन भूसों बा ओके से लेके सकबा जाओ रस्सी पर सेरे कर दे तब अपने लटकल रही
1: जी
0: तब वो बोतल के लेके वहाँ पर ही एगो पेड़ के नीचे जहाँ छाँव बा लगा दिया तब तोरा लो कि कैसे मक्खी आके अंदर प्रवेश करके दिखबा कितना मक्खियों का में मरेला हजारन के हजारन और कितना हाली भरेला
1: अच्छा
0: तब तोरा पर ही बोतल के खलियाए के
1: जी
0: तब कैसे शुरू में बोली लाथाप के रेनुवले कर लला तब ऐसा नहीं को मैट ब्लॉक सकेला तीन महीने तक सकेला ज़्यादा ही आज एक घमाऊ सब ने लगत हुई तब जैसे ज़्यादा ही चल रहा है तो तरह लोग कि जब ले मक्की के पकड़े था तीन महीना चार महीना तक तो हवे काफ़ी बातें तब बाद में सकबा जाके फिर से ओके रिन्यूवले कर दे
1: जी तो चला हमने स्प्रे करे थे जा ही आशा करे थे जा कि जितना जना अभी हमने के स्वीव करत हुआ जा तो जो मुश्त हुई बातें हमने यही आशा करे थे जा कि लोग के लगे नए बाटे और जो बाटे तो अपन प्रिकॉशन सब लिया हमने के सुनत हुआ फागे के संगे जुड़ल रही है चला एगो छोटा सा मिस कॉल ब्रेक के बाद फिर उसे वापस आए राजा

0: आज की चर्चा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद चाचा लफीरों से हमने संगे जुड़ल हुआ आज की चर्चा कार्यक्रम में मुझ दे फुवा बातें बाप रे बाप कितना फचक करेला कितना नुकसान पहुँचावेला हमने के जितना फल बाटे हबी आम त मिलता लिक्सी मिली हबी लोंगानवो मिली हमने जानिया सब बिबासु सब हमने ढेर चीज हमने लगे मिलेला जो सीजनल फ्रूट्स बाटे निमन से चाहेला खाए के भरपूर लेकिन जब उ में अंडा पाट देवेलन सा ई मुझ दे फुवन त नहीं सक पसा खाए त अभी भाई सबू हमार दिमाग में एगो प्रश्न बाती धरला एगो खेतीहर उ हबी जलक कि जो पेस्टिसाइड उ डलते जाता उ कोनो काम में नहीं आवता तो उ अब कौन ची करी जैसे बोले हुआ ट्रैप बाते जो कोनो ट्रेनिंग बाते
2: हाँ आए जितना खेतीहर लोग बा सकें जा हमने के क्रॉप एक्सटेंशन के दफ्तर संगी संपर्क रखे और जो ऑफिसर बा वहाँ पर ही या तो वहीं पर जाके वहीं सकी ऑफिसर तोरा अगर एक्सप्लिकेशन दे
1: जी
2: कौन सी चाहला कह दे के दूसरा सकियन आके खेत में डेमोन्स्ट्रेशन भी करे यानी कि जितना योजना बुलाते हैं जा और एक चीज़ बा कर पड़ा जितना जितना योजना सकल जाए करे उषा की खेत में आके डेमोन्स्ट्रेशन एक्सप्लिकेशन ही नहीं डेमोन्स्ट्रेशन भी करे
1: जी
2: तोरा ऐसे तोरा लौकी कैसे काम करा था ऐसा स्ट्रैटेजी
1: जब लौकी जब बचायन तब लोग के हाँ पता चले कि
2: देर हला जब एक ऐसे जब बातचीत खेला जाता सोचला कहा बचाता नहीं
1: जब
2: नहीं
1: दिखबा ना तब लिखा
2: दिखबा जाता या तो फिर ऐसा नहीं है डेमोन्स्ट्रेशन बोली ना या तो फिर तोरा सकी लेके जाए ऐसा एगो खेतीघर के पास जो ऐसा योजना वो करा था ओके कंडक्टर टू बोला सा हमने सकन जा खेतीघर लोग के लेके जाके ऐसा खेत में एगो विजिट भी करे ताकि वो लोगों के एक्सपीरियंस मिली कैसे दूसरा कोई कर रहा था यहाँ पर ही हम और कुछ हाँ ट्रेनिंग भी बात है तो उस की तब ऑफिस ही खातिन सब ऑर्गेनाइज करी यहाँ पर ही और एक चीज जितना खेतीहर लोग बा देखा हम बोली लाथाप बोली बेटिंग ट्रैपिंग पोटिन हाइड्रोलाइजेड वगैरह बोलनी जा एक में और एक चीज बा जो एकदम से बेसिक लौकेला में ओकर मूल्य बहुत बात है हो जब जो फुई जो फल बाते पिके हो गल बाते तक कुछ बोल नहीं जाओ का मैं तब 20 गो अंडा हुई ना 25 गो सके अंडा हुई तक आज पिके हो गल बाते तक अंडा कदुआ के खेत बा और पिके हो गल बाते अब खेती हर जब खेत में आवता तो के लोग का पिके हो बा लेकिन छोड़ दे होता फल के हुए पड़ी तो कुछ होला तो वहाँ से तब 20 गो अंडा में फूटी 20 गोंडा में से 20 गुलाब निकली 20 गुलाब में से 20 गो मक्खी निकली अब 20 गो मक्खी में से सकेला 10 गो मक्खी फीमेल हुई 10 गो माल हुई अब देखा
1: 20 गो अंडा से
2: 10 गो फीमेल अंडा आज पारी तो कितना 200 हो गया अब हम तब एक गो फीमेल था 200 गो अंडा पारी तो 10 गो फीमेल आज निकला लोग में से तो 200 वह देखा कितना होगा 4000 हाँ जो खेती हर बार अब खेत में लौकता मुजदूफी प्रभाव कर ले बा फल पर तो के चला एगो एगो एगो चिपा एगो एगो एगो केज है काज ओके बोला सा ऑगमेंटोरियम
1: जी
2: कुंचिया ओकर में एगो एगो छोटा सुन गला एगो नेटिंग की तरह लेकिन नेटिंग इतना ले पतरा है मैश इतना ले पतरा है

0: कि मुझे फुई जन मक्खी बा नहीं सकला निकले तो जितना फल बा जन जानता वो बिगड़ गल बा है मुझे फुई द्वारा तो उस सकी हो ओकर में फेंक दे बीते अंदर में कैसे प्लास्टिक के बोतल एगो काज बा डाली जा तो उसी प्रकार है एक ऑगमेंटोरियम में हो फल के लेके डाल दे तो फल में से लव त मक्खी बनी मक्खी त निकली फल में से लेकिन जब निकली तो ऑगमेंटोरियम में फंस गल रही वहीं पर ही फसल बात नहीं सकी बाहर निकले जाने के उ नहीं जाए ख्वासे हो नहीं जाए अंडा पारे इस प्रकार से जो मुझ देखो कि प्रेशो बातें खेत में वो नीचे हो जाए कमजी हो जाए
1: जी
0: तो हाई एगो चीज बात
1: है। चल हमने के आज के चर्चा कार्यक्रम है जी बड़ी समाप्त होला जाए से आगे अभी जितना जना खाली खेतीहर लोग नहीं कहे कि हमने के घर आंगन में भी जैसे अभी ट्रॉप सब मिलेला डाले के
0: हाँ हाँ क्यों नहीं आज तोहरा आए आज घर पे तोहर फल के पेड़ बा आम के पेड़ बा कोनो जहाँ जहाँ बालक बा गुयाब बाते कुछ बाते तो सक बजा किसी आए कृषि मंत्रालय संगे संपर्क रखे और एंटोमोलॉजी डिवीजन के पास जाइया और समझाइया कि तोहर लगे कौन सी बातें नहीं जन जन सना और लोगों के छा जाने की कौन सेवा छा प्रदान करे के तब बोलिया जहाँ हमारे लगे इस तरह के पेड़ बाते और फल बात या सक बजा फल लेके लेके जाए तो लोग जान जाए जा तब तोरा हो मैट ब्लॉक बन बा सके जा दे या फिर जन सोल्यूशन बा सके जा दे घर पे सक बजा प्रयोग करे
1: जी।
0: और एक चीज़ हम बोलती इस तरह घर घर घर की बात किसान लोग की हम बोलती देखा जा पेस्टिसाइड मुझे फुई कंट्रोले करे खातिर एफिकास नहीं है एक में तोहर खर्चा बढ़ता तोहर आमदनी कम होता और पेस्टिसाइड तोहर स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है। हम बोलती जितना चीज़ हमने बोलने जा कैसे बेटिंग ट्रैपिंग बा सीखे के जे करता था अच्छा बात है जे नहीं करता तोहरा पड़ोसी ने करता था ओके सीखाया क्योंकि कभी कभार कुछ होला हम नहीं कर ला जाता दूसरा के देख ला सा ओके हो समस्या बात है तो कभी कभार बजा सकता ओके हम नहीं सीखा हम तो अच्छा हम कितना समस्या नहीं बांधे लेकिन चला सोचे कि जब हमार जन पड़ोसी बा खेत के वैसा योजना नहीं आता तो हम मुझे फिर के प्रेशो हम लगी भाई
1: जी
0: तो एक चाहला सबको के समझाए के सबको के बोलती बेटिंग ट्रैपिंग कर जा फागे के उड़ावा जा कैसे चाहला करे के हमने थोड़ा थोड़ा संगे आए सिखाब जा।
1: तो चल हमने यही आशा करा था जा कि निमन से सुनना निमन से देखला और निमन से समझ गएला। आज की चर्चा कार्यक्रम है जे परी समाप्त होला आप सब लोगन के बहुत धन्यवाद भाई संजय शंभू और आवत हफ्ता हमनू फिरों से मिलब सा नमस्ते प्रणाम।

0: मिलते हैं अदिति से। नमस्कार।
1: नमस्कार विकास, श्रोताओं को भी नमस्कार। प्रधानमंत्री दफ्तर के पूर्व सीनियर एडवाइजर जॉन कॉल एलिजे और मलागासी व्यवसायी मामी गावातुमांगा के भरोसेमंद सहयोगी बताए जाने वाले डेविड तुमा से जुड़ी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग की जांच में एक नई बात सामने आई है। इसमें खास तौर पर गावातुमांगा मामले से जुड़ी 350 मिलियन रुपए की कथित डील के बारे में बातचीत है। हालांकि अभी तक इस मामले की असलियत, बातचीत करने वाले लोगों की पहचान और इसमें शामिल रकम की सही जानकारी का पता नहीं चल पाया है। प्राप्त हालिया जानकारियों के मुताबिक आगे की जांच पड़ताल के लिए फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन के एक वरिष्ठ अधिकारी और साइबर लैब के एक प्रतिनिधि यूरोप जा रहे हैं। मकसद है उस व्यक्ति के फोन की जांच करना जिसने कथित तौर पर विदेश से ये

0: रिकॉर्डिंग मॉरिशस भेजी थी ताकि उसके डिजिटल ट्रैक का पता लगाया जा सके और उसकी असलियत की पुष्टि की जा सके। मॉरिशस की मछलियों के लिए यूरोपीय मंडी में जगह बनाना मुश्किल होता जा रहा है। ट्यूना, स्टॉकफिश, दोगा जैसी कई मछलियों को यूके सहित कई यूरोपीय देशों में स्वीकार नहीं किया जा रहा। इस स्थिति से इस सेक्टर में चिंताएं बढ़ती जा रही हैं और मॉरिशस को निर्यात के लिए खासकर एशिया में नई मंडियां तलाशनी पड़ सकती हैं। इसके पीछे मुख्य रूप से एक्वाकल्चर, खासकर मेडिटेरेनियन ट्यूरा फार्मिंग से हो रहे कंपटीशन का कारण बताया जाता है। मछुआरों के श्रमिक संघ के प्रतिनिधि जिडेक्स रामफल का मानना है कि यूरोपीय मंडियों में मॉरिशन मछलियों के प्रवेश के लिए सरकार को जरूरी कदम उठाने की आवश्यकता है, खासकर मौजूदा समझौतों के अंतर्गत। जबकि दूसरी तरफ जूनियर मिनिस्टर फैबोइस दाविद अपनी तरफ से आश्वासन देते हैं कि स्थिति नियंत्रण में है। उनके अनुसार मौजूदा मछली पालन समझौतों के अंतर्गत मॉरिशस यूरोपीय संघ और यूके के लिए ट्यूना मछली का एक बड़ा निर्यातक बना हुआ है। मॉरिशन समंदर में पकड़ी जाने वाली ताजी मछलियों का एक बड़ा भाग सीधे निर्यात किया जाता है। थियोले में शुक्रवार को हुई सरस्वती मुचिया की हत्या के मामले में एक नई बात सामने आई। संदिग्ध राधाकृष्णा मुनिस्वामी ने कल रात अपना अपराध स्वीकार किया। उसे नॉर्दर्न डिविजनल क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के एक ऑपरेशन के दौरान पिछले हफ्ते में उसके घर से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के अनुसार 52 साल के इस व्यक्ति ने पैसों के लेन देन को लेकर हुए झगड़े के बाद 60 वर्षीय इस महिला का गला घोटने की बात स्वीकारी है। उसे आज अदालत में पेश किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, संयुक्त राष्ट्र के लिए ये साल महत्वपूर्ण माना जा रहा है। न्यूयॉर्क में 81वीं महासभा एक बेहद मुश्किल माहौल में लग रही है। कई जगहों पर संघर्ष, दुनिया के कई बड़े देशों के बीच मतभेद, आर्थिक संकट और टिकाऊ विकास से जुड़ी नियमित चुनौतियां। इस बार चर्चा के केंद्र में अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियां और महासचिव अंतोनियो गुतेरेस के उत्तराधिकारी का चुनाव शामिल है, जिनका कार्यकाल 2026 के आखिर में समाप्त हो रहा है। ये थी अब तक की खबरें। थोड़ी देर में शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। रॉयल रोड बेलेया में रामनारायण रॉय के पास 75 साल की 75 years old श्री आनंद दत्त मुरली, जो रोहित नाम से ज्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के साढ़े तीन बजे इनके भाई श्री बुझन देवानंद मुरली के मकान रॉयल रोड बेलेया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुशों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3:30 PM। वकाफ लेन चर्च रोड नोटरडाम में 91 साल की 91 years old की मिसेज शाहिदा जाफू, पिताशी नाम किरामत, जो शाहिदा नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इंतकाल कर गई हैं। इनका जनाजा आज दिन के दो बजे इनके बेटे जनाब फैजल जाफू के मकान वकाफ लेन चर्च रोड नोटरडाम से उठाकर पहली नमाज जनाजा के लिए नोटरडाम की शानी मोहम्मदी मस्जिद जाया जाएगा फिर दफनाने के लिए बमौशों का कब्रस्तान। फ्यूनरल टुडे एट 2 PM। कारोलिन बेलेया रिविया सेश में मैटरनल रोड कारोलिन बेलेया रिविया सेश में 71 साल की 71 years old बीबी मोनीरा कोरिम्बकस, जो मून नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इंतकाल कर गई हैं। इनका जनाजा आज दिन के साढ़े बारह बजे इनके मकान मैटरनल रोड कारोलिन बेलेया रिविया सेश से उठाकर पहले नमाज जनाजा के लिए कारोलिन की त्वाहा मस्जिद ले जाया जाएगा फिर दफनाने के लिए त्वाजिलो ओलिविया का कब्रस्तान। फ्यूनरल टुडे एट 9:30। रॉयल रोड कोंगारो फ्लैक में 79 साल के 79 years old श्री रामनारायण दुमन, जो दयान नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के तीन बजे इनके मकान रॉयल रोड कोंगारो फ्लैक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए क्वीन विक्टोरिया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडिया 3 PM। शोक में डूबे परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
1: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस।

रामायण सेंटर की ओर से प्रस्तुत मानस मंथन कार्यक्रम में मैं वीनू अरुण आप सबका सादर वंदन और अभिनंदन करती हूँ। श्रोताओं, रामचरितमानस के बाल कांड के दोहा 262 के नीचे की चौपाइयाँ यानी दोहा 262 के नीचे की चौपाइयाँ मैं आज आपकी सेवा में प्रस्तुत करने जा रही हूँ। प्रसंग क्या है कि शिव जी के धनुष को कोई उठा सके इसकी कब से प्रतीक्षा थी और वह कार्य श्री राम ने संपन्न कर दिया और धनुष टूटते ही चारों ओर हर्ष का वातावरण छा गया। देवता, किन्नर, गंधर्व, देवांगनाएं, जनकपुर के लोग सभी अत्यंत प्रसन्न हैं। सबको लगता है कि उनकी मनोकामना पूरी हो गई है, इसलिए जितना भी उनके पास धन है वे उसे न्योछावर कर रहे हैं। अपने मन की प्रसन्नता को इस प्रकार वे प्रकट कर रहे हैं। झांझ मृदंग शंख सहनाई, भेरी ढोल दुंदुभि सुहाई, बाजहि बहु बाजने सुहाए, जह तह जुबतिन मंगल गाए। झांझ मृदंग शंख शहनाई, भेरी ढोल और सुहावने नगाड़े, बहुत प्रकार के सुंदर बाजे बज रहे हैं, जहाँ तहाँ युवतियाँ मंगल गीत गा रही हैं। सभी प्रसन्न हैं, कोई ऐसा नहीं है जो दुखी है। सभी यही चाहते थे कि श्री राम के साथ ही सीता जी का विवाह हो, और चूंकि धनुर्भंग के ऊपर ये विवाह आधारित था तो आज सबके संशय दूर हो गए। सबने देख लिया कि श्री राम ने धनुष तोड़ लिया है, इसलिए सब प्रसन्न हो रहे हैं और तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट्स लोग बजा रहे हैं। देखिए तुलसीदास जी ने कितने सारे वाद्य यंत्रों के नाम यहाँ गिनवाए हैं, यानी उस समय भी इतने सारे वाद्य यंत्र लोग अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करने के लिए किसी शुभ अवसर पर बजाया करते थे। और जब हम कहते हैं शुभ अवसर पर बजाया करते थे तो दैनिक जीवन में बजाते होंगे, उनको अभ्यास होगा, ये उनके जीवन का एक बहुत ही अभिन्न अंग होगा। तभी तो जैसे ही ये शुभ अवसर आया सब इन वाद्य यंत्रों को बजाने लगे। कौन कौन से हैं ये वाद्य यंत्र? तो कहते हैं झांझ, मृदंग, शंख, शहनाई, भेरी, ढोल, नगाड़े, ये सब बजाने लगे। और जो स्त्रियां हैं ये पुरुष लोग बजा रहे हैं, ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं, ये जो वाद्य यंत्र हैं, इन्हें पुरुष बजा रहे हैं। और युवतियां क्या कर रही हैं? मंगल गाए, मंगल गीत गा रही हैं। स्त्रियां मंगल गान कर रही हैं और जो पुरुष हैं जिनको वाद्य यंत्र बजाने आते हैं वो लोग वाद्य यंत्र बजा रहे हैं। सखिन सहित हर्षि यति रानी, सूखत धान परा जनु पानी। तुलसीदास जी ने माता सुनैना के मन की चिंता का तो वर्णन किया था, लेकिन अभी ये नहीं बताया था कि उनकी स्थिति अभी कैसी है। तो अब वे माँ सुनैना का वर्णन कर रहे हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है ये दृश्य देखकर। तो कहते हैं तुलसीदास जी, सखिन सहित हर्षि अति रानी, रानी बड़ी प्रसन्न हुई। और कैसे प्रसन्न हुई? सखिन सहित, अपनी सखियों के साथ बैठी हुई थी। अपने मन की व्यथा भी तो वो अपनी सखी से ही बता रही थी, क्योंकि जो सच्चे मित्र

मित्र होते हैं, उनसे हम अपने मन का सुख दुख सब बताते हैं। तो इसीलिए रानी सुलैना ने अपनी सहेली से अपना दुख प्रकट किया था और अब उन्हीं सखियों के समक्ष वे अपने मन की प्रसन्नता भी प्रकट कर रही हैं। उनके अंग अंग में प्रसन्नता है। सोचिए उनकी चिंता दूर हुई, कितनी अधीर हो रही थी, कितनी चिंताकुल हो रही थी, और अब जैसे लगता है हर दुख हर चिंता पर किसी ने रोक लगा दिया हो, विराम चिन्ह लगा दिया हो। और किसने लगाया? श्री राम ने, श्री राम के धनुर भंग ने। तुलसीदास जी एक उपमा दे रहे हैं, कल क्या सूखत धान पराजन पानी। कैसे माँ सुनैना प्रसन्न हो रही हैं? तो जैसे सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। हम सब लोग इस बात को अच्छी प्रकार समझ सकते हैं कि जो धान की खेती होती है, धान यानी जो चावल है, पहले धान निकलता है, फिर उसे जब कूटते हैं, उसके छिलके को हटाते हैं, तब वो चावल बनता है। तो जो धान की खेती है उसके बारे में ऐसा कहते हैं कि बहुत पानी चाहिए धान को, और इसीलिए बरसात में धान की फसल बहुत अच्छी होती है। जब धान के पौधे पानी में डूबे हों तो इसका मतलब है कि चावल की खेती बहुत अच्छी होगी। तो जैसे यदि धान के पौधे सूख रहे हों, बरसात नहीं हुई है समय पर, और अब वो पौधे सूख रहे हैं क्योंकि लगता है कि अब ये पौधे बड़े होंगे ही नहीं क्योंकि बरसात नहीं हुई, सब सूख गए, और फिर एकाएक बरसात हो गई, तो जैसे धान के पौधे जो निर्जीव हो रहे थे वे फिर से सजीव हो उठे, वही स्थिति माँ सुनैना की है। माँ सुनैना जो अभी तक ये सोच रही थी कि मेरी पुत्री का विवाह ही नहीं हो पाएगा, वे अब परम प्रसन्न हो गई हैं। जनक लेहु सुख सोच बिहाई, पैरत थके था जन पाई। और राजा जनक की क्या स्थिति हुई सोचिए। राजा जनक जी की चिंता कितनी बड़ी थी। विदेह हैं वे, विदेह का मतलब विरक्त हैं। विरक्त का अर्थ क्या है? कि उन्हें सांसारिक संबंधों से लगाव नहीं था, उसके बावजूद अपनी पुत्री के विवाह की उनको चिंता तो थी ही, इसीलिए उन्होंने ये सब आयोजन किया था। लेकिन उन्होंने जो ये भारी प्रण ले लिया था, वो प्रण पूरा होते ना देख करके कितने कठोर शब्द राजा जनक ने कहे थे, जिसमें उनके मन की निराशा प्रकट हो रही थी कि लगता है धरती पर कोई वीर नहीं बचा। ऐसे राजा जनक अब कैसा महसूस कर रहे हैं? तो तुलसीदास जी लिखते हैं, जनक लहु सुख सोच बिहाई। जनक जी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया, यानी उनकी भी चिंता पूरी तरह मिट गई, समाप्त हो गई। इतना योग्य वर मेरी पुत्री को मिल रहा है, इससे अधिक क्या चाहिए था? जो कभी सोचा नहीं था वैसा वर जानकी को मिलने जा रहा है, ये सोच करके राजा जनक परम प्रसन्न हैं। उनके लिए तुलसीदास जी ने क्या उपमा का प्रयोग किया है? पैरत थके थाह जन उपाय। जैसे कोई तैरते तैरते थक गया हो, उसको कोई थाह नहीं मिल रही है कि किसी चीज़ को पकड़ करके वो थोड़ा विश्राम कर ले, ऐसे व्यक्ति को जैसे किसी ने कोई सहारा दे दिया हो, ये स्थिति है राजा जनक की। श्रीहत भये भूप धनु टूटे, जैसे दिवस दीप छबि छूटे। सीय सुख ही बरि नहीं कही भांति, जनु चात की पाई जलु स्वाति। अब तुलसीदास जी सीता जी की मनः स्थिति का भी वर्णन कर रहे हैं। धनुष टूट जाने पर जो राजा लोग निस्तेज हो गए थे, जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है। बहुत सारे राजा ये नहीं चाहते थे कि कोई धनुष को उठाए, यदि मैंने नहीं उठाया तो कोई और क्यों उठाए, ये भावना थी। लेकिन अब जब श्री राम ने धनुष तोड़ दिया तो वे राजा लोग निस्तेज हो गए, यानी बहुत निराश हो गए, उनके चेहरों की जो आभा थी वो समाप्त हो गई।

तुलसीदास जी बोल रहे हैं, कैसे? जैसे दिन में दीपक की शोभा चली जाती है। हर चीज का अपने समय पर ही महत्व होता है। दीपक जब शाम को जलता है, रात में जलता है, तो वही दीपक हमारे लिए प्रकाश का स्रोत बन जाता है। हमारे अंधेरे जीवन को वो प्रकाशित कर देता है। लेकिन वही दीपक यदि सूर्य की रोशनी में जल रहा हो, तो कोई उस दीपक की ओर ध्यान भी नहीं देता है। कहाँ सूर्य की रोशनी और कहाँ दीपक की ये मध्यम ज्योत। इसी तरह से ये राजा लोग, मान लो जैसे दिन में दीपक की ज्योति हो, वैसी उनकी स्थिति हो गई है। यानी चेहरे उनके बिल्कुल निस्तेज हो गए हैं, जैसे लगता है निराशा से उनका चेहरा बिल्कुल बुझ गया है। और सीता जी की स्थिति क्या है, तो कह रहे हैं सीता जी का सुख तो भला कौन उसका वर्णन कर सकता है। उनके मन में जो प्रसन्नता है, तुलसीदास जी कहते हैं उसका वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता। फिर भी एक उपमा दे रहे हैं, क्या? जैसे चातकी स्वाति का जल पा गई हो। इसे भी आइए समझें। ऐसी कवि कल्पना है कि जो चातक पक्षी होता है, चातक और उसकी पत्नी चातकी दोनों ही, वो सदा प्यासे रहते हैं। कितनी भी बरसात हो, वो पानी नहीं पीते। उन्हें केवल स्वाति नक्षत्र के जल की ही प्रतीक्षा होती है। यदि वो जल नहीं मिले तो वे अपने प्राण त्याग देंगे, लेकिन पिएंगे तो केवल स्वाति नक्षत्र में जो बरसात होती है वही पानी पीते हैं। तो जैसे चातकी को स्वाति के जल की कामना हो और उसे वो जल मिल जाए, उसकी प्यास बुझ जाए, तो चातकी प्रसन्न हो उठती है, मानो जीवित हो उठती है। वैसी ही स्थिति सीता जी की है, क्योंकि सीता जी तो पूरी तरह निराश हो गई थी। उन्हें लगता ही नहीं था कि श्री राम धनुष उठा पाएंगे। और उसका कारण क्या था? क्योंकि वे केवल श्री राम के बाहरी रूप को देख रही थीं, उनके बाहर के शरीर को देख रही थीं, जो बिल्कुल अभी अपरिपक्व है, ऐसे शरीर को देख रही थीं। उनके अंदर जो शक्ति है उसे सीता जी नहीं जानती थीं। इसलिए वे पहले निराश थीं, लेकिन अब वे चातकी की तरह प्रसन्न हो जाती हैं। और राम जी का जो धनुष तोड़ना है वो किसकी तरह है? मानो स्वाति के जल की तरह है। राम ही लखन बिलोकत कैसे, ससी ही चकोर किसो रुक जैसे, सतानंद तब आय सुदीना, सीता गमन राम पही कीना। श्री राम जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं? जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। तुलसीदास जी एक एक व्यक्ति की मन स्थिति का, मनोभावों का चित्रण कर रहे हैं। लक्ष्मण जी को भला कैसे छोड़ दें? वे लक्ष्मण जी जो दिन रात छाया की तरह श्री राम के साथ रहते हैं, उनके सुख का पूरा पूरा ध्यान रखते हैं। लक्ष्मण जी का तो अपना मानो कोई अस्तित्व ही नहीं था। श्री राम के अस्तित्व में ही उन्होंने अपने आप को विलीन कर दिया था। श्री राम का यश बढ़े, यही लक्ष्मण जी की एकमात्र कामना थी। ऐसे लक्ष्मण जी श्री राम जी को प्रसन्नता पूर्वक निहार रहे हैं। सबसे अधिक मानो प्रसन्नता लक्ष्मण जी को हो रही है, क्योंकि लक्ष्मण जी ही को तो क्रोध आया था और उन्होंने उठ करके ललकारा था कि रघुवंशियों के होते हुए भला इतनी बड़ी बात कैसे कह दी कि इस धरती पर कोई वीर नहीं बचा। और उनकी इन्हीं बातों को सुन करके विश्वामित्र जी ने राम जी को धनुष तोड़ने की आज्ञा दी थी। तो ऐसे हैं हमारे लक्ष्मण जी, तो वो राम जी को निहार रहे हैं प्रसन्नता के कारण। तुलसीदास जी कह रहे हैं जैसे राम जी चंद्रमा हो और लक्ष्मण जी चकोर।

आपको मालूम होगा चकोर और चंद्रमा का जो आपस में संबंध है उसका कवियों ने बहुत वर्णन किया है। कई फिल्म के गीतों में भी चकोर और चंद्रमा का वर्णन आता है, जैसे स्वाति नक्षत्र के जल से चातक को प्रेम होता है, वैसे ही बोलते हैं कि चंद्रमा को चकोर निहारता रहता है। तो जैसे चकोर चंद्रमा को निहारता है, वैसे ही लक्ष्मण जी श्री राम की मुख छवि को एक टक देख रहे हैं। सतानंद तब आय सुदीना, और ऐसे में शतानंद जी आज्ञा देते हैं। क्या आज्ञा देते हैं? सीता गमन राम पही कीन्हा। सीता जी ने राम जी के पास गमन किया। पहली बात, शतानंद जी कौन है? शतानंद जी राजा जनक जी के गुरु हैं। जैसे राजा दशरथ के गुरु थे वशिष्ठ जी, और जो कुछ भी करना होता था गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से ही होता था, उसी प्रकार इनके कुल गुरु शतानंद जी हैं। तो शतानंद जी ने तब आज्ञा दी, क्योंकि वे गुरु हैं, उन्हीं की आज्ञा से आगे के सारे अनुष्ठान संपन्न होंगे, इसलिए उन्होंने अब आज्ञा दी कि अब तो सब हो गया, अब सब एक दूसरे को देख रहे हैं। अभी तक कोई कुछ सोच ही नहीं पा रहा है कि आगे क्या किया जाए, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि धनुष टूट जाएगा और एक क्षण में टूट जाएगा। बाकी राजा तो आके 10-10, 15-15 मिनट धनुष को उठाने की कोशिश करते थे, और यहाँ तो एक पल में ये सब काम हो गया। इसलिए अभी सब एक दूसरे को मान लो देख ही रहे हैं, कोई समझ ही नहीं पा रहा है कि क्या करना है। और ऐसे में गुरु शतानंद जी ने, ऋषि शतानंद जी ने आज्ञा दी, और सीता जी ने राम जी के पास गमन किया। यानी उन्होंने सीता जी को कहा कि अब विलंब मत करो, अब ये जयमाल राम जी को पहनाओ, क्योंकि सीता जी तो एक जगह बैठी हुई हैं और हाथ में जयमाल है, उन्हें तो पता ही नहीं था कि क्या होने वाला है। इसलिए अब जब धनुर्भंग हो गया है तो इसके तुरंत बाद जो कार्य होना है वो ये कि सीता जी जाकर के वरमाला श्री राम को पहनाएं। और इसकी आज्ञा कौन दे रहा है? गुरु। कौन गुरु? शतानंद जी। संग सखी सुंदर चतुर गावहि मंगलचार, गवनी बाल मराल गति सुषमा अंग अपार। साथ में सुंदर चतुर सखियां मंगलाचार के गीत गा रही हैं। सीता जी बाल हंसिनी की चाल से चली, उनके अंगों में अपार शोभा है। सीता जी तो राजकुमारी हैं, अकेले तो नहीं जाएंगी, और राजकुमारी ना भी हों, आज भी जब लड़की का विवाह होता है तो जब उसे मंच पर लेकर जाते हैं तो कन्या अकेले नहीं जाती, या तो उसकी भाभी होती है साथ में, या बहन या सखियां। तो ये परंपरा बहुत पुरानी हमारे शास्त्रों से चली आ रही है, जिसका हम आज भी पालन करते हैं। इसी तरह सीता जी को उनकी सखियां लेकर के आ रही हैं और गीत गाते हुए आ रही हैं, मंगल गीत गा रही हैं। और सीता जी बाल हंसिनी की चाल से चली। बाल हंसिनी माने हमारे यहाँ जो कवि लोग हैं वो स्त्री की चाल की उपमा हंस से देते हैं। तो ये सीता जी चूंकि स्त्री हैं इसलिए उनकी उपमा हंसिनी से दी जा रही है। और ये हंसिनी कैसी है? बाल हंसिनी, क्योंकि सीता जी भी तो अभी बालिका ही हैं, इसलिए कह रहे हैं सीता जी कैसे चल रही हैं, बाल हंसिनी की चाल से, और उनके अंगों में अपार शोभा है। यानी बहुत सुंदर हैं सीता जी, और धीरे धीरे गति से अपनी सहेलियों के साथ उस तरफ जा रही हैं जहाँ श्री राम खड़े हैं। और श्रोताओं, इसके आगे के प्रसंग को अगले कार्यक्रम में प्रस्तुत करेंगे। आइए एक भजन सुने और उसी के साथ आज के कार्यक्रम को हम विराम दें। धन्यवाद। नमस्कार।

चलिए श्रोताओ, 10:36 हुए हैं स्टूडियो की घड़ी में, जहाँ से भी आप हमें सुन रहे हैं हमारा सादर प्रणाम। वैसे अभी आप मानस मंथन कार्यक्रम सुन रहे थे डॉक्टर विनू अरुण जी की प्रस्तुति में। तो चलिए भक्ति धारा कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे।

एक अलग ही शांति उतरती है। भोलेनाथ हमें सिखाते हैं कि जीवन चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, धैर्य और विश्वास का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए।

श्रोताओं, भक्ति धारा कार्यक्रम को हम जारी रख रहे हैं। बस शिव सादगी के प्रतीक है, न उन्हें वैभव चाहिए न दिखावा, बस सच्चे मन से चढ़ाया गया एक लोटा जल और श्रद्धा का भाव ही पर्याप्त है। और महादेव का यही संदेश है, अपने भीतर के अहंकार को शांत करें, मन को निर्मल बनाएं और सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते रहें।

तो चलिए श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। जिस मन में शिव का स्मरण हो वहाँ आशा का दीप जलता रहता है। मुश्किलें जाती हैं लेकिन विश्वास हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। तो चलिए श्रोताओं, कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे।

0: अच्छा
1: चलिए श्रोताओं, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। कुछ ही घड़ी में 11 बजने वाले हैं। कार्यक्रम का समापन निकारती के साथ करेंगे। 11 बजते ही आप समाचार सुनेंगे, बाकी कार्यक्रम उर्दू भाषा में सायदा के साथ। हमारी तरफ से आप सभी को हम कहेंगे शुभ दिन।

0: 11 बज चुके हैं, स्टूडियो में आ गए अदिति, उनसे मिलते हैं, जानते हैं इस घंटे के संक्षिप्त समाचार। नमस्कार अदिति।
1: नमस्कार विकास श्रोताओं को भी नमस्कार। विदेश मंत्री रितेश रामफल शनिवार को न्यूयॉर्क पहुंचे हैं, जहां वे कल शुरू हो रहे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में शामिल होंगे। वहां पहुंचते ही उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के समक्ष मॉरिशस के स्थायी प्रतिनिधि मिलान मिथोबान समेत कई अधिकारियों के साथ एक कार्य सत्र में भाग लिया। सभा के आधिकारिक उद्घाटन से पहले रितेश रामफल ने कल रविवार को कई बैठकों में हिस्सा लिया। इनमें कॉमनवेल्थ मिनिस्टीरियल एक्शन ग्रुप और अलायंस ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट्स की बैठकें शामिल रही। मुख्य रूप से आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री ने दुनिया के देशों के बीच संबंधों और राष्ट्र संघ की भूमिका पर खास बल दिया। उनका मानना है कि संगठन के तौर तरीकों पर फिर से गौर किए जाने और संयुक्त राष्ट्र सिक्योरिटी काउंसिल में अफ्रीका की भागीदारी और मजबूत किए जाने की आवश्यकता है। न्यूयॉर्क में इस यात्रा के दौरान शागर दस्तावेज पर भी चर्चा होगी। ऑडियो विजुअल विरासत को बेहतर ढंग से सुरक्षित रखने और कंटेंट तक पहुंच आसान बनाने के मकसद से फ्रांस के नेशनल ऑडियो विजुअल इंस्टीट्यूट की एक टीम ने पिछले हफ्ते एमबीसी का दौरा किया, ताकि मौजूदा आर्काइव्स प्रक्रिया का जायजा लिया जा सके। इस मिशन के नतीजे में मूर्त और अमूर्त दोनों तरह की असली विरासत को बेहतर ढंग से सुरक्षित रखने और प्रदर्शित करने के लिए सिफारिशें पेश की जाएंगी। मॉरिशस में रामायण गान हिंदू संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। ये परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी आवाज, संगीत और रामचरितमानस की चौपाइयों के पाठ के माध्यम से आगे बढ़ती जा रही है। इसके लिए मॉरिशस सनातन धर्म टेंपल्स फेडरेशन की ओर से महत्वपूर्ण प्रयास किए जाते हैं। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए फेडरेशन की ओर से रामायण गान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इसका फाइनल पोर्ट लुइस में लगा। चौताल और मॉडर्न क्लासिकल कैटेगरी

मेजीत नोत्रे दाम काली माता मंदिर की टोली की हुई, जबकि पारंपरिक गायन में रामायण सेवा संगठन मिजिन कौदेमास की टोली की जीत हुई। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में जोरदार चक्रवाती तूफान दुजुआन जापान की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। इसके साथ 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली तेज़ हवाएं जुड़ी हुई हैं और जिसके चलते भूस्खलन और बाढ़ की चेतावनियां जारी की गई हैं। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त है। थोड़ी देर में शोक समाचार। रॉयल रोड बेलिया में 75 साल के 75 ईयर्स ओल्ड श्री आनंद दत्त मुरली जो रोहित नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के साढ़े तीन बजे इनके भाई श्री भूजन देवानंद मुरली के मकान रॉयल रोड बेलिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुशों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे आथ ऑफ पॉस 3 PM। वाकाफ लेन चर्च रोड नोत्रदामी 91 साल की 91 ईयर्स ओल्ड की मिसेज शाहिदा जाफू पैदाशी नाम किरामत जो शाहिदा नाम से ज़रा जानी जाती थी, इंतकाल कर गई हैं। इनका जनाजा आज दिन के दो बजे इनके बेटे जनाब फैजल जाफू के मकान वाकाफलेन चर्च रोड नोत्रदाम से उठाकर पहली नमाजी जनाजा के लिए नोत्रदाम की शानी मोहम्मदी मस्जिद ले जाया जाएगा। फिर दफनाने के लिए बुआ मौशा का कब्रस्तान। फ्यूनरल टुडे 2 PM। शोक में डूबे परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।

आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और बड़ा रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्लाह ताला फरमाता है, ज़्यादा सोचना, शिकायत करना, ख़ुद पर बहुत ज़्यादा दबाव डालना बंद करो, इसके बजाय मुझ पर एतमाद करो। तुम्हारा मुझ पर भरोसा कहाँ है? मैं तुमसे ज़्यादा तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं अपने बंदों को मायूस नहीं होने दूँगा। मौज़े सामीन, उम्मीद है आप फ़ज़ल खुदा खैर वाफियत से होंगे। इस वक्त आप समाअत फरमा रहे हैं हमारी उर्दू नशरियात शम्मे फ़रोज़ान रेडियो मॉरिशस के ज़रिए सैयदा सुबाई के साथ। आज की इस उर्दू नशरियात में हज़्ब मामूल आप समाअत फरमाएंगे तिलावते कुरान पाक, हम्द, बयान, नातु सलाम, इसके अलावा आपके पैगामात। आगाज़ हो जलसे का कुरान की तिलावत से, मसरूर दिल मोमिन हो इसकी हलावत से। तो आइए आगाज़ करते हैं कलाम इलाही से। आज आप समाअत फरमाएंगे सूरह अद्दुकान की तिलावत। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: मौजूद सामीन, इस वक्त इस स्टूडियो की घड़ी में 11:24 हो चुके हैं। सैयदा सुबाई आपसे मुखातिब हैं और आप समात फरमा रहे हैं हमारी उर्दू नशरियात शम्मे फरोज़ा। आइए समात फरमाइए चंद ऐलान। जी हाँ, कल 22 सितंबर मंगल सुबह 10 बजे उर्स गौसे पाक का खुसूसी प्रोग्राम दारुल उलूम मजलिस रज़ा की ब्रांच आबिद गुलेत पोर्ट लुइस में मोहतरमा आलिमा सैयदा उनाज़ा फ़ातिमा की सरपरस्ती में किया जा रहा है। तमाम ख़वातीन को शिरकत की दावत है। इसके अलावा बुध 23 सितंबर, जी हाँ बुध 23 सितंबर सुबह 10 बजे दारुल उलूम मजलिस रज़ा प्लेंदे पपाई में आलिमा सैयदा उनाज़ फ़ातिमा और उस्ताज़ा यास्मीन आज़िया साहिबा की सरपरस्ती में उर्स गौसे पाक का इनेकाद किया जा रहा है। इसके अलावा 26 सितंबर, जी हाँ सनीचर 26 सितंबर सुबह 10 बजे शान रसूल मस्जिद लागी लॉज पोटलिस में आलिमा सैयदा उनाज़ा फ़ातिमा की सरपरस्ती में उर्स गौसे पाक का ख़ास प्रोग्राम किया जा रहा है। तमाम ख़वातीन को शिरकत की दावत है। इसके अलावा जी हाँ, कल 22 सितंबर सुबह 10 बजे अब्दुल रज़ाक हॉल फिनिक्स में 11वीं शरीफ का एहतमाम किया जा रहा है उस्तानी बेगम साजिदा रजब की सरपरस्ती में। ये थे चंद ऐलानात। आप अपने पैगामात हमें इस नंबर पर भेज सकते हैं 5251-7005, जी हाँ 5251-7005 के ज़रिए आप अपने पैगामात हमें व्हाट्सएप या नॉर्मल मैसेजेस के ज़रिए भेज सकते हैं। अब आप समात फरमाएंगे मुबल्लिगे दावत इस्लामी क़ारी अब्दुल माजिद अत्तारी साहब की ज़ुबानी एक बयान। आइए समात फरमाइए।
1: الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شخص صبح و

शाम मुझ पर 10-10 बार दुरूद शरीफ पढ़ेगा, क़ियामत के रोज़ मेरी शफ़ात उसे पहुँच कर रहेगी। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अबुल हसन सैयद अली बिन सैयद उस्मान हजवेरी अलमारूफ दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला की विलादत मुबारक कमोबेश 400 हिजरी में गज़नी अफ़ग़ानिस्तान में हुई। आप रहमतुल्लाह ताला के ख़ानदान आलिशान ने गज़नी के दो महलों जुलाब व हजवेरी में रिहाइश इख्तियार फरमाई, इसीलिए आप रहमतुल्लाह ताला अलैह हजवेरी कहलाते हैं। मेरे प्यारे दाता हुजूर रहमतुल्लाह ताला अलैह का सिलसिला नसब 7 वास्तों से नवासे रसूल जन्नती नौजवानों के सरदार हज़रत इमाम हसन मुजतबा रदी अल्लाह तआला से होता हुआ मुसलमानों के चौथे खलीफा हज़रत मौला अली रदी अल्लाह तआला से जा मिलता है। दाता हुजूर के वालिद माजिद हज़रत सैयद उस्मान हजवेरी रहमतुल्लाह तआला ने अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम दीन और आबिद व जाहिद बुज़ुर्ग थे। वो दाता हुजूर रहमतुल्लाह तआला अली की वालदा माजिदा दूसरे नवासे रसूल इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला नो की आले पाक से थी। यूँ मेरे आका मेरे दाता हुजूर रहमतुल्लाह ताला अलैह नजीबुत्तरफ़ैन यानी वालिद मोहतरम और वालदा मोहतरमा दोनों की जानिब से सैयद थे। वालदा मोहतरमा भी बड़ी नेक सिफ्त वलिया खातून थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्यारे दाता हुजूर रहमतुल्लाह ताला अलैह इन नेक हस्तियों की बरकत के लिए हसनी जमाल और हुसैनी कमाल दोनों ही के जामिए थे। मेरे पीर मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद इलियास सत्तार कादरी दामत बरकातुहुल आलिया ने दाता हुजूर रहमतुल्लाह ताला की शान में एक मनकबत लिखी, इसके चंद अशार ये हैं। हो मदीने का टिकट मुझको अता दाता पिया, आपको ख्वाजा पिया का वासिता दाता पिया, काश मैं रोया करूँ इश्क रसूल पाक में, सोज दो ऐसा पे अहमद रज़ा दाता पिया, गो जलीलो ख्वार हूँ पापी हूँ मैं बदकार हूँ, आपका हूँ आपका हूँ आपका दाता पिया। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह पाक ने अपने इस मर्द कलंदर वली कामिल हुजूर दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला को उलूम ज़ाहिरी और बातनी से नवाजा था और आपने इल्म दीन को आम फरमाकर खूब खिदमत दीन फरमाई। आपने कई किताबें लिखीं जिनमें से चंद के नाम ये हैं, मिनहाजुद्दा दीन, दीवान, बहरुल कुलूब, अर्दियाया बिल हुकूकिल्लाह, कशफुल महजूब। अफसोस फी ज़माना आपकी किताबों में से सिर्फ कशफुल महजूब यानी पर्दों में छुपी बातों को जाहिर करने वाली ही आसानी से दस्तियाब है। अल्लाह पाक ने आपकी इस किताब को बेपनाह मकबूलियत से नवाजा। दुनिया की कई ज़बानों में इस मुबारक किताब के तर्जुमे हो चुके हैं और शायद लाखों कुतुब प्रिंट हुई हैं। मेरे प्यारे दाता हुजूर रहमतुल्लाह ताला अलैह की मशहूर ज़माना किताब कशफुल महजूब से तैयार किया ये चंद वाक़यात आपकी बारगाह में बुज़ुर्गान दीन के पेश करता हूँ। वाकई आपकी किताब कशफुल महजूब आप अपने नाम के मिज़दाक हैं। अल्लाह पाक की दाता हुजूर रहमतुल्लाहि ताला अलैह पर रहमत हो और आपके सदक़े हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो। मेरे प्यारे दाता हुजूर रहमतुल्लाहि ताला अलैह की सीरत के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए मकतबतुल मदीना का रिसाला फैज़ान दाता अली हजवेरी 80 पेज इसका है, पढ़िए। दावत इस्लामी की वेबसाइट www.dawatislami.net से फ्री डाउनलोड भी कर सकते हैं। सिलसिला आलिया कादरिया रज़विया तारिया के 11वें पीर व मुर्शिद हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने बाबू ताक एक इलाके का नाम है, इसके बाज़ार में एक आग की इबादत करने वाले शख्स को देखा जो नहायत खूबसूरत था। मैंने बारगाह इलाही में दुआ की, खुदाया इसे मेरी यानी इस्लाम की तरफ फेर दे, तूने इसे कितना खूबसूरत पैदा किया है। कुछ अरसे के बाद वो गैर मुस्लिम मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा, ए शेख मुझे कलमा शहादत पढ़ाइए और मुसलमान करके दर्जा विलायत तक पहुँचाइए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उन पर रहमत हो और उनके सदक़े हमारी मग़फ़िरत हो। सच कहा कहने वाले ने दुआए वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। किसी बादशाह की एक दरवेश से मुलाकात हुई, बादशाह ने अर्ज़ की अगर

आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो फरमाइए। उन्होंने जवाब दिया, मैं अपने ग़ुलामों के ग़ुलाम से कुछ नहीं मांगता। बादशाह ने पूछा, किस तरह? दरवेश ने फरमाया, मेरे दो ग़ुलाम हैं और वो दोनों तेरे आका हैं, एक हिर्स दूसरा उम्मीद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उन पर रहमत हो और उनके सदक़े हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो। ए आशिकाने रसूल, जिसने हिर्स और बेजा तमन्नाओं को अपना ग़ुलाम बना लिया वो हकीकी मानों में बादशाह है, और जो इनका ग़ुलाम बन गया वो तख्त पर बैठकर भी फ़कीर है। इस वाक़े में उन बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह ताला ने हिर्स व उम्मीद को अपना ग़ुलाम फरमाया है। मतलब ये कि मैंने अपने नफ्स को इस तरह काबू में कर लिया है कि लालच और दुनिया की ख्वाहिशात मेरे ताबे हैं और मैं इनका ताबे नहीं, जबकि ये दोनों चीज़ें बादशाह की आका हैं, क्योंकि वो सल्तनत, माल, ताकत और दुनिया की मज़ीद ख्वाहिशात हासिल करने की हिर्स और उम्मीदों के पीछे चल रहा है। गोया बादशाह उनका ग़ुलाम है और अल्लाह पाक के नेक बंदे औलिया किराम रहमतुल्लाहि अलैहिम अल्लाह पाक की अता से हिर्स व उम्मीद की आफत से महफूज हैं, इसीलिए इन्हें बादशाहों से कुछ सरोकार नहीं। इस वाक़े की मज़ीद ताईद आगे हज़रत फ़ुज़ैल बिन अय्याज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह के वाक़े में पढ़िए। सच कहा कहने वाले ने, किस चीज़ की कमी है मौला तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में, उकबा तेरी गली में, तख्ते सिकंदरी पर वो थूकते नहीं हैं, बिस्तर लगा हुआ है जिनका तेरी गली में। हज़रत शेख अबू ताहिर हरमी रहमतुल्लाहि ताला एक दिन दराज गोश यानी गधे पर सवार होकर बाज़ार से गुज़र रहे थे। एक मुरीद लगाम थामे हुए साथ था। किसी ने बुलंद आवाज़ से आपको बुरा भला कहा। मुरीद की गैरत ने जोश मारा, वो शख्स की तरफ दौड़ा तो पीर और मुर्शिद ने मुरीद को आवाज़ दी और फरमाया, अगर तुमने खामोशी इख्तियार की तो एक नसीहत वाली चीज़ दिखाऊंगा ताकि तुम इस सख्ती से बाज रहो। मुरीद खामोश हो गया। जब घर पहुँचे तो मुरीद ने फरमाया, फुला संदूक उठा के लाओ। वो लाया, इसमें से बहुत से खतूत यानी लेटर थे जो कई लोगों की तरफ से हज़रत शेख अबू ताहिर रहमतुल्लाहि ताला के नाम के लिखे हुए थे। आपने वो खतूत निकाल कर मुरीद के आगे रख कर फरमाया, पढ़ो ये लिखा है। क्या लिखा है? मुरीद ने कहा कि हर ख़त में उनके शेख के अलकाबात लिखे हैं, किसी ने शेख उल इस्लाम, किसी ने ज़की, किसी यानी बहुत ज़्यादा ज़हीन, किसी ने हज़रत शेख ज़ाहिद यानी दुनिया से बेरगबत, किसी ने शेख उल हरमैन वगैरह लिखा है। शेख अबू ताहिर रहमतुल्लाहि ताला ने नाज़ी करते हुए फरमाया, इन सब अलकाब में मेरा नाम नहीं है, हालांकि मैं कुछ भी नहीं हूँ। हर शख्स ने अपने गुमान के मुताबिक मुझे मुखातिब किया यानी बुलाया। अगर उस यानी बाज़ार में बुरा कहने भला कहने वाले बेचारे ने अपने गुमान के मुताबिक कोई बात कह दी या कोई बुरा लकब दे दिया तो बिगड़ने या नाराज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं। अल्लाह पाक की उन पर रहमत हो और उनके सदक़े हमारी मग़फ़िरत हो। मुसलमानों के तीसरे खलीफा हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला ने एक दिन खजूर के बाग में इस हाल में तशरीफ़ ला रहे थे कि लकड़ियों का गट्ठा आपके सरे मुबारक पर रखा हुआ था, हालांकि आप 400 ग़ुलाम रखते थे। किसी ने अर्ज़ किया, ए अमीरुल मोमिनीन, ये क्या हाल है? आपने फरमाया, उरीदु अन ओ जर्रीबा नफ्सी, यानी मैंने चाहा कि अपने नफ्स का तजर्बा करूँ। सुभान अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उन पर रहमत हो और उनके सदक़े हमारी मग़फ़िरत हो। यानी अगरचे ये काम मेरे ग़ुलाम भी कर सकते थे मगर मैंने चाहा कि अपने नफ्स का इम्तिहान लूँ ताकि लोगों में जो मकाम व मर्तबा है उसकी वजह से ये नफ्स किसी काम से मुझे बाज ना रखे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक के प्यारे नबी हज़रत ईसा रूहुल्लाह अला नबीना वअलैहि सलातु वसलाम के पास एक गुदड़ी थी जिसे वो अपने साथ आसमान पर ले गए। एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं, मैंने उन्हें ख्वाब में देखा कि उनकी गुदड़ी के हर पैवंद यानी फटे हुए कपड़े वगैरह पर कपड़े लगे हुए हैं, यानी उसको जोड़ा गया है, से उन जोड़ से नूर निकल रहा है। मैंने अर्ज़ किया, ए हज़रत मसीह अली सलाम, आपकी गुदड़ी से ये अनवार कैसे निकल रहे हैं? फरमाए, ये मेरे इज़्तिरार यानी बेकरारी और परेशानी के अनवार हैं, क्योंकि मैंने हर पैवंद को इंतहाई ज़रूरत के वक्त सिया था। अल्लाह पाक ने मेरे हर रंज के बदले मुझे एक नूर अता फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उन पर रहमत हो और उनके सदक़े हमारी मग़फ़िरत हो। हज़रत सैयद अली बिन

में हूँ। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बुज़ुर्ग को आगोश में बच्चे की तरह लिए हुए बाबे शैबा अकील हो रहे हैं। मैंने फ़र्त मोहब्बत यानी गलबा मोहब्बत में दौड़कर हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक को चूम लिया। मैं बड़ा हैरान था कि ये बुज़ुर्ग कौन है। अल्लाह पाक की अता से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी मौजाना शान से मेरे दिल की हालत का अंदाज़ा हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये तुम्हारे इमाम अबू हनीफा यानी नौमान बिन साबित रहमतुल्लाही ताला अलैह हैं। ये वाक़या बयान करने के बाद मेरे दाता हुजूर रहमतुल्लाही ताला अलैह फरमाते हैं, इस ख्वाब से ये बात ज़ाहिर हुई कि इमाम आज़म रहमतुल्लाही ताला अलैह का इज्तिहाद यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में बेखता है, क्योंकि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खुद नहीं जा रहे थे बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उन्हें उठाए लिए जा रहे थे। चूँकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़ता हो ही नहीं सकती, इसलिए जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो उससे भी ख़ता का इम्कान नहीं। ये एक खूबसूरत इशारा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उन पर रहमत और उनके सदक़े हमारी मग़फ़िरत हो। फ़ज़ैल बिन रबी बयान करता है कि मैं खलीफ़ा हारून रशीद के साथ हज के लिए मक्का मुकर्रमा हाज़िर हुआ। हज से फारिग होने के बाद हारून रशीद ने मुझे कहा, ए मरदान खुदा यानी अल्लाह पाक के औलिया, मैं से कोई यहाँ मौजूद है, हम उसकी ज़ियारत के लिए जाएंगे। मैंने कहा, जी क्यों नहीं, इस जगह हज़रत अब्दुर्रज़्ज़ाक़ रहमतुल्लाह ताला ने इनसे कहा मुझे उनके पास ले चलो। जब हम उनके पास पहुँचे तो बहुत देर तक गुफ्तगू होती रही। रुख्सत के वक्त हारून रशीद ने मुझसे कहा, इनसे पूछो कि क्या इनके ज़िम्मे कुछ कर्ज़ा है। उन्होंने फरमाया, हाँ कर्ज़ा है। हारून रशीद ने मुझसे कहा, इनका कर्ज़ा अदा कर दो। जब हम वहाँ से वापस आए तो उसने कहा, ए फुज़ैल, मेरा दिल किसी और बुज़ुर्ग से भी मिलने का शौक़ रखता है। मैंने कहा, यहाँ हज़रत सुफियान रहमतुल्लाहि ताला अलैह भी हैं। इसने कहा, इनके पास भी ले चलो। चुनाचे हम हाज़िर हुए तो देर तक गुफ्तगू होती रही। वापसी के वक्त खलीफा ने मुझे इशारा किया कि मैं इनसे भी कर्ज़ के बारे में पूछूँ। मैंने पूछा तो फरमाया, हाँ कर्ज़ है। खलीफा ने मुझे हुक्म दिया उसका कर्ज अदा भी कर दूँ। बाहर आकर खलीफा ने मुझसे कहा, ए फजल, सब वाक़ा मुगे रिपीट नो न फजैल मुझे फिनी जिया एना नो फजल मुगे लिया सा। फजल बिन रबी बयान करता है कि मैं खलीफा हारून रशीद के साथ हज के लिए मक्का मुकर्रमा हाज़िर हुआ। हज से फारिग होने के बाद हारून रशीद ने मुझे कहा, अगर मर्दान खुदा यानी अल्लाह पाक के औलिया में से कोई यहाँ मौजूद हो तो हम उनकी ज़ियारत के लिए जाएंगे। मैंने कहा, जी क्यों नहीं, इस जगह हज़रत अब्दुर्रज़्ज़ाक़ रहमतुल्लाह ताला रहे हैं। इसने कहा, मुझे उनके पास ले चलो। जब मैं उनके पास हम लोग पहुँचे तो काफ़ी देर तक गुफ्तगू होती रही। रुख्सत के वक्त हारून रशीद ने मुझसे कहा कि इनसे पूछो क्या इन पर कोई कर्ज़ा है। उन्होंने फरमाया, हाँ कर्ज़ा है। हारून रशीद ने मुझसे कहा, इनका कर्ज़ा अदा कर दो। जब हम वहाँ से वापस आए तो उसने कहा कि ए फजल, मेरा किसी और बुज़ुर्ग से भी मिलने का शौक़ है। मैंने कहा, यहाँ हज़रत सुफियान रहमतुल्लाहि ताला अलैही भी हैं। इसने कहा, मुझे उनके पास ले चलो। चुनाचे हम हाज़िर हुए, काफ़ी देर तक गुफ्तगू होती रही। वापसी के वक्त खलीफा ने फिर मुझसे इशारा किया कि इनसे भी पूछो कि कोई कर्ज़ है। तो आपने फरमाया, हाँ कर्ज़ है। खलीफा ने मुझे हुक्म दिया कि इनका कर्ज़ भी अदा कर दूँ। बाहर आकर खलीफा ने मुझसे कहा, ए फजल, अभी मेरा दिल नहीं भरा, किसी और बुज़ुर्ग से भी मुलाकात करवाओ। मैंने कहा, मुझे याद आया यहाँ हज़रत फ़ुज़ैल बिन अय्याज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह भी तशरीफ़ फरमा है। फिर हम उनकी खिदमत में हाज़िर हुए और ऊपर एक गोशे में बैठे कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। मैंने दस्तक दी यानी तापला पोत, मैंने दस्तक दी, अंदर से आवाज़ आई, कौन है? मैंने जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन आए हैं। उन्होंने फरमाया, मुझे अमीरुल मोमिनीन से और उन्हें मुझसे क्या सरोकार यानी क्या काम है? हमारे कुछ बहस व मुबाहसे के बाद उन्होंने नीचे आकर दरवाज़ा खोल दिया और चराग बुझाकर मकान के कोने में जाकर खड़े हो गए। मुसाफ़ यानी सलाम के दौरान हाथ मिलाने के वक्त हारून रशीद का हाथ उनके हाथ से मस यानी टच हुआ तो हज़रत फ़ुज़ैल बिन अय्याज़ रहमतुल्लाहि ताला ने फरमाया, अफसोस है कि इतना नरम और नाजुक हाथ दोज़ख में जलेगा, काश कि ये हाथ अज़ाब खुदा से इसे महफूज रहता। हारून रशीद ये सुनकर रोने लगा और इतना रोया कि बेहोश होकर गिर पड़ा। जब होश आया तो कहने लगा, ए फुज़ैल रहमतुल्लाहि ताला अलैह, मुझे कोई नसीहत फरमाइए। आपने फरमाया, ए अमीरुल मोमिनीन, तेरा बाप हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था।
उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि मुझे अपनी

0: कौम पर अमीर बना दीजिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए चचा, मैंने तुमको तुम्हारी जान पर अमीर बना दिया, क्योंकि अगर एक सांस अल्लाह की फरमाबरदारी में गुज़रे तो वो इससे बेहतर है कि लोग हज़ार साल तक तुम्हारी फरमाबरदारी करें, क्योंकि सरदारी से क़यामत के दिन सिर्फ़ और सिर्फ नदामत और शर्मिंदगी के अलावा कुछ हासिल ना होगा। हारून रशीद ने अर्ज़ की, और भी नसीहत फरमाइए। हज़रत फ़ुज़ैल बिन अय्याज़ रहमतुल्लाहि ताला ने फरमाया, जब हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि ताला को लोगों ने खलीफ़ा बनाना चाहा, तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि ताला ने चंद लोगों को बुलाया और इनसे फरमाया, लोगों ने मुझे इस बलाव मुसीबत में फंसा दिया है, मुझे क्या तदबीर करनी चाहिए, क्योंकि मैं सरदारी को मुसीबत समझता हूँ, अगरचे लोग उसे नियामत ख्याल करते हैं। इनमें से एक ने अर्ज़ की, ए उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, अगर आप चाहते हैं कि क़यामत के दिन अज़ाब इलाही से छुटकारा पाएँ, तो मुसलमान बुज़ुर्गों यानी बूढ़ों को अपने वालिद की तरह और नौजवानों को भाई और बच्चों को अपनी औलाद की तरह समझें, और इन सब के साथ वही सलूक कीजिए जो ख़ानदान का सरबरा वालिद अपने भाइयों बेटों और दीगर अहलो अयाल के साथ करता है, क्योंकि ये इस्लामी ममालिक एक घर की मानिंद हैं और इनमें रहने वाले अहलो अयाल हैं। इसके बाद हज़रत फ़ुज़ैल बिन अय्याज़ रहमतुल्लाहि ताला ने फरमाया, ए अमीरुल मोमिनीन, मुझे ख़तरा है कि कहीं तुम्हारा ये खूबसूरत चेहरा दोज़ख़ की आग में झुलस जाए। खुदा का खौफ रखो और इसका हक बेहतरीन तरीक़े से अदा करो। इसके बाद हारून रशीद ने अर्ज़ किया कि आप पर कुछ कर्ज़ है? हज़रत फ़ुज़ैल रहमतुल्लाहि ताला ने जवाब दिया, हाँ, खुदा का कर्ज़ मेरी गर्दन पर है और वो इसकी इताअत है, मैं फ़िक्रमंद हूँ कि इस वजह से मेरी पकड़ ना हो जाए। हारून रशीद ने अर्ज़ किया, कर्ज़ से मुराद लोगों का कर्ज़ है। आपने फरमाया, अल्लाह का शुक्र एहसान है, इसने मुझे बहुत कुछ नेमत दे रखी हैं, मुझे कोई शिकवा नहीं है, लोगों से बयान करता फिरूँ। हारून रशीद ने 1000 अशरफियों की थैली आपके आगे रख दी और अर्ज़ किया, इसे अपनी ज़रूरतों पर खर्च फरमाइए। हज़रत फ़ुज़ैल बिन अय्याज़ रहमतुल्लाहि ताला ने फरमाया, ए अमीरुल मोमिनीन, मेरी इतनी नसीहतों ने तुम पर कुछ असर नहीं किया और अभी तक जुल्म वह हट धर्मी पर कायम हो। हारून रशीद ने कहा, मैंने आप पर क्या जुल्म और हट धर्मी का मुजाहरा किया? फरमाया, मैं तुम्हें नजात यानी आखिरत के रास्ते की तरफ बुलाता हूँ और तुम मुझे मुसीबत में डालना चाहते हो, क्या ये जुल्म और जफा नहीं? ये सुनकर हारून रशीद और फ़ुज़ैल बिन रबी दोनों रोने लगे और रोते हुए बाहर आ गए। इसके बाद हारून रशीद ने मुझे कहा, ए फ़ुज़ैल बिन रबी, हज़रत फ़ुज़ैल बिन अय्याज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह असल में बादशाह हैं और ये सब यानी इनकी नसीहतों के सबब रोने की कैफियत का तारी होना दुनिया से बेरग़बती है। उनके दबदबे की दलील ये है कि जो दुनिया और आखिरत के घर में इन्हें हासिल है, दुनिया की तमाम ज़ेब व ज़ीनत इनकी नज़र में कोई हैसियत नहीं रखती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उन पर रहमत हो और उनके सदक़े अल्लाह पाक हमारी मग़फ़िरत फरमाए। प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हमने कई बुज़ुर्गान दीन के अभी वाक़ियात सुने कि जो कि दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी किताब कशफुल महजूब में लिखे। अल्लाह पाक हमें इन बातों को समझने और इन पर अमल कर कर दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन आमीन बिजाहिन नबीहिल अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम।
1: मौज़ सामीन, अभी आप समाअत फरमा रहे थे मुबल्लिग़े दावत इस्लामी क़ारी अब्दुल माजिद अत्तारी साहब की ज़ुबानी एक बहुत ही प्यारा बयान। उम्मीद करते हैं कि इस बयान से आपके मालूमात में ज़रूर इजाफा होगा। आइए समाअत फरमाइए चंद और ऐलानात दावत इस्लामी की जानिब से। उर्स गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का एहतमाम किया जा रहा है बुध 23 सितम्बर सुबह 10:30 बजे फैज़ुल मदरसा नुविल्दे कुवैत में ख्वाजा गरीब नवाज़ मस्जिद मेलगोज में, बावा जहांगीर शाह मस्जिद त्यागोश में, जुमा मस्जिद गुडलैंड में, सुन्नी मस्जिद ग्लैन पॉक में, आलिमिया मस्जिद बोबुआ में, अहमद कबीर मदरसा गुद्दे पॉम्पलेमस पोर्ट लुइस में, फैज़ान सहाबियात आयदोगे पोर्ट लुइस में, सुन्नी मस्जिद फिनिक्स में, अहले बैत मदरसा स्टैनले रोज़िल में, नूरानी सेंटर लागिकुओं क्यूपिप में, आफ्ताब इस्लाम मस्जिद सैपिया में, फैज़ान रज़ा मस्जिद न्यू ग्रोव में, कौ मापू ओयता में और जमीला मदरसा कौने मास्क पावे में बुध 23 सितंबर सुबह 10:30 बजे।

औसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के उर्स का एहतमाम किया जा रहा है। इसके अलावा जुमेरात 24 सितंबर सुबह 10:30 बजे मस्जिद तैयबा पॉम्पलेमोसिस में और तमाम ख़वातीन को शिरकत की दावत है। जी हाँ, ये पैगाम था दावत इस्लामी की जानिब से।

मौजूद सामीन, इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आपके पैगामात की तरफ। क्यूपिप से फरानाज जुम्मन, जी हाँ, क्यूपिप से फरानाज जुम्मन ने कलाम की फरमाइश की थी उन तमाम मरीज़ों के लिए जो बीमार हैं, कि अल्लाह पाक तमाम बीमारों को शिफाए कामला अता फरमाए। जितने भी लोग किसी भी मुसीबत में गिरफ़्तार हैं, अल्लाह पाक उनके लिए आसानियां फरमाए, और तमाम मरहूमीन के लिए दुआए मगफिरत की गुजारिश कर रही हैं फरानाज जुम्मन। इसके अलावा जी हाँ, सैंपल से रियाज करीम बख्श और रेहाना हुसैन बख्श ने भी एक मनकबत की फरमाइश की है। इसके अलावा हमेशा की तरह न्यू खौफ की फातिमा भी हमारा साथ दे रही हैं, और उन्होंने भी एक मनकबत की फरमाइश की है। इसके अलावा रसूल भी नंदू बहुत सारी दुआएं और प्यार भेज रही हैं अनीज़ा और नाजिया और उनकी बेटियों के लिए, ढेर सारी दुआएं भेज रही हैं और एक कलाम की फरमाइश भी कर रही हैं। लाविनिया सैपिया से तनवीर गुनू, वालिदा फरीदा, वालिद हुसैन, बहन तहजीबा और बीवी फातिमा के लिए

दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक उन्हें हमेशा खुश रखे। इसके अलावा नवाज़ से मुंतज़िर उद्दीन जुमिया के लिए, जी हाँ, शुमा करनी के नवाज़ से मुंतज़िर उद्दीन जुमिया के लिए वालदा फरजाना, वालिद मुमताज़ अली, नानी अफरोज़ बानो, खाला रुखसाना और शाजियाना और कज़न नूरिया और नौफल के लिए दुआ गो हैं नवाज़ से मुंतज़िर उद्दीन जुमिया के लिए कि अल्लाह पाक इन्हें हमेशा खुश रखे, दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ अता फरमाए। आमीन।

मौजूद सामीन, इसी के साथ थोड़ी देर में ये मजलिस इख्तिताम पज़ीर हो जाएगी। ऐ पाक परवरदिगार, तमाम मरहूमीन की मगफिरत फरमा, तमाम बीमारों को शिफा दे, तमाम बेरोज़गारों को रोज़गार दे, रिस्क में बरकत और कुशादगी अता फरमा। ऐ पाक परवरदिगार, हमें अपनी नेमतों पर शुक्र करने के तौफीक दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। आप तमाम सामीन ने हमारा साथ दिया, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सैयदा सुबाई को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: मौजिला गुजरात नो रंग रंगारंग एमबीसी रेडियो पर गुजराती गीतों नो प्रोग्राम रंगारंग रंगारंग।

घड़ी मिला लीजिए, समय 2:30 बज चुके हैं। सोमवार का दिन है, 21 तारीख सितंबर महीना 2026 का वर्ष, और मैं हूँ रत्ना, पहुंची हूँ आपकी सेवा में आपकी पसंद कार्यक्रम को लेकर। जहाँ कहीं से भी साथ दे रहे हैं, आशा करते हैं कि आप सभी मजे में होंगे। और बेशक आज के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए आप बिल्कुल तैयार हो चुके होंगे। तो जी हाँ, 4028085 पर नंबर है हमारे आपकी पसंद कार्यक्रम का, जहाँ पर आप अपने पसंदीदा गीत की फरमाइश को हम तक पहुँचा सकते हैं। और अगर मैसेज करना चाहें तो 5251705। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए 90s के ज़माने के इस हसीन गीत के साथ करते हैं शुरुआत। और ये जो गाना है, अमित कुमार और सपना मुखर्जी साथ दिया है, मोहम्मद अजीज और उदित नारायण ने विश्वात्मा फिल्म का, ये बहुत ही मशहूर सा गाना।

0: आपकी पसंद।
1: भाई 90s का ये दौर, ओए ओए, और एक था ये गीत, और बिल्कुल लाजवाब सा ये दौर, ये सफर, विश्वात्मा का ये गाना था। और चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारी अगली पसंद की ओर। और ये जो अगला पसंदीदा गीत है, विश्वानी दुमन के नाम हम करेंगे, और ये जो गीत है उन्होंने मांगा है अपनी प्यारी बहन इंदिरा और शारदा, सहेलियां हैं नीला और प्रतिभा, साथ है शोभा और गीता गजाधर। हमेशा की तरह वे मांगती हैं ये गाना अलका याग्निक की आवाज़ में। फिल्म है संग्राम।

0: हमें कभी कभी ऐसी मुश्किल में डाल देते हैं, ऐसे ऐसे गाने चुनकर लाके लाते हैं कि बस हमारी तो एग्ज़ाम ही हो जाती है यहाँ पर। चलिए कोई बात नहीं, पर हमारी कोशिश जारी है कि हर एक की फरमाइशी गीतों को हम जहाँ कहीं से भी ढूंढ कर लाएं और आपके दिल को खुश करें। और यहाँ शीला जी हमारे साथ देपीने से जुड़ी हुई है, और क्या गाना मांगा है शीला जी। बस चलिए आपके लिए फिल्म आस का ये गीत हम बिल्कुल चलाएंगे, मुकेश साहब की आवाज़ में रखा हुआ ये गीत, और ये भी काफ़ी अनसुना सा गीत है। आशा करते हैं इस गीत को सुनकर आपका दिल गदगद हो ही जाएगा।
1: बार इस तरफ देखो ये दिल बना है।

0: आपकी पसंद।
1: गाने अनसुने और बिल्कुल बहुत ही मज़ेदार, और कई सारे लोग हमसे कहते हैं कि क्या लाजवाब गाने चुनकर लाते हो आप सभी लोग, और थैंक यू सो मच। आपके बिना भाई इस कार्यक्रम में कहाँ चार चांद लग पाते। और चलिए इसी के साथ फिल्म गुमनाम का ये गीत हम चलाने जा रहे हैं, और फिल्म का ये गाना चुना है शांति जी ने कॉटेज से अपने पति, तीन बेटियाँ, तीन दामाद, दो नाती और एक नातिन के लिए। और बहुत ही मज़ेदार सा ये गाना था, हेलन जी पर फिल्माया हुआ लता जी की प्यारी सी आवाज़ में।

गीत का हर लफ्ज हमें बस यही कहता है कि जिंदगी जीना सीखिए, क्योंकि जिंदगी किसी के लिए रुकती नहीं है, समय की रफ्तार बहुत तेज है। और चलिए इसी के साथ बहुत ही प्यारे प्यारे श्रोता इस वक्त हमारे साथ बहुत ही दिल से जुड़ चुके हैं। और चलिए, ये है रूमा जी, साथ है आरती, इंदिरा, भाई है राकेश, धीरज, बेटा नमलेश, बेटी है कीर्तिना, और शिमला जी आप है बिलगोज से, बहुत ही पसंद करती हैं इस अगले गीत को, हम आपके नाम ज़रूर चलाना चाहेंगे। और बिल्कुल आपकी पसंद कार्यक्रम में यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं सीता देवी रामतोहल, जो है काकुलीन से, और उस अगले गीत की फरमाइश करती हैं फोंजू साग की अपनी प्यारी बहन आशा देवी राम की सुन के लिए। तो ये गाना हम आपके लिए चलाने जा रहे हैं।

0: चर्चा की गई। ताइवान के मछली पकड़ने का जहाज एफवी ओएनडा 168 जो आज सुबह बैंडेडाम इलाके में फंस गया था उसे खींचकर बंदरगाह तक ले जाया गया है। ये जहाज कुछ दिनों के लिए मॉरिशस में रुकने वाला था। इस दौरान उसे अपनी मछलियों की खेप उतारनी थी और ईंधन भरना था। हर साल 21 सितंबर को दुनिया भर में विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि शांति केवल युद्ध की अनुपस्थिति नहीं बल्कि आपसी सम्मान, समझ और सहयोग का नाम है। विश्व शांति दिवस का संदेश है कि मतभेदों का समाधान हिंसा से नहीं बल्कि बातचीत और समझदारी से किया जाए। बच्चों और युवाओं के लिए एक ऐसा भविष्य बनाया जाए जहां उन्हें डर नहीं बल्कि शिक्षा, सुरक्षा और बेहतर अवसर मिले। और इटोपियाई अधिकारियों के खिलाफ लड़ने वाले कई विद्रोही दलों ने अडिस अबेबा में सरकार को हटाने के लिए एक गठबंधन कायम करने का ऐलान किया है। इन 7 दलों ने प्रधानमंत्री अबी अहमद की सरकार पर युद्ध, जरसंहार, सामूहिक विनाश और गरीबी का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि इथियोपिया का विघटन कगार पर है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: 819 kilohertz, ये है रेडियो मॉरिशस, रेडियो मॉरिशस।
3: घड़ी मिला लीजिए, समय दोपहर के ठीक 3:03 हुए हैं। आइए आगे बढ़ने से पहले लेते हैं सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा जारी की गई कुछ विज्ञप्तियाँ। ये विज्ञप्तियाँ हैं वालोंचीना और पिचिकॉन फिनिक्स के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए, खासकर मौसलमॉ लिनवॉ, कुछ इलाके पिचिकॉन, मौसलमॉ रिवियर एज, सोफिया ब्रांच रोड, मौसलमॉ डामगी के निवासियों को सूचित किया जाता है कि बुधवार 23 सितंबर को सुबह आठ बजे से लेकर नौ बजे के बीच और पुनः दोपहर के 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। और अंत में है ओसनाल के कुछ इलाके जिनमें है लाहूत बलाकलावा, इवाको, ओसनाल गवर्नमेंट स्कूल में कल मंगलवार 22 सितंबर को दोपहर के 1 बजे से लेकर शाम 4 बजे के बीच मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्य पूरा होते ही बिजली की सप्लाई को सुचारू रूप से जारी कर दिया जाएगा। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने सभी ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी हैं और ये विज्ञप्ति जारी की गई थी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा। आइए आगे का

0: कार्यक्रम जारी रखते चले।
1: 7 days a week, 24 hours a day. My, this is Radio Marxis.
0: आपकी पसंद कार्यक्रम में पुनः आप सभी का हम स्वागत करते हैं। मैं रत्ना 4 बजे तक आपका साथ दे रही हूं और बिल्कुल लाजवाब सफर, लाजवाब गीतों का सिलेक्शन आप ही की ओर से आ रहा है। बिल्कुल 4028085 पर और थोड़ा संयम बनाते हुए अगले गीत की ओर हम बिल्कुल रुख करेंगे। मज़ेदार गीतों का ये सिलेक्शन आपकी ओर से आ रहा है और यहाँ पर आरती जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं त्रियोले से। कुछ ऐसे ही लाजवाब गीत की उन्होंने फरमाइश की है मुकेश साहब की आवाज़ में। फिल्म है संजोग, उनकी 3 प्यारी बेटियाँ, साथ है रीमा, आनंदी, सिमला और है उनके पति सुरेंद्र जी और साथ है बेटे आश्ले। तो चलिए इस मज़ेदार गीत को साथ मिलकर सुनते हैं।

0: आपकी पसंद।
1: आपकी पसंद। और अगली फरमाइश है बिल्कुल अनीता जी की ओर से। अनीता जी जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं लाल जी परिवार के साथ, साथ हैं करुणा, अमृता और सभी परिवार के नाम करेंगे ये अगला गीत, जो है फिल्म बसंत से लिया हुआ और बहुत ही प्यारा सा गीत है ये। तो आइए उनकी फरमाइश को पूरा करते हुए आगे चले।

0: बिल्कुल एक अलहड़पन, और शम्मी कपूर साहब इस फिल्म में नजर आए थे। बहुत ही लाजवाब सा ये गाना रहा।
1: आपकी पसंद।
0: और जहां चोरी चोरी की बात कही है, बहुत ही मजेदार गीत के साथ चलिए। एक और प्यारा सा गीत है लता जी की प्यारी सी आवाज में, 60s के जमाने का। ये गाना मुकेश साहब और लता जी ने साथ गाया है, और ये गाना जाएगा माधुरी और परी के लिए, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं और पारस मणि फिल्म का ये गीत मांगते हैं।

प्यार की कोई परिभाषा नहीं होती, दिल को खुश कर लो बस प्यार वही हो जाता है। और चलिए इसी के साथ हमें भी आपसे प्यार है, इसीलिए तो प्यार भरे गाने आपके लिए चलाते रहते हैं। अनुराग फिल्म का ये अगला गीत जाएगा सुनीता जी के लिए, जो घोंघुब से जुड़ी हुई हैं प्यारी बहनें विमला, अमृता और वीना के साथ।

0: आपकी पसंद,
1: आपकी पसंद कार्यक्रम को जारी रखते चले हैं। और यहाँ पर जन्मदिन मना रहे हैं ढेर सारे लोग। बिल्कुल मनीषा, आप जन्मदिन मना रही हैं और आज आपकी प्यारी सासुमा सावित्री राम गुलाम जो है वाकुआ से आपको बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद देती हैं। आपके पति धीरज, ननंदे हैं ज्योति और दीपा, और साथ ही साथ दो भतीजियाँ कौशिकी और ऋषिता, और साथ है बिमल और धीरज। और आपने गाना मांगा है ये वाला। फिलहाल ये गाना आई मिलन की बेला से लिया हुआ गीत है, आन मिलो सजना से नहीं। और चलिए यहाँ पर जन्मदिन मना रहे हैं लव कुश, आपको भी बहुत सारा प्यार आपकी प्यारी दादी शीला भिमाना की ओर से, पापा है विकेश और मामा शालिनी की ओर से, और बेजू तोंबो से जुड़ी हुई हैं मामा ललिता जो अपनी प्यारी बेटी टीना को जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ देती हैं। आप रहती हैं सेबास्तोपोल, आपके प्यारे बेटे हैं तनवीर, बहू है शालिनी, साथ है सभी जुलिम परिवार, खासकर भाई हैं विशाल, भाभी हैं क्रिस्टेल, साथ है सोनिया, बहन है बिंदिया, भाई बिमल, भाभी निष्ठा और निविता की ओर से, और सभी एमबीसी की टीम की ओर से जितने भी लोग आज जन्मदिन मना रहे हैं, चलिए आपको हमारी ओर से उपहार के रूप में ये प्यारा सा गाना।

आज के जमाने में सच्चा आशीर्वाद दिल से बहुत कम लोग दे पाते हैं। और चलिए इसी के साथ, यहाँ पर भाई तूफान आ चुका है, कुछ चीजें गिर रही है हमारे हाथों से, बट एनीवेज आपके कार्यक्रम को इस जारी रखा जाएगा। इस वक्त 3:26 हो चुके हैं और फिल्म का नाम है आस का पंछी और ये गाना है गौबी से बिसेसर जी के लिए, बिसेसर परिवार के लिए, सभी सुनने वालों के लिए, सभी रिश्तेदारों के लिए, सुबीर सेन और लता जी की प्यारी सी आवाज़।

0: जो बेखौफ चलते हैं जीवन सफर में, उनको मिला रास्ता।
1: बिल्कुल सही कहा, बेखौफ जो चलते हैं जीवन में उनको ही रास्ता मिलता है। चलिए इसी के साथ बेखौफ होकर हम भी आगे बढ़ते चले और तकदीर पर बिल्कुल भरोसा रखते हुए मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में रखा हुआ ये गाना सुनते हैं, बंधु फैमिली के लिए, जो है त्रियोले से इस वक्त हमारे साथ।

है आपका पंछी सुदेवी जी वाकवा से इस वक्त हमें मांगती है ये गाना। ललिता कुशल जो है त्रियोले से, उनकी प्यारी बहन, साथ है सुनीता, शोभा, देवीना, बिंदु, माला, मलेगा से है कृषय, कृष्णी, प्रणीता, राम रतन और कुवारू परिवार, साथ है जालू परिवार। सुबीर सेन की आवाज एक बार फिर आज का पंछी फिल्म जरिया हुआ ये गीत 59 के जमाने का।

दिल कभी पंछी बन के उड़ता है तो कभी प्यार की तलाश में यूं ही भटकता रहता है। जिंदगी में खुश रहना है तो खुश रहने के लिए बहुत सारी चीजें नहीं, बस प्यार होना चाहिए, अपने होने चाहिए, अपनों के दिल में प्यार होना चाहिए। और ये है किंग अंकल का गीत। गीता जी पोंफेया से मांगती है ये गाना अपने प्यारे पति रोहित के लिए। साथ है आदित्य आरव और तनिष, उनके तीन प्यारे नाती, प्यारी नातिन है परी जैसी जानवी, और तीन बहुओं के लिए तीन बेटों के नाम। नितिन मुकेश, विनोद राठौड़, साधना सरगम और अलका याग्निक की प्यारी आवाजों में।

चलिए ढेर सारा प्यार मिलता रहे उन सभी को जो आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। और यहाँ से प्यारी सी विशेज आ रही हैं संजय जी के लिए।

भाई प्यार, सम्मान, इज्जत, ये सारी चीजें जब आप देते हो तभी आपको वापस मिलती है। अब आप दोगे ही नहीं तो सामने वाला थोड़ी आपको इज्जत करेगा, थोड़ी आपको इज्जत देगा, थोड़ी आपसे प्यार करेगा। चलिए इसी के साथ बहुत सारा प्यार आप तक हम पहुंचा रहे हैं गीतों के माध्यम से। उदय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं रिवेजुपुस से, और साथ है उनकी प्यारी पत्नी संगीता जी, उनकी दो प्यारी बेटियां स्मृति और कीर्ति, दामाद है नागेश, और साथ है कियान, उनका प्यारा नाती, उनकी समधन है ज्योति, और संधि जी है सुनील जो है बुआ शेरी से। फिल्म है आदमी, आवाज है लता जी की।

0: प्यार का सागर फिल्म से लिया हुआ ये अगला गीत मोहम्मद रफ़ी और आशा जी की प्यारी सी आवाज़ में, और ये गाना जाएगा रेहाना जी के लिए जो इस वक्त नौतकदाम से जुड़ी हुई हैं उनकी प्यारी सखी माला फाउदा के लिए। साथ है सुरेखा जी और सभी सुनने वालों के नाम।
1: प्यार की जिंदगी देने वाले मुझे प्यार की जिंदगी।
0: चलिए यही गाना हम करेंगे प्रीति जी के लिए, प्रीति रंजीत जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनके प्यारे पति है राकेश और बेटी आदिता।

प्यार का राग यूं ही सुनते चले। और यहाँ ज्योति जी हमारे साथ है बुना कई से तेरे घर के सामने, इस फिल्म से लिया हुआ ये गाना उन्होंने मांगा है अपने पति कैलाश के लिए। साथ है दामिनी, नंदिश और उनके परिवार के साथ उनके दो प्यारे बच्चे। चलिए यही गाना हम करेंगे शकुंतला जी के लिए, जो मोताईलोंग से साथ जुड़ी हुई हैं, उनकी प्यारी ननन गायत्री जो है अनवर फौज से, बेटा अजय, बेटी सुनीता के लिए।

आपकी पसंद कार्यक्रम को बस यहीं पर थोड़ी ही देर में अब समाप्त करने का समय हो चला है। आखिरी गाना है फिल्म प्रेम रोग से लिया हुआ, हरीश जी के लिए, जो बोबासन से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी प्यारी पत्नी इंदिरा और उनके सभी दोस्तों के नाम, सभी परिवार के लिए, सभी सुनने वालों के नाम यही गाना करेंगे। और अनीता जी, आपको नहीं भूले हैं, फ्रिक ऑन फ्लैग से आप हमारा साथ दे रहे हैं, फिलहाल आपके गीत को नहीं चला पाएंगे पर जरूर इस गीत के साथ आपका नाम जरूर जोड़ना चाहेंगे। आपके पति हैं राज, साथ है आपके दो प्यारे बेटे अंतिश और अंकुश, और आपकी दो प्यारी बहुएं मनीषा और आशिमा, पति आपकी पोती है हिमेशा और आध्या, पोता है आंश। और सभी सुनने वालों के नाम इस गीत को छोड़े जाते हैं सुरेश वाडकर की प्यारी सी आवाज में। और चलिए इसी के साथ बिल्कुल 4 बजे तक ये कार्यक्रम जारी है और 4 बजे आप सुन पाएंगे क्षितिज कार्यक्रम जो हिंदी सचिवालय की ओर से चलाया जाता है। तो इसी के साथ बिल्कुल हम आपसे अब भेंट करेंगे ठीक 5:30 बजे 55 ऐसा कार्यक्म में रेडियो मॉरिशस की लहरों पर ही। तो इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति, नमस्कार, शुभ संध्या आप सभी को।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलो हर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: क्षितिज एक सार्थक यात्रा नए क्षितिज की ओर, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

मॉरिशस देशवासी बंधुओं, सादर नमस्कार, अभिनंदन। मैं प्रोफेसर सत्यपाल सिंह, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR के संस्कृत एवं दर्शन पीठ पर महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस में कार्यरत हूँ। आज मॉरिशस प्रसारण निगम MBC के माध्यम से भारतीय उच्चायोग द्वारा निर्दिष्ट इस कार्यक्रम में हिंदी भाषा पर संस्कृत का प्रभाव, इस विषय पर बोलते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है। मित्रों, हम जानते हैं किसी भी वृक्ष की महानता उसकी जड़ों में छिपी होती है। जितनी जड़ें गहरी होंगी, वृक्ष उतना ही विशालकाय और स्थिर और लंबे समय तक टिकाऊ रहने वाला होगा। यदि वृक्ष के रूप में हम हिंदी भाषा को देखें तो इसकी जड़ें संस्कृत को कहा जा सकता है। आज यदि हिंदी भाषा प्रफुल्लित, विकसित, विस्तृत हो रही है तो उसकी विशेष पृष्ठभूमि में संस्कृत भाषा को देखा जा सकता है। संस्कृत भाषा केवल एक भाषा ही नहीं है, संस्कृत भाषा एक संस्कृति है, एक विस्तार है, एक जीवन पद्धति है और अगाध ज्ञान का भंडार है, कोश है। इसीलिए संस्कृत के विषय में कहा गया है, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती। कहने का आशय है कि भाषाओं में सबसे मुख्य, मधुर और दिव्य वाणी संस्कृत है। संस्कृत के विषय में यह प्रश्न सबसे पहले उठता है कि हिंदी भाषा से उसका क्या संबंध है, या उल्टा कहें, हिंदी भाषा का संस्कृत से क्या संबंध है। मैं तो ये कहूँगा और यह सर्वजन स्वीकृत है कि इन दोनों के मध्य में माँ बेटी का संबंध है। संस्कृत जननी है तो हिंदी इसकी सबसे योग्य पुत्री है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से कहें तो हिंदी का जन्म संस्कृत से साक्षात नहीं हुआ, परंतु परंपरा से हुआ है। संस्कृत भाषा इसका मूल है, जो हमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद आदि संहिताओं में प्राप्त होती है। उसके बाद उससे एक दूसरी भाषा का विकास हुआ, जिसे हम लौकिक संस्कृत कहते हैं, जिसमें रामायण, महाभारत और संस्कृत के अन्य ग्रंथ लिखे गए। उस क्लासिकल संस्कृत या लौकिक संस्कृत के बाद जो आगे भाषा विकसित हुई, वह लोक भाषा के रूप में विकसित हुई और उस भाषा का नाम है पाली भाषा। इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेश संग्रहित हुए त्रिपिटक इसी भाषा में रचे गए और उसके बाद एक और भाषा का विकास हुआ और सरलता की तरफ भाषा गई, जिसे हम प्राकृत भाषा कहते हैं। प्राकृत से फिर आगे विकास हुआ भाषा का, तो अपभ्रंश बनी और अपभ्रंश से विकसित होकर के हिंदी भाषा का जन्म हुआ। इस तरह हम देखते हैं कि एक विशाल वंश वृक्ष की श्रृंखला में जड़ों के रूप में, मूल उद्गम के रूप में संस्कृत भाषा हमें दिखाई देती है। यह एक समृद्ध वंश परंपरा है और हिंदी को संस्कृत से अलग किसी भी रूप में नहीं किया जा सकता। प्रभाव की दृष्टि से देखें तो सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव यदि हम माने तो हिंदी भाषा के शब्दावली के ऊपर है। हिंदी भाषा में जो शब्दावली है उसमें 80% से अधिक शब्द साक्षात संस्कृत से लिए गए हैं, या तो वो संस्कृत से जैसे कि तैसे ग्रहण कर लिए गए हैं, जिनको हम तत्सम शब्द कहते हैं, या उनसे थोड़ा सा परिवर्तित, ध्वनि के परिवर्तन के साथ हमने उनको ग्रहण किया है, जिनको हम तद्भव कहते हैं। तो संस्कृत भाषा केवल शब्दावली ही नहीं देती, वस्तुतः हिंदी का प्राण है। हिंदी एक कदम भी संस्कृत के बिना नहीं चल सकती। यदि हम शब्दों पर ध्यान दें तो हिंदी में आम बोलचाल की भाषा में प्रचलित शब्द आकाश, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, जल, वायु, मनुष्य, माता, पिता, भाई, बंधु,

पुस्तक, धर्म, कर्म, सत्य, अहिंसा, आचार, विचार, राष्ट्र, ये सभी शब्द संस्कृत में ज्यों के त्यों उपलब्ध होते हैं और वहीं से लिए गए हैं। तो ये एक ऐसा प्रभाव है जिसको आप बिना किसी प्रयास के साक्षात देख सकते हैं। इसी तरह से तद्भव शब्द जो किंचित मात्र ध्वनि परिवर्तन के साथ संस्कृत से हिंदी भाषा में आए हैं, उनको यदि हम देखें, उन पर हम दृष्टिपात करें, तो एक लंबी लिस्ट हमारे पास हजारों शब्द ऐसे हैं जिनको हम कह सकते हैं कि वो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। उदाहरण के लिए हम कहें, संस्कृत का कर्म शब्द हिंदी में आते हुए काम हो गया है, हस्त शब्द हाथ बन गया, सप्त से सात बन गया, अष्ट शब्द आठ का वाचक है, संख्या का वाचक है, आठ बन गया, दुग्ध माँ का दुग्ध, गाय का दुग्ध, लेकिन वो दुग्ध जो है दूध में परिवर्तित हो गया, कर्ण कान बन गया, नयन शब्द नयन हो गया, जिह्वा जीभ बन गया, दंत दांत हो गया, और इसी तरह से सैकड़ों शब्द हैं, हजारों शब्द हैं जो संस्कृत से थोड़े से ध्वनि परिवर्तन के साथ लिए गए हैं। इसे हम तद्भव शब्दावली कहते हैं। ये तद्भव शब्दावली केवल भारत में ही नहीं, भारत से बाहर जहाँ भी संस्कृत भाषा का प्रभाव हिंदी पर हम देखने की चेष्टा करेंगे तो प्रत्येक देश में बोली जाने वाली हिंदी पर भी इसका प्रभाव दिखाई देगा। मॉरिशस भी इससे अछूता नहीं है। मॉरिशस में हिंदी भाषा में और इसकी एक शाखा कहें भोजपुरी भाषा में हम संस्कृत के बहुत सारे शब्दों को यथावत देखते हैं। एक वाक्य मेरे सामने है, हाथ गौड़ धोलो। इसमें हाथ शब्द विशुद्ध रूप से संस्कृत के हस्त शब्द से विकसित होकर के हाथ के रूप में आया है। तो ये शब्द हमारे ऐसे हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि संस्कृत से थोड़े से परिवर्तन के साथ यहाँ मिले हैं। इसके साथ एक और चीज़ देखिए, तत्सम और तद्भव, इनमें बड़ी एक समानता है, ये जोड़ों के रूप में भी हमें दिखाई देते हैं। जैसे संस्कृत का कृष्ण शब्द हिंदी में कृष्ण के रूप में भी आया है, लेकिन उसी से तद्भव एक और रूप भी मिलता है, कान्हा कन्हैया किशन, ये तीनों शब्द एक ही हैं लेकिन इनका मूल कृष्ण है। इसी तरह से संस्कृत का घृत शब्द हिंदी में भी घृत शब्द के रूप में प्रचलित है लेकिन उसका तद्भव घी भी प्रचलित है। इसी तरह से अग्नि अग्नि के रूप में भी प्रचलित है और आग भी दिखाई देता है। क्षेत्र शब्द एरिया के लिए स्थान के लिए प्रयुक्त होता है, क्षेत्र इसी रूप में भी मिलता है और उसका तद्भव रूप खेत भी हमें प्राप्त होता है। इस तरह हम देखते हैं कि हिंदी को संस्कृत भाषा ने शब्दावली के स्तर पर काफ़ी प्रभावित किया है। इतना ही नहीं, संस्कृत ने न केवल हिंदी को शब्द दिए हैं बल्कि एक और विशेष बात कहूँ तो ये कि हिंदी को शब्द निर्माण की, असंख्य शब्दों के निर्माण की सामर्थ्य भी दी है। भारतीय शब्दावली आयोग की मैं यहाँ चर्चा करना अवश्य चाहूँगा कि शब्दावली आयोग ने शब्द निर्माण विषय कुछ सिद्धांत निर्धारित किए हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत ये है कि जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं, वो चाहे उत्तर की भाषाएं हों चाहे दक्षिण की भाषाएं हों, यदि उन भाषाओं में कोई शब्द नहीं मिलता है, किसी विदेशी भाषा में उसके लिए शब्द उपलब्ध है, तो उसके अर्थ पर ध्यान रखते हुए हमें नए शब्द का निर्माण करना है। यदि स्थानीय भाषा उस शब्द के लिए एक नया शब्द बनाने में समर्थ है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो संस्कृत भाषा के आधार पर हमें शब्दों का निर्माण करना वहाँ पर चाहिए, ऐसा वहाँ पर सिद्धांत रूप में कहा गया है। वहाँ पर जब हम संस्कृत से शब्दावली के निर्माण की बात करते हैं तो संस्कृत से उपसर्ग, धातु, प्रत्यय और उन प्रत्ययों के प्रभाव से होने वाले ध्वनि परिवर्तनों को ध्यान में रख करके हमें शब्दों का निर्माण करना चाहिए, ऐसा वहाँ पर बताया गया है हिंदी में। और हम इनसे अतिरिक्त भी देखें तो जिनको हम उपसर्ग कहते हैं, अंग्रेजी में जिनको हम प्रीफिक्स कहते हैं, जो संस्कृत में 22 उपसर्ग हैं, ज्यों के त्यों प्र परा अप सम अनु अव निश निर दुस दुर इत्यादि, ये सब संस्कृत में ज्यों के त्यों हमें उपलब्ध होते हैं। इसके आगे यदि हम बढ़ें तो संस्कृत का हिंदी भाषा पर एक और प्रभाव दिखाई देता है, वह है उसके साहित्य पर प्रभाव, और साहित्य ही नहीं बल्कि साहित्य शास्त्र पर भी प्रभाव, ये दो प्रभाव हमें दिखाई देते हैं। साहित्य पर प्रभाव की बात करें तो संस्कृत के दो बड़े ग्रंथ, दो बड़े महाकाव्य, रामायण और महाभारत, जो न केवल महाकाव्य हैं बल्कि वो इतिहास भी हैं और भारतीय ज्ञान का एक विश्वकोश भी हैं, उनका प्रभाव भी हमें हिंदी पर दिखाई देता है।

0: कैसे? आप देखेंगे कि जो हमारे हिंदी के बड़े महाकाव्य, काव्य, नाटक इत्यादि जो लिखे गए, उन सब में जो मूल कथानक है वो रामायण और महाभारत के किसी एक अंश को लेकर के आपको उपलब्ध होते हैं। मैं उदाहरण के लिए आपसे इसकी चर्चा करूं तो इसमें कामायनी, इसमें और बहुत सारे इसी तरह के बहुत सारे शब्द हैं जिनको हम देखेंगे जो हमारे रचनाओं के नाम के रूप में उपलब्ध होते हैं। एक हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक ग्रंथ है बाणभट्ट की आत्मकथा, वह निश्चित रूप से महाकवि बाणभट्ट के जीवन पर आधारित है और उसका सारा का सारा जो कथानक है वह कादंबरी और हर्षचरित से लिया गया है। कृष्ण की बाल लीलाओं पर आधारित जितने भी ग्रंथ रचे गए, सूरदास ने जो कुछ रचा उस सब का आधार क्या है? उस सब का आधार महाभारत है। हम जिसको आज मॉरिशस में अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, जिनको जन जन की जिह्वा पर जिसका नाम है तुलसीकृत रामचरितमानस, उसका आधार भी संस्कृत ही है। उसका मूल संस्कृत में महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण है। तो हम ये देखते हैं कि जीवन के प्रत्येक पक्ष को जैसे संस्कृत ने स्पर्श किया है, हिंदी का जीवन उससे पल्लवित हुआ है, पुष्पित हुआ है और विकसित हुआ है। यदि हम अंत में ये कहें कि साहित्य शास्त्र में तो आलोचना के जो सिद्धांत हैं, जो शब्द निर्माण की विधि हैं, समास हैं, संधियां हैं, ये सारे के सारे जो भाषाई पक्ष हैं ये हमारे हिंदी से जो हमें कहाँ से प्राप्त हुए, यदि हम ये कहें तो ये सारे संस्कृत से हिंदी को प्राप्त हुए हैं। इन विषयों के साथ साथ एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि केवल संस्कृत ने भाषा ही नहीं दी बल्कि संस्कृति भी दी है। हमारा जो जीवन है वो संस्कृति पर आधारित है। हमारे यहाँ माता को देवता, पिता को देवता, आचार्य को देवता मानने के लिए, देवता के समान मानने के लिए जो शिक्षाएं हैं ये हमारी सारी के सारी संस्कृत में हैं और संस्कृत से ही हिंदी में आई हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि संस्कृत मात्र संस्कृत भाषा नहीं है बल्कि हिंदी के लिए प्राणवायु है। संस्कृत के बिना हिंदी का साहित्य, हिंदी का संस्कार, हिंदी के स्वाभिमान की कल्पना भी नहीं की जा सकती। डॉक्टर रघुवीर जी बहुत बड़े लेखक हुए हैं जिन्होंने हिंदी भाषा का बहुत बड़ा कोश बनाया है। उनका कहना है कि हिंदी का भविष्य तब तक सुरक्षित है जब तक वह संस्कृत से जुड़ी हुई है। यदि हिंदी को संस्कृत से अलग कर दिया जाए तो उसके पास में जो आधार है, जो धरातल है, वही समाप्त हो जाएगा। मैं अंत में ये कहना चाहूँगा कि हिंदी को यदि आगे बढ़ाना है तो हमें संस्कृत को भी आगे बढ़ाना होगा। संस्कृत जीवित है। कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा आज मृत प्राय है, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि संस्कृत में साहित्य की रचना कहीं नहीं भी हो रही है तो हिंदी में जो रचना होती है वह संस्कृत की ही है। तो मेरा तो ये मानना है कि संस्कृत और हिंदी दो ऐसी भाषाएँ हैं जो एक दूसरे से कभी अलग नहीं हो सकती और इनका दोनों का भविष्य एक दूसरे पर आधारित है। अंत में मैं संस्कृत के दो शब्दों के साथ अपनी बात को समापन की तरफ लेके जाता हूँ। जयतु संस्कृतम, जयतु हिंदी भाषा, जयतु मॉरिशस, जयतु भारतम। सर्वेभ्यो नमो नमः, सभी को नमस्कार।
1: क्षितिज एक सार्थक यात्रा नई क्षितिज की ओर, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: बचपन ऐसा मीठा मीठा प्यारा प्यारा, बचपन ऐसा मीठा मीठा प्यारा प्यारा। एमबीसी रेडियो आपके साथ।
2: नमस्ते दोस्तों, बचपन ऐसा कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं रेडियो मॉरिशस की लहरों पर। मैं हूं रत्ना, आ पहुंची हूं आज के इस सेगमेंट को लेकर। अभी से लेकर शाम के 6 बजे तक हम बने रहेंगे आपके साथ, और जितने भी बच्चे इस वक्त एग्जाम

उसकी तैयारी में लग चुके हैं, तो बस हम यही कहेंगे मन लगा कर पढ़िएगा, क्योंकि बस यही मौका है दिखाने का कि साल भर में आपने क्या पढ़ा है। और बिल्कुल डरना नहीं है, जो भी आप करते हैं बस वही आपके रिपोर्ट कार्ड में उतर कर आता है। इसीलिए पूरी मेहनत पूरी लगन के साथ जुड़ जाइए। और चलिए, अगर रिलैक्स करने का मूड है, रिलैक्स करने का मन है, तो आधे घंटे के इस सफ़र में कुछ लाजवाब बातों के साथ हम आपका मनोरंजन भी करेंगे गीतों के सफ़र में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सफ़र की बचपन ऐसा कार्यक्रम।

बचपन ऐसा कार्यक्रम में मैं हूँ रत्ना, आपका साथ दे रही हूँ। दोस्तों, आपने कभी सोचा है पहले के ज़माने के जो खेल हुआ करते थे वो कितना ज़्यादा मेंटली हमें एंगेज रखते थे, और आज के जो खेल हैं, हम ये नहीं कहते कि मेंटली एंगेज नहीं रखते, पर फिजिकली भी आपको कहीं ना कहीं वो जकड़न महसूस होती है। चलिए आपको एक उदाहरण देते हैं। पहले के समय में लोग बिल्कुल टॉप्स से खेला करते थे। टॉप्स शायद आपको याद होगा। जी हाँ, टॉप्स यानी लट्टू, बिल्कुल लट्टू चलाना या लट्टू घुमाना। और लट्टू के जो खेल हुआ करते थे, आपको याद होगा, शायद आप में से कई सारे लोगों ने लट्टू का खेल खेला हो।

होगा जिसमें लट्टू पर रस्सी घुमा कर फिर उसे घुमा कर फेंकना होता था और वो लिटरली जाकर अपनी नुकीली जो एंड होती है उस पर घूमते घूमते घूमते, लेकिन ये दिखने में बहुत ही आसान था पर उतना आसान नहीं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान, बहुत ज़्यादा फोकस की आवश्यकता होती थी। और सच में उस ज़माने में बच्चे बड़े ही ताव के साथ लट्टू चलाते थे, उनका शारीरिक कौशल हुआ करता था और साथ ही साथ रस्सी को अगर सही तरीके से लपेटना ना आए, उसमें ताकत लगानी पड़ती थी, सही एंगल लगाना पड़ता था और ज़मीन पर उसे फेंकना पड़ता था। ये बच्चों में आँखों और हाथों का जो तालमेल हुआ करता था ये बहुत ही ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड होता था और मोटर स्किल्स के साथ ये इसे बेहतर बनाता था और ये एक बहुत ही मज़ेदार आउटडोर गेम हुआ करता था। तो आज के ज़माने में, भाई अभी कुछ समय पहले की बात है, आपने देखा होगा कि आज के समय में कई सारे लोग फिजिट स्पिनर के साथ बस वही आनंद, वही मस्ती लुटाया करते थे। चलिए अभी थोड़ी ही देर में फिजिट स्पिनर के बारे में भी बताएंगे आपको, पर लेते हैं गीत का ब्रेक।

जी हाँ, समय के साथ खिलौनों के जो गैजेट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं। बचपन ऐसा में पहले के ज़माने में लट्टू खेल खेला करते थे, और आज के समय में फिजिट स्पिनर, जी हाँ, एक इंडोर और व्यक्तिगत खिलौना। इसे घुमाने के लिए किसी खास शारीरिक मेहनत की आवश्यकता नहीं होती, बस दो उंगलियों के बीच उसे दबा कर घुमाना है, और ऐसा फील किया जाता है कि ये हमारे मेंटल फोकस को बढ़ाता है। वैसे देखा जाए तो ये दोनों ही खेल में कहीं ना कहीं हमारा जो मन है वो केंद्रित रहता है, बिल्कुल स्क्रीन टाइम थोड़ा कम होता है। ADHD जिन्हें होती है प्रॉब्लम, यानी ध्यान की कमी है, एंग्जाइटी की जो प्रॉब्लम्स होती है, उससे हमें कुछ समय मिल जाता है। और बिल्कुल फिजिट स्पिनर को मार्केट में ऐसा कहा जाता है, ADHD एंग्जाइटी और ऑटिज्म से पीड़ित लोगों के लिए ये एक थेरेपी टूल बन चुका है, और इसी के लिए ये दिमाग विचलित होता है तो हाथों को व्यस्त रखकर ये स्पिनर लोगों को एक जगह ध्यान लगाने में और फोकस, यानी आपका जो ध्यान है वो केंद्रित करता है, तनाव कम करता है, और साथ ही साथ बच्चों को मोबाइल या स्क्रीन टाइम से दूर रखता है। देखा, एक तरह से समय के साथ यही बदलाव महसूस हुआ, है ना। चलिए फिर एक गीत का ब्रेक लेते हैं, आते हैं थोड़ी ही देर में।

दोस्तों आज हम बात कर रहे थे लट्टू के महत्व पर। तो बिल्कुल पुराने समय में लट्टू प्रतियोगिता की भावना जगाता था। किसका लट्टू सबसे ज्यादा देर तक घूमता है, किसका लट्टू दूसरे के लट्टू को काटता है, और ये बच्चों को सामाजिक जुड़ाव यानी एक तरह से सोशलाइज करना, दोस्ती बढ़ाना, इसमें बहुत ही फायदेमंद रहता था। और स्पिनर की महत्वता की बात करें तो बिल्कुल ये आज के दौर में भाग दौड़ और स्ट्रेस को दिखाता है, कम करता है, और दफ्तर में काम करते हुए या पढ़ाई के दौरान अगर तनाव से आप राहत पाना चाहते हैं तो बिल्कुल लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ये पूरी तरह से पर्सनल स्ट्रेस बस्टर खिलौना माना गया है। और बिल्कुल जहां शुरुआती लट्टू खेल ऊर्जा और शारीरिक निपुणता के प्रतीक थे, वहीं फिजिट स्पिनर आधुनिक युग में मानसिक शांति, फोकस और डिजिटल दुनिया से ध्यान हटाने की जरूरत का एक प्रतीक बन चुका है। तो आप कौन सा खेल पसंद करते थे, ये जरूर इस बात की चर्चा घर में कीजिएगा बच्चों के साथ। और इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को यहाँ पर समाप्त करने का समय हो चला है। आशा करते हैं आज की ये छोटी छोटी जानकारी आपको पसंद आई होगी, गीतों का सिलेक्शन आपको पसंद आया होगा, और हमारे सभी नन्हे मुन्ने दोस्तों को हम बेस्ट विशेस देना चाहेंगे अपनी पढ़ाई के लिए, अपने एग्जाम्स के लिए। और इसी के साथ बस फिर मिलेंगे अगले सोमवार को ठीक शाम के 5:30 बजे रेडियो मॉरिशस की लहरों पर। तब तक के लिए बस हमें दीजिए अनुमति, अपना ख्याल रखिएगा,

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: सभी को हमारा नमस्कार। शाम के ठीक 6 बजे हैं।

पेश है आज की आज का मुख्य समाचार। सबसे पहले सुर्खियां। लीडरशिप, उसकी असली पहचान, उसकी जिम्मेदारियां और एक प्रभावी नेता बनने के लिए वास्तव में क्या मायने रखता है। डिस्कवरी लीडरशिप नाम के वक्तव्य का संचालन ओंग बुनहुई ने किया, जो सिंगापुर की सशस्त्र सेनाओं के पूर्व ब्रिगेडियर जनरल रह चुके हैं। इस बैठक में कई सरकारी संस्थाओं के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इस मौके पर प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। आज दोपहर बाद रोजबेल हॉस्पिटल में बुजुर्गों के लिए एक नई विशेष वार्ड का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल बेचू भी मौजूद थे। एक्यूट केयर फॉर एल्डर

0: प्राइमरी वार्ड में 80 पलंग हैं। यहां ऐसे मरीजों का इलाज और देखभाल की जाएगी जिन्हें विशेष देखभाल की जरूरत होती है, खासकर अल्जाइमर से पीड़ित मरीजों की। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने मॉरिशस से जुड़ी अपनी तकनीकी सहायता रिपोर्ट सार्वजनिक की है। इसमें देश के पब्लिक फाइनेंस प्रबंधन से जुड़े कानूनी ढांचों की समीक्षा के बाद सामने आए निष्कर्ष और सिफारिशें दी गई हैं। और जापान में जोरदार तूफान डुजुआन के करीब आने से बाढ़ और भूस्खलन की चेतावनी जारी की गई है। देश के पूर्वी तट में टोक्यो के पास रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है। और अब पेश है समाचार विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र महासभा की आम बहस की पूर्व संध्या पर आज प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम बरतानी प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम के साथ बातचीत कर रहे हैं। इस बातचीत में मुख्य रूप से शागस द्वीप समूह का मुद्दा और मॉरिशस तथा ब्रिटेन के बीच हुए समझौते को लागू करने पर चर्चा होगी। टेलीफोन पर हो रही इस बातचीत ये बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब पोर्ट लुइस और लंदन के बीच इस मुद्दे पर बातचीत जारी है। लीडरशिप, उसकी असली पहचान, उसकी जिम्मेदारियां और एक प्रभावी नेता बनने के लिए वास्तव में क्या मायने रखता है, इन्हीं सवालों पर आज सुबह गजवी में पब्लिक सर्विस मंत्रालय की ओर से आयोजित एक विशेष वक्तव्य में विचार विमर्श किया गया। डिस्कवरिंग लीडरशिप नाम की इस चर्चा का संचालन ओंग बोनहुई ने किया, जो सिंगापुर की सशस्त्र सेनाओं के पूर्व ब्रिगेडियर जनरल रह चुके हैं। इस बैठक में कई सरकारी संस्थाओं के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे और इस मौके पर प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। ज्यादा जानकारियां करुणा लालू के साथ।
1: डेढ़ घंटे से अधिक समय तक नेतृत्व की असली परिभाषा, उसकी जिम्मेदारियों और मूल्यों पर गहन चर्चा हुई। सिंगापुर सशस्त्र बलों के पूर्व ब्रिगेडियर जनरल और अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार ओंग बोनहुई ने सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों और विभिन्न संस्थानों के अधिकारियों के साथ अपने अनुभव साझा किए। अवसर पर प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम भी मौजूद थे। ओंग बोनहुई के अनुसार एक नेता होने का अर्थ सबसे पहले एक मजबूत मानवीय संबंध स्थापित करना है। नेतृत्व सबसे पहले इंसानों के बीच एक संबंध है और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि नेता के रूप में हम अक्सर इस बात को भूल जाते हैं। जैसे जैसे हम अपने करियर में आगे बढ़ते हैं, कभी कभी हम अपने सहयोगियों और अपनी टीम को महज आंकड़ों, संसाधनों या किसी लक्ष्य को हासिल करने के साधन के रूप में देखने लगते हैं। लेकिन आप स्वयं एक इंसान हैं और जो व्यक्ति आपका अनुसरण कर रहा है वो भी एक इंसान है। जिस क्षण आप इस सच्चाई को गहराई से समझ लेते हैं, उस क्षण आप जीवन को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखना शुरू कर देते हैं। एक अच्छे नेता के गुण इस विशेष संवाद के केंद्र में रहे, नैतिकता, उत्कृष्टता और सबसे बढ़कर ईमानदारी। जिन नेताओं का हम सबसे अधिक सम्मान करते हैं वे आमतौर पर वे लोग नहीं होते जो केवल सबसे अधिक प्रभावशाली दिखाई देते हैं, बल्कि वे होते हैं जो वास्तव में अपने व्यवहार में सच्चे और सहज होते हैं। ये संवाद कई अनुभवों और रोचक प्रसंगों से भी जुड़ा है। एक नेता की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है दिशा तय करना, मार्गदर्शन देना और अपनी मंशा को स्पष्ट रूप से समझाना। आशा करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री की मेरा आपका उदाहरण देने पर कोई आपत्ति नहीं होगी। 12 वर्ष पहले जब मैं पहली बार प्रधानमंत्री से मिला था तो मैं उनसे मिलकर गहरी छाप और सम्मान की भावना के साथ लौटा था, क्योंकि उनकी दृष्टि बिल्कुल स्पष्ट थी। जब हमने साथ मिलकर नेशनल इनिशिएटिव फॉर सिविक एजुकेशन पर काम किया तो ये पूरी तरह प्रधानमंत्री की उस दृष्टि पर आधारित था। उसके बाद से उन्होंने कभी भी उस दृष्टि से विचलन नहीं किया। 12 साल बाद इस कार्यक्रम की पुनः शुरुआत उनके उसी समर्पण का प्रमाण है। यही दूरदर्शी नेतृत्व है, लेकिन इसके साथ साथ ये निरंतरता बनाए रखने की क्षमता भी है। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को सिंगापुर के पूर्व ब्रिगेडियर जनरल से अपने सवाल पूछने का भी मौका मिला।
2: इफ यू हैव गॉट अ लीडर एंड योर जूनियर कम्स फॉरवर्ड विद समथिंग एन आइडिया लाउडेबल आइडिया अकॉर्डिंग टू द पर्सन हु ब्रिंग्स इट and the leader takes

0: this idea and put it into the drawer.
1: Obviously, that leader did not understand the leadership.
2: मंत्री राज पेंसिया के अनुसार सार्वजनिक सेवा में भर्ती की प्रक्रिया पर भी नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है।
3: Nous devons inclure dans cette année probation là un continuous training and capacity building. Nous devons montrer en matière comme l'intégrité, redevabilité, la transparence, bonne gouvernance. Ça bizarre font partie du syllabus de sa première 12 mois là.
2: इस कार्यक्रम के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक सर्विस एंड इनोवेशन के नए लोगो का भी अनावरण किया गया।
4: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने मॉरिशस से जुड़ी अपनी तकनीकी सहायता रिपोर्ट सार्वजनिक की है। इसमें देश के पब्लिक फाइनेंस प्रबंधन से जुड़े कानूनी ढांचे की समीक्षा के बाद सामने आए निष्कर्ष और सिफारिशें दी गई हैं। ये दस्तावेज वित्तीय जिम्मेदारी से जुड़े कानून यानी फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी लेजिस्लेशन तैयार करने में मदद करेगा। इस रिपोर्ट में कुल 7 सिफारिशें की गई हैं। इनमें कुछ संस्थाओं में सुधार, परियोजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए बजट के बीच में समीक्षा करना और मंत्रालयों के खर्च की अधिकतम सीमा तय करना शामिल हैं। रजनी बिकर को सुनते हैं।
5: बजट संबंधी जिम्मेदारियों पर एक कानून को अमल में लाने के वास्ते कई विकल्पों पर विचार किए जा सकते हैं, लेकिन साथ में कई जरूरतें भी हैं। मॉरिशस सरकार के लिए इस रिपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इसी मुद्दे की चर्चा की। खोजकर्ताओं ने जायजा लिया। सार्वजनिक फाइनेंस के संचालन का मौजूदा ढांचा अनुशासन और वित्तीय जिम्मेदारी का पालन करवाने के लिए इतना कारगर साबित नहीं हुआ। 2008 से कई बार कर्ज सीलिंग पार हो चुकी। पूर्वानुमान ज्यादा आशावादी होने के चलते योजनाएं फिर से बनानी पड़ी। खोजकर्ताओं के अनुसार इन कमजोरियों से पूर्वानुमान और नतीजों के बीच फासला बढ़ता चला गया। इस तरह वित्तीय जिम्मेदारी और विश्वसनीयता कमजोर हो चली। फिर भी विश्लेषण से पता चलता है कि मॉरिशस ने पिछले दशकों के दौरान आर्थिक विकास को लेकर मजबूत नतीजे दर्ज किए हैं। कहा गया कि मजबूत संस्थाओं और सावधानीपूर्वक मैक्रो इकोनॉमिक फाइनेंस के संचालन के वर्तमान ढांचे अहम उपलब्धियां हैं। ये बजटरी अनुशासन का पालन करवाने के लिए कारगर नहीं रहा। रिपोर्ट में मध्यम अवधि में एक ऐसे कानून का प्रस्ताव है जो एक विस्तृत ढांचे में सम्मिलित हो, साथ में पारदर्शी और संशोधन के लिए मजबूत मेकानिज्म की बात भी शामिल। कारगर तरीके से इसे अमल में लाए जाने की बात कुछ संस्थाओं की सुदृढ़ता और सार्वजनिक फाइनेंस के संचालन पर निर्भर करेगी। IMF की ओर से सरकार को सार्वजनिक कंपनियों के लिए एक न्यायिक ढांचा तैयार करने के वास्ते आमंत्रित किया गया है, ताकि प्रशासन रिपोर्टिंग की बाध्यता और साथ में उसके नियंत्रण और संचालन में सुधार लाए जा सके। इस तरह ये सुझाव रखा गया है कि बजट कदमों को कार्यान्वित करने के लिए मध्य सफर के लिए एक जांच के अंतर्गत नियमित रिपोर्ट कायम की जानी चाहिए। इसके अलावा मिनिस्टरियल खर्चों की सीलिंग भी कायम किया जाना चाहिए। नए कानून से संस्थागत जिम्मेदारियां और भूमिकाएं स्पष्ट हो सकेंगी। इसके अलावा ऐसे नियम कायम करने की भी मांग पर भी जोर, जो वर्तमान में निर्धारित 80% की कर्ज सीलिंग के अनुरूप हो। अंत में दस्तावेज में ये निष्कर्ष निकाला गया कि इन सुधारों से जिम्मेदारियां मजबूत की जाएंगी, ये नियमों के पालन के हक में होंगे और धीरे धीरे बजटरी रिजर्व के पुनर्गठन में इनका योगदान होगा। इसके लिए उचित तरीके से सुधार लाना और पदों को क्रम में डालना अहम होगा।
4: आज दोपहर बाद रोजबेल हॉस्पिटल में बुजुर्गों के लिए एक नई विशेष वार्ड का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल बेचू भी मौजूद थे। अक्यूट केयर फॉर एल्डरली वार्ड में 80 पलंग हैं। यहां ऐसे मरीजों का इलाज और देखभाल की जाएगी जिन्हें विशेष देखभाल की जरूरत होती है, खासकर अल्जाइमर से पीड़ित मरीजों की। मॉरिशस में फिलहाल 18,000 लोग अल्जाइमर से पीड़ित हैं। सिर्फ नई सुविधाओं पर ही नहीं, बल्कि मरीजों की उचित देखभाल, स्वास्थ्य कर्मियों की ट्रेनिंग और बुजुर्गों की जरूरतों के अनुसार इलाज के लिए एक विशेष प्रोटोकॉल पर भी जोर दिया जा रहा है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को सिर्फ सुरक्षा का साधन ही नहीं, बल्कि रचनाकारों के विकास के लिए एक मजबूत माध्यम बनाना, यही संदेश वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक डायन टांग ने मॉरिशस की अपनी आधिकारिक यात्रा

0: के दौरान दिया। वे गुरुवार को पोर्ट लुइस में थे, जहां कला और संस्कृति मंत्रालय द्वारा एक कार्य सत्र आयोजित किया गया था। इस बैठक में खास तौर पर कॉपीराइट, डिजिटल क्षेत्र और क्रिएटिव इकोनॉमी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। मॉरिशस विश्वविद्यालय और हायर एजुकेशन कमीशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पक्ष में अपनी कटिबद्धता मजबूत कर रहे हैं। सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर ग्रीन डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी की औपचारिक लॉन्चिंग दोनों संस्थाओं के बीच एक संधि पर हस्ताक्षर के साथ की गई। गुरुवार को मॉरिशस विश्वविद्यालय में उद्घाटन समारोह लगा। पूजा सुकालू को सुनते हैं।
1: जल संसाधनों को प्रभावित करने वाले सूखे, अचानक आने वाली बाढ़, ऊर्जा संक्रमण और गरीबी जैसी चुनौतियों का सामना मॉरिशस कर रहा है। इन पर्यावरणीय और सामाजिक चुनौतियों का समाधान ढूंढने में विश्वविद्यालय शोध महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसी उद्देश्य से सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर ग्रीन डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी की शुरुआत की गई है। ये पहल मॉरिशस विश्वविद्यालय और हायर एजुकेशन कमीशन के बीच हुए साझेदारी समझौते के साथ साथ स्वास यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन और नॉर्वे के यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्लो के सहयोग से शुरू की गई है। प्रोफेसर संजीव सोबी कहते हैं, ये सेंटर ऑफ एक्सेलेंस मॉरिशस विश्वविद्यालय में स्थापित है, जहां पर ट्रेनिंग के साथ साथ शोध कार्य चलाए जाएंगे। इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस के छात्र, डॉक्टरेट विद्यार्थी तथा निजी और सार्वजनिक सेक्टर की भागीदारी देखी जाएगी। गैर सरकारी संगठनों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। वेरिना तंड्रायन रघुबा कहती है, हमारा उद्देश्य है शोध कार्य के साथ साथ समाज में भी इसे शामिल करना। इस सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में जो भी शोध कार्य हम चलाएंगे, हम चाहते हैं कि हम एक पॉलिसी ब्रीफ के साथ इसे प्रस्तुत करें। इस परियोजना के लिए हायर एजुकेशन कमीशन की वित्तीय मदद प्राप्त हुई है। प्रोफेसर रोमिला मोही कहती है, हायर एजुकेशन कमीशन द्वारा इस परियोजना का वित्त पोषण किया जा रहा है। आने वाले 4 वर्षों के लिए कई गतिविधियां निर्धारित हैं, जिनमें प्रशिक्षण, शोध कार्य, माइक्रो क्रीडेंशियल्स आदि शामिल हैं। मंत्री कविराज सुको के अनुसार ये केंद्र मॉरिशस के शोधकर्ताओं और अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं को एक दूसरे के करीब लाने में मदद करेगा। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि इन शोधों का मॉरिशस के समाज पर ठोस और प्रत्यक्ष प्रभाव पड़े। वे कहते हैं, सरकार द्वारा शोधकर्ताओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे कि ये शोध कार्य आम जनता के जीवन में एक सुधार लाए, विकास लाए, ताकि जलवायु परिवर्तन से जुड़ी समस्याओं का समाधान ढूंढा जा सके। इस साझेदारी के माध्यम से मॉरिशस विश्वविद्यालय और हायर एजुकेशन कमीशन को उम्मीद है कि एकेडमिक शोध से देश को लाभ मिले।
0: न्यूयॉर्क से हमें दिए गए इंटरव्यू में राष्ट्रसंघ में मॉरिशस के राजदूत ने महासभा के 81वें सत्र के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की। इनमें महासचिव का चुनाव, जल संरक्षण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक साझा नीति को अमल में लाना और जलवायु परिवर्तन को लेकर देशों की जिम्मेदारी जैसे विषय शामिल रहे। मिलान मिटावान ने पिछले सत्र का भी उल्लेख किया, जिसके दौरान दास प्रथा को मानवता के खिलाफ अपराध घोषित किया गया और साथ में दुनिया के नक्शे में अफ्रीकी महाद्वीप के वास्तविक आकार में बदलाव लाने के वास्ते करेक्ट द मैप परियोजना पर भी चर्चा की गई। उनको सुनते हैं।
2: En principe, avant la fin de l'année, l'élection d'un nouveau secrétaire général des Nations Unies. Et ça, évidemment, c'est une question majeure qui préoccupe tout un délégué pendant les prochaines semaines. On connaît la question de l'eau, une question très importante pour la communauté internationale et non une conférence que les Nations Unies peut organiser en décembre à Abu Dhabi. L'eau, en principe, il y a un amendement de résolution qui va adopter l'eau, ce qu'on appelle disaster preparedness. Comment un pays bien préparé pour faire face à un désastre. Et dans le même contexte, Kabab aussi souligne les débats qui pourraient être la préparation pour une pandémie. Nous avons des leçons qui sont arrivées dans

0: dans le passé. Une des bonnes préoccupations aussi majeures pour nous en particulier et pour les autres îles, c'est ce qu'appelle Sea Level Rise. Donc, en fait, c'est tout l'effet de changement climatique, mais en particulier la montée du niveau de la mer qui menace en fait l'existence même de plusieurs îles. Et on a aussi un sujet qui pour faire l'objet de beaucoup de débats, mais au Kapawatan, c'est AI governance, parce qu'il nous cause beaucoup de cadres réglementaires pour AI, mais en fait, pour Bizin, et non aussi un framework international, parce que si un pays prend bonne mesure et qu'un autre pas prend bonne même mesure, pour un an, risque de l'avantage que ça l'autre pays a qu'à gagner. Donc, il est nécessaire qu'il y ait en fait un accord international pour que tout un pays adopte les mêmes mesures par rapport à AI. Et non, un débat intéressant qui commençait un peu déjà dans la session précédente et qui peut certainement continuer dans cette session-là, c'est ce qu'il appelle Beyond GDP. Parce que pendant de nombreuses années, en fait, GDP fut l'indicateur principal de beaucoup de questions liées au développement, au financement du développement. Et là, finalement, un début, on a encore tout au début, mais vous avez souligné, de débat lors comment nous visons et non, les autres indicateurs, comment nous visons assessment vulnérabilité de spécifique de certains États et pas et non un seul critère qui applique à tout le monde. Et qui est le critère traditionnel de GDP.
1: मॉरिशस में गिनी गणराज्य के नए राजदूत मोरिबा अलें कुने ने आज दोपहर बाद गणराज्य के राष्ट्रपति धरम गोकुल को अपना परिचय पत्र सौंपा। दोनों देशों के बीच सहयोग मजबूत करने और समान हितों वाले कई सेक्टरों के बारे में चर्चा की गई। गिश्मा स्थित गायत्री भवन की स्थापना को 100 साल पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर वहाँ 4 दिवसीय पारायण महायज्ञ का आयोजन किया गया, एक ऐसा स्थल जिसने देश के इतिहास को बदलते देखा है और जो अभी भी भाषा और संस्कृति के प्रचार प्रसार का माध्यम बना हुआ है। कई महानुभाव इस विशेष अवसर पर वहां उपस्थित थे। याचना मिश्रा।
2: गिश्मा के निवासियों के लिए गायत्री भवन एक ऐसा स्थल है जिसने इस गांव को बदलते देखा। 100 साल पहले 1926 में गिश्मा में अंबावती कन्या पाठशाला के नाम पर इस भवन की स्थापना हुई। महर्षि दयानंद के मूल्यों को आधार बनाते हुए धर्म और संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसकी शताब्दी के अवसर पर आर्य सभा मॉरिशस की पहल पर 4 दिवसीय पारायण महायज्ञ का आयोजन किया गया। कई महानुभाव इसमें उपस्थित रहे।
3: आज इस समाज के 100 साल मनाए गए, लेकिन हम चाहे न रहें, लेकिन यह समाज 200 साल भी मनाए, ऐसी हम आशा करते हैं, उम्मीद रखते हैं। लेकिन कब ऐसा होगा भाइयों बहनों? तब जब हम स्वामी बन के रहेंगे, दास बन के नहीं रहेंगे। कब स्वामी बन के रहेंगे? जब हम अपनी संस्कृति को ऊंचा रखेंगे, अपनी पोशाक की रक्षा करेंगे, अपने यज्ञ अग्निहोत्र की रक्षा करेंगे, अपने वेदों की रक्षा करेंगे।
4: हमारे देश में आर्य समाज का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। हम सभी जानते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती हिंदू धर्म के प्रचारक सुधारक रहे हैं। हिंदू समाज बर्बाद हो चुका था, उनकी परिस्थिति दयनीय हो चुकी थी, वे अपने अस्तित्व खो चुके थे। ऐसे समय में वे भारत में अपना प्रचार शुरू किया। उन्होंने हिंदू समाज को प्रेरित किया, उनको प्रोत्साहित किया। हमारी प्राचीन गौरव प्रथा को उन्होंने फिर से उठाया, ऊपर किया।
2: 100 साल पुराना भवन अपनी स्थापना के समय के उद्देश्य को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ रहा है, इलाके के एक ऐतिहासिक विरासत के रूप में। इस अवसर पर भवन पर आधारित एक पुस्तक की लॉन्चिंग भी की गई।

0: और विदेशी खबरों में जापान में जोरदार तूफान डुजुआन के करीब आने से बाढ़ और भूस्खलन की चेतावनी जारी की गई है। देश के पूर्वी तट में टोक्यो के पास रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है। करीब 300 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं और ट्रेन सेवाएं रोक दी गई हैं। पेश है मौसम संबंधी जानकारियां करुणा लालू के साथ।
1: पूर्व की ओर से आने वाली अस्थिर हवाओं से जुड़े बादल आज रात को हमारे मौसम को प्रभावित करेंगे। कल सुबह भी आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे जो रह रह कर घने हो जाएंगे और बारिश होगी, खासकर पूर्व दक्षिण एवं सेंट्रल प्लाटू पर। दोपहर में भी जहां तहां बादल घेराएंगे और बारिश होगी, खासकर देश के पश्चिमी हिस्से में। तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम 15 से 17, अधिकतम 21 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच। शहरी इलाकों में न्यूनतम तापमान 19 से 21, अधिकतम 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पूर्व की ओर से 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। प्रवाह रेखा से परे समंदर चंचल रहेगा। दक्षिण पश्चिम में लहरें 2 मीटर तक हो सकती हैं। सूर्यास्त 6:05 पर, कल सूर्योदय 5:59 पर।

और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन पूरा हुआ। इसे आप तक पहुंचाने में हमें लुडोविक का सहयोग मिला है, उन्हें धन्यवाद देते हैं। आपको भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। कुछ ही देर में शोक समाचार सुन सकेंगे।

बिस्वा लेन प्लेनमायों में 45 साल के 45 ईयर ओल्ड के श्री राजेंद्र बालिया, जो विनोद से ज्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11 बजे उनकी माँ लक्ष्मी गुनाबाई बालिया के घर बिस्वा लेन प्लेनमायों से उठाकर प्लेनमायों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 11 AM। एपा सहाय रॉयल रोड गुडलैंड्स में 91 साल की 91 ईयर ओल्ड की श्रीमती दुनवंती सहाय, जो पति से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल दिन के 2 बजे उनके बेटे गोय डामगी के घर एपा सहाय रॉयल रोड गुडलैंड से उठाकर वाहूश गुडलैंड्स की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 2 PM। मॉरिस मार्टिन स्ट्रीट लेस्पेरेंस पीटो में 72 साल के 72 ईयर ओल्ड के श्री आनंद चमन, जो आनंद से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके बेटे रंजीव चमन के घर मॉरिस मार्टिन स्ट्रीट लेस्पेरेंस पीटो से उठाकर पीटो की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 11 AM। 74 साल के 74 ईयर ओल्ड के श्री नरेंद्र नाथ रामगुलाम, जो नारायण से ज़्यादा जाने जाते थे और जो प्राइमरी स्कूल में फिजिकल एजुकेटर थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल सुबह 10:15 बजे मुगा फ्यूनरल पॉलर पेचित्रिविया से उठाकर लावंचर की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 10:15 AM। एवेन्यू फ्लोरिस्ट प्लेजेंस रोजिल में 34 साल के 34 ईयर ओल्ड के श्री ऋषि हलकोरी, जो अर्जुन से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके घर एवेन्यू फ्लोरिस्ट प्लेजेंस रोजिल से उठाकर कॉन्लेव्यू की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 10 AM। नंबर 103 सिते गारीबू वाली डे प्रथ में 64 साल के 64 ईयर ओल्ड के श्री राज उजागिया, जो सुनील से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके घर नंबर 103 सिते गारीबू वाली डे प्रथ से उठाकर सिपाही भूले वाली डे प्रथ की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 10 AM। शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।

0: MBC Radio 24 hours a day.
1: सेबी अपने ग्राहकों को सूचित करता है कि मरम्मत कार्यों की वजह से इन इन इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। बुधवार 23 सितंबर को सुबह के 8 बजे से लेकर 9 बजे तक और दोपहर के 3 बजे से लेकर 4 बजे तक वालेंटिना और पेटिकॉन फिनिक्स में और आसपास के इलाकों में जैसे कि मोर्सेलमेंट ले नोआ और पेटिकॉन, मोर्सेलमेंट रिवर एज, सोफिया ब्रांच रोड, मोर्सेलमेंट डामरी और आसपास के इलाकों में। और कल यानी कि मंगलवार 22 सितंबर को दिन के 1 बजे से लेकर 4 बजे तक आर्सेनल और आसपास के इलाकों में, लारूत बालाक्लावा, एवाको और आर्सेनल गवर्नमेंट स्कूल में भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्यों के समाप्त होने पर बिना सूचना दिए ही बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी और सीबी अपने ग्राहकों से क्षमा चाहते हैं और अपना इंतजाम कर लेने की मांग करते हैं। शुक्रिया।

听众朋友，今本日嘅客家话好歌送俾你嘅节目差唔多接近尾声，我有点太感人告别，好，我等你下次同一节目时间再见。

तरी तदण तजणु तदिमि तरी तताम दण तताम जणु तताम तरी तदण तजणु तकृति।

0: ABC Radio 24 hours a day.
1: बजली प्रभु का नाम रेडियो मॉरिशस के लहरों पर

सभी श्रोताओं को आप सभी श्रोताओं का प्रेम पूर्वक स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम भजते प्रभु का नाम में। सोमवार की यह शांत तथा पावन रात्रि में दिन भर की भागदौड़ के बाद कुछ पल अपने लिए तथा उससे भी बढ़कर कुछ पल अपने प्रभु के लिए आइए मन में शांति लाते हैं, चिंताओं को थोड़ी देर के लिए दूर रखें तथा अपने हृदय को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दें, क्योंकि जहाँ प्रभु का नाम होता है वहाँ मन को विश्वास मिलता है। जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहाँ जीवन में विश्वास जागता है। आप सुन रहे हैं MBC रेडियो मॉरिशस और मैं हूँ देविना आपके साथ इस भक्तिमय यात्रा में।

ईश्वर से केवल अपनी इच्छाएं पूरी करने की प्रार्थना न करें, बल्कि इतनी शक्ति मांगे कि जो मिला है उसमें भी प्रसन्न रह सके। जीवन में हर दिन हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता। कभी सफलता मिलती है, कभी असफलता, कभी कोई अपना साथ देता है, कभी कोई दूर चला जाता है, कभी रास्ते सरल होते हैं तो कभी कठिनाइयां सामने खड़ी हो जाती हैं। परंतु भक्त का विश्वास यही कहता है, मेरे प्रभु मेरे साथ हैं, इसलिए मुझे डरने की आवश्यकता नहीं।

रेडियो मॉरिशस पर आप सुन रहे हैं भजते प्रभु का नाम कार्यक्रम। श्रोताओं, भक्ति केवल मंदिर जाने का नाम नहीं, भक्ति है अपने मन में प्रेम रखना, भक्ति है किसी दुखी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाना, भक्ति वह है अपने माता पिता का सम्मान करना, भक्ति है किसी की सहायता करके उसका एहसान न जताना, और सबसे बड़ी बात भक्ति है अपने हर कर्म को प्रभु को समर्पित करना। भगवद गीता के भक्ति योग में श्री कृष्ण श्रद्धा के साथ मन को परमात्मा में लगाने की शिक्षा देते हैं। इसलिए आज अपने आप से एक छोटा सा प्रश्न पूछिए, क्या मेरे भीतर प्रभु के लिए सच्चा प्रेम है? यदि उत्तर हाँ है तो समझिए आपकी आध्यात्मिक यात्रा

श्रोताओं, हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आज की इस रात्रि में जितने भी लोगों ने हमें सुना उनके घर में शांति रहे, जिसके मन में चिंता है उसे धैर्य मिले, जिसके हृदय में दुख है उसे आशा मिले, जिसे अपने रास्ते की तलाश है उसे सही दिशा मिले, तथा प्रत्येक परिवार में प्रेम, एकता, सुख तथा सद्भाव बना रहे। हे प्रभु, हमारे कर्मों को पवित्र बनाइए तथा हमारे जीवन को सेवा और प्रेम का माध्यम बनाइए। इसी सुंदर प्रार्थना तथा सकारात्मक विचार के साथ आज के भज प्रभु का नाम कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। हम आपसे लेते हैं अनुमति। प्रभु का नाम लेते रहिए, मन में विश्वास रखिए तथा मुस्कुराते रहिए, क्योंकि जिस हृदय में प्रभु का वास हो वहाँ निराशा अधिक देर तक नहीं ठहरती। ईश्वर आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। शुभ रात्रि, सादर प्रणाम।

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और बड़ा रहम वाला है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मौजूद सामईन, उम्मीद है आप फजल खुदा खैर वाफियत से होंगे। इस वक्त आप समात फरमा रहे हैं हमारी उर्दू नशरियात महफिल शब रेडियो मॉरिशस के ज़रिए सैयदा सुबाई के साथ। आइए आज की इस मजलिस का आगाज़ करते हैं इस

और वाकयात दुनिया भर में मशहूर हैं। उन्होंने एक बुज़ुर्ग की तरह अपने मुरीदों को हमेशा अल्लाह ताला की जानिब बुलाया है। आपने हमेशा अल्लाह के करम का जिक्र किया है।

हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। जी हाँ, गौसे पाक ने अपनी ज़िंदगी में इस्लाम की तालीमात को आगे बढ़ाने में बहुत अहम किरदार अदा किया। उनकी करामात

ज़िक्र औलिया से दिल को उजाला मिलता है, राह हक में चलने का हौसला मिलता है। इल्म अमल की शम्मा जलाई जिसने ज़माने में, आज भी उसकी तालीम से रास्ता मिलता है। गौसे आज़म का पैगाम यही समझाता है, बंदा अपने रब से जुड़े तो सुकून पाता है। मौज़े सामेईन, इसी के साथ थोड़ी ही देर में ये मजलिस इख्तिताम पज़ीर हो जाएगी। आप तमाम सामेईन ने हमारा साथ दिया, हम आपके बेहद शुक्रगुज़ार हैं। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सैयदा सुबाई को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के सवाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
3: भोजपुरी तड़का।
4: नमस्ते, हमी के सब श्रोतालों के स्वागत करत हैं जहाँ हमी के भोजपुरी तड़का में। अभी 9:05 होलबा और हमी के कार्यक्रम चली 11 बजे लेक। तो हम सुरेखा तोहर स्वागत करत हैं और प्रार्थना ही करत हैं कि बहुत अच्छा अच्छा पल बितावत हो बजा तोहर शाम के वक्त, तोहर रात्रि के वक्त खूब सुकून होला हुई तोहर खातिर और तोहर मन बड़ा शांत हो। चला हमने तोहर खातिर लेके आल हैं जा जो कार्यक्रम भोजपुरी तड़का, एकर में भाग ले जा और हमने के कार्यक्रम के शोभा बढ़ावा जा। ये कार्यक्रम में तो लोग अपन पसंद के गाना सक बजा सुने जाने ल। नंबर बात नंबर कॉल करे होला है 7200 और मैसेज भेजे होला है 7200 यानी कि 5251700005। तो अपन पसंद के गाना सुना जा और अपन रात्रि के खूब सुखमय शांत बनावा जा। अभी चला हमने गीता गजाधर की आवाज़ में सुनी जा। समझी के जैसे हिचकी लगेला, कैसे हिचकी लगेला, कहाँ हिचकी लगेला और कौन तरह से समझी जी अपन दिन ले जालन, अपन व्यवहार करेलन।

0: भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का में चला सुनी जाने संभावती दुवन जी के गावल गाना नाको के फुलिया और ये गाना हमने से मंगले हवन मनीषा जी का तो बोन से मनीषा जी गाना मंगले हवन विजेंद्र खातिर जितेन खातिर और संध्या तथा विजया खातिर तो चला सुनी जा हमने संभावती दुमन जी के गावल ये गाना।

संध्या जी मंगलवानी को विनोद सिवदा जी के गावल गाना उनकर माता जी खुश रहलन विनोद सिवदा जी के गावल गाना सुने के तक दो मास के संध्या जी बगल से उनकर माता जी रेणुका खातिर और उनकर बहिन बबीता खातिर गीत चलावत है जा हमने

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का
2: तड़का लगाए ला जा हमने के शो में और ही प्रस्तुत करी ला जा गायत्री जी के पास इनके गाना गायत्री जी मंगले वन सोना रेयन जी के गावल गीत ई गाना मंगले हवन गायत्री जी नोवेल फाउंस से अपन बेटा अजय खातिर और मायबू के मामी कल्याणी मोहन जी खातिर लॉन्ग माउंटेन के बाबी शकुंतला जी खातिर और नोवेल फाउंस के अपन सखी गीता बाई खातिर तो चल सुनी जा सोना रेयन के गावल गाना।

गिरीश रूपचंद जी के गावल एगो गाना चला सुनी जा। और गिरीश रूपचंद जी के गावल गाना हम दे बजावत है जा महिमा जी के पसीन पर। महिमा जी गाना मंगले हवन सुयाक से और गीत मंगले हवन अपन माँ वंदना के नाम।

0: भोजपुरी तड़का।
1: चले हमने के भोजपुरी तड़का में अबरी कुछ हमने जन्मदिन के मंगल कामना दे ला जा विदेश जी के, ललिता जी के भाई हवन विदेश जी, ललिता जी अपन भाई विदेश के जन्मदिन के बहुत मंगल कामना प्रस्तुत करत हवन। और विदेश जी के उनकर पत्नी आशा जी बगल से शुभकामना, उनकर बेटी ईशा बगल से बेटा विषय, और फिर पूरा परिवार बगल से जन्मदिन के बहुत बहुत मंगल कामना विदेश जी, हमके पूरा टीम द्वारा जन्मदिन अभिनंदन बरता। और इधर वैष्णवी के भी जन्मदिन बा, वैष्णवी जन्मदिन अभिनंदन हमके पूरा टीम बगल से। तो ललिता जी जन्मदिन के शुभकामना देवत हवन, फिर तोहर मामा मालिनी, तोहर पापा विराज, भाई विक्रांत और पूरा राम रतन परिवार द्वारा जन्मदिन के ढेर ढेर मंगल कामना देवत हवन जा। फिर ललिता जी गाना मंगले हवन सुदेवी जी खातिर, ज्ञानी जी, छोटी जी, प्रभावती जी और आत्माराम जी खातिर, और सुखलाल मौसी खातिर गाना है विश्ववाणी दीपो जी के गावल गमट होला गाना।

और अब चला लीलो माथुर जी के गावल गाना सुनी जा। लीलो माथुर जी के गावली गीत हमने से मंगले हवन पीतों से अमृता जी अपन नाती न सोनिया और परी खातिर और अपन बेटी पूनम खातिर बेटा विशान और पतो मीनाक्षी खातिर और पूरा गणेश परिवार खातिर।

आगे चली जा, हमने जयहरलाल जी के गावली गाना सुनी जा, गौबे के शैलेश जी गाना मंगले हवाने पर पत्नी माया खातिर, बेटी कीर्ति और नंदिनी खातिर, और यही गीतवा जयहरलाल जी के गावल हमने बजवाए ला जा लावेनिया के आफेज जी खातिर।

अभी बढ़ते हैं जागे हमने गौरी ब्रदर्स के गावल शिव भजन के संगे और ये भजन मंगले हवन से अनिता जी फ्लिक ऑफ लाख से मंगले हवन ये भजन इंदिरा श्यामा मीरा सिनान कविराज साधना मारिनी कविता खातिर अपन सब संगतियालो खातिर और अपन पूरा परिवार खातिर तो चला ये गाना हमने सुनीता जी के नाम करी अनिता जी के नाम करी जा अनिता जी फ्लिक ऑफ लाख से

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का
2: भोजपुरी तड़का में हम के साथ देवथवन गाँव ग्रुप के सुनीता जी और सुनीता जी खातिर चलाए जला जा हमने रंभा राम तोहल जी के गावल गाना जुबेदा होला गाना और ये जुबेदा होला गाना सुनीता जी अपन बहन कुंगुमा के अपन बहन विमाला खातिर बजवावत हवन और उनका बेटा संजीव खातिर संजीव जी अभी छुट्टी मनाए आयल हवन अपन माँ लगे विदेश से तोहर स्टे है जहाँ पर बहुत अच्छा रही तोहर दिन है जहाँ पर बहुत प्यार से बीते अपन संगति आलो के बीच में अपन

लतवा ले ले आल बस जुबेदा हमनी के रास्ता पर चाहे सावधानी बरते के चाहे लाचा से हमनी के गड़िया चलाए के हाँ कि नहीं चला ही गाना हमने बजवाए ला जाओ अबरी को गणेशन हरि जी के गावल सुविधा जी के पसंद पर प्रण माया से सुविधा जी गाना मंगलाया हुआ न अपन पिताजी राघव खातिर

चलो सुनी जा अब वो गीत जो हमने से मंगले हवन सुदेवी जी वाकवा से मंगले हवन सुदेवी जी गाना गणपत सत्यन ईसन जी के गावल और ई गाना सुदेवी जी मंगले हवन थ्रियोले के दीदी ललिता खातिर कुशल फैमिली खातिर दीदी सुनीता शोभा देवी नाम खातिर मारेगा के राम रतन परिवार खातिर तो चला सुनी जा मिलके हमने सुदेवी जी के संगी गणपत सत्यन एसएन के गावल गाना

अब तबारी अलबा बीतल दिनवा के बारे में सुने के कैसे बीतल दिनवा में शादी हुआ था हल कैसे चौठारी हुआ था हल ये गाना महेन हरपाल जी गावत हवन और गाना मंगले हवन हमने से विद्या जी कौन तो गल से गाना मंगले हवन अपन पूरा परिवार खातिर खास कर अपन दादाजी खातिर।

शादी करला के बाद कबो कबो किरिंग करांग हो जाला भाई कौन सी बात है, थोड़ा बहुत किरिंग करांग तो हुईबे करे के चाहेला तब न प्यार बढ़ेला। किशोर कुमार हमें सर जी के गवाल किरिंग करांग करा चला सुनी जा हमने देवी जी के पसीन पर, देवी जी का नाम मंगल हवन अपन पूरा परिवार खातिर बहुत बहुत धन्यवाद, हमने के पूरा टीम खातिर भी मंगल हवन देवी जी।

जयप्रकाश दुखे जिगावत हवाना आज के हमी के अगला गाना और ये गाना है जाने ले ले वो रोमांटिक गाना है एगो और ये गाना हमने से मंगले हवाना सुविता जी गाना मंगले वन अपन पति रणधीर खातिर

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का।
2: जब इतना तड़का लगते हुआ था, हमने जन्मदिन के भी तड़का लगा दे लाजा। हैप्पी बर्थडे टू यू किरण जी। किरण जी रैलन गाँव बेलिया, उनका जन्मदिन पर आज उनकर पत्नी विषमा उनकरा जन्मदिन के शुभकामना देवत हवन। उनकर बेटा विवान और रेयांश उनकरा जन्मदिन के बहुत बहुत मंगल कामना देवत हवन। तो चला संजय गोविंद जी के गावल ई गाना हमने किरण जी खातिर प्रस्तुत करी जा।

अभी सुना थे जहाँ हमने जादू देवचरण जी के गावल गाना और पवन जलबर से गाना हमने बजाओ है जा रवि जी के पसंद पर, रवि जी गाना मंगले हवन अपन पत्नी आनंदी के नाम।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का। चला सुनिए जहाँ हमने शशि सोहादेव जी के गा वाले गाना कबूतरी, कबूतर और कबूतर की प्रेम कहानी। ये गाना हमने बजाओ थे जा वाक वाक के धनपत जी खातिर।

हमने के भोजपुरी में तड़का था और हमने के श्रोता लोग लगाए थे जाते हुए जा चलो महेन जी के लगावल तड़का सुनी जा भोजपुरी तड़का में एगो फटवा गाना सुनब जाए गाना है भोजपुरी बजे बाजे बोज के कलाकार लोग के गावल और ई गाना हमने महेन जी के नाम कराए थे जा उनकर बगल से दीदी मान के नाम।

पसंद सुपाल जी के गावाली गमठ वाला गाना चला हमने वीना जी के पसंद पर बजाओ अब जा वीना जी गाना कोविड से मंगले हवन अपन दादा दादी खातिर और अपन पिताजी खातिर।

आगे बढ़ब जा हमने अंतिम गाना संगे हमने के अंतिम गाना के बारी चलाल बहल गौरी जी के गावली गाना है और ये गाना के संगे हमने के आज के भोजपुरी तड़का समाप्त हो जाए। साथ दिलाकर खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग के पसंद के गाना बजाते बजाते ही हमने के कार्यक्रम के सुंदरता बढ़ गल। तो बहल गौरी जी के गावली गाना सुनी जाए, ये अंतिम गाना रही हमके कार्यक्रम के। अभी ये गाना के समाप्त होते यानी कि प्रोग्राम के समाप्त होते, प्रोग्राम तो समाप्त हो जाए 11 बजे सुनिए जा पुराना गीत के कार्यक्रम सुनहरे पल गिनेशा प्रस्तुत करियन। तो एंजॉय करिए पुराना गाना भी, अभी बहल गौरी जी के गाना भी एंजॉय करें। आवाज़ला फिर मिलब जा। शुभ रात्रि, नमस्ते।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: देखा जाए तो जिंदगी में कभी कभी सिर्फ एक गीत ही काफी होती है हमें सालों पहले ले जाने के लिए। एक आवाज, एक धुन और आंखों के सामने बचपन की गलियां, स्कूल के दोस्त, पहली साइकिल, माँ के हाथ का खाना और घर का वो पुराना रेडियो, सब कुछ जिंदा हो जाता है। और आज हम वही यादें फिर से ताज़ा करने आ गई हैं। तो दोस्तों, ज़रा दिल को थाम लीजिए, दिल को हल्का सा मुस्कुराने दीजिए और पुराने बॉलीवुड के इन हसीन नगमों के साथ चलिए एक खूबसूरत सी सफर पर, रेडियो मॉरिशस पर सुनहरे पल में। विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी गुड इवनिंग। नमस्कार और गिनिशा का प्रणाम।

तो मेरे प्यारे प्यारे म्यूजिक लवर्स, हर गीत किसी ना किसी दिल की जुबां होता है। कुछ गाने खुशी बयां करते हैं और कुछ मोहब्बत, और कुछ वो बातें जो हम कभी लफ्जों में कह ही नहीं पाते। आज का हर नगमा शायद आपके दिल की कहानी कह दे। तो जहां भी है आप मुस्कान के साथ हमें भी अपना साथी बना लीजिए और चलिए बॉलीवुड के सुनहरे दौर का लुफ्त उठाने में। चलिए जी, ये अगला नगमा हमारी तरफ से आपके नाम।

0: वैसे मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, एक वक्त था जब रेडियो सिर्फ एक मशीन नहीं होता था, घर का एक हिस्सा होता था। वो सुबह की शुरुआत, शाम की चाय और रात की सुकून भरी बातें सब रेडियो के साथ जुड़ी होती थी। आज भी वही रिश्ता हम सबको जोड़ता है और जब उसमें पुराने बॉलीवुड के गीत शामिल हो जाए तो बात ही कुछ और होती है। तो आइए मिलकर इस प्यारे रिश्ते को फिर से महसूस करते हैं रेडियो मॉरिशस पर।
1: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।

0: कहते हैं ना, हर इंसान की जिंदगी एक किताब होती है और उस किताब का हर चैप्टर किसी ना किसी गीत के साथ जुड़ा होता है। शायद आज का अगला गाना आपकी कहानी का भी एक हिस्सा हो सकता है किसी अपने की याद दिला दे या फिर किसी अधूरे सपने की। तो दिल खोलकर सुनिए, क्योंकि पुराने बॉलीवुड के गीत सिर्फ संगीत नहीं है, जिंदगी का एहसास होता है।
1: सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।

मोहब्बत सिर्फ लफ्जों से नहीं होती है, कभी कभी एक गीत ही दिल की बात कह देती है। कितना ही प्रेम कहानियां हैं जो बॉलीवुड के गीतों के साथ और भी खूबसूरत बन गई है। आज अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं या किसी को याद कर रहे हैं तो ये प्रोग्राम उन्हीं एहसासों के नाम। चलिए प्यार के इन अनमोल नगमों का आप मजा ले लीजिए रेडियो मॉरिशस पर इन योर सुनहरे पल।

तो चलिए जी, फिलहाल के लिए इट्स टाइम फॉर गिनिशा टू से गुडबाय टू यू। इजाजत दीजिए, जाएंगे वापस लौट आने के लिए वादा रहा आप सभी लोगों से एक और सुनहरे पल के बहुत ही खूबसूरत से सफर में। आप बस अपना ख्याल रखते जाना, प्यार बांटते जाना। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।